0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भादो मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कार्यक्रम रहेगा 7:02 पर, पेश करेंगे मनीष आजाद, और 8:02 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसे पेश करेंगी शालिनी सिंह। दिल के तराने, गाने नए पुराने, कार्यक्रम रहेगा 9:02 पर, पेश करेंगे मनीष आजाद।

कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर हाजिर होंगे श्वेता शर्मा 11:02 पर। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम रहेगा 12:02 पर। शलिका कपूर से आप सुन सकेंगे। 1:02 पर कार्यक्रम बिंदास बोल रहेगा। श्वेता शर्मा से आप ये कार्यक्रम सुन सकेंगे।

2:02 पर कार्यक्रम आशियाना लेकर हाजिर होंगी रेशमा फारूकी। 4:02 पर कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो जिंगल का रहेगा अल्फा जैन।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए तीन तीन नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के तीन तीन विकल्प देने को कहा है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूंछ जिले के मेंढर इलाके के बहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले वर्ष फिर से लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी जारी है, लेकिन हाल ही में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आर मीडिया एकेडमी।
1: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यही सत्य वचन है कि हम इंसान भी एक फूल की तरह कुछ समय के लिए महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, मगर फिर भी हम इंसान घमंड की चादर ओढ़कर इतराते रहते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें और अहम में डूबा हुआ दिल ही इंसान के विनाश होने का सबब बनता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा जीवन पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि क्रोध की आगन को प्रेम के जल से ठंडा किया जा सकता है। इसीलिए क्रोध करने से पहले प्रेम करने के दरवाजे खोलिए और प्रभु की बातों पर अमल कीजिए, जिससे आपका जीवन अपने आप सुकून और शांति भरा बन जाएगा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम इंसान जितना प्रभु के दर्शन के अभिलाषी बने रहेंगे, हम जीवन में उतना ही सुकून और शांति पाते जाएंगे। हमारी जिंदगी में बीमारियां या मुश्किलें जो भी होंगी, उनसे भी छुटकारा प्रभु देता

हैं आपसे विदा। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। लेकिन अगर आप हमसे फोन या मैसेज के द्वारा बात करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ठंडी ठंडी पवन बही, मन में नई उमंग भरे, ओस की बूंदे घास के ऊपर जैसे मोती चमक रहे। छोड़ो आलस, आंखें खोलो, देखो नया पैगाम आया। बीत गई है काली रात, जीवन में एक नया सवेरा आया। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। नई सुबह का आगाज हो चुका है और इसी के साथ साथ नए विचारों का भी आगमन हो चुका है। नए विचार क्या कहते हैं? नए विचार ये कहते हैं कि नया ज्ञान, नई जानकारियां अगर आपको चाहिए ना, तो आपको बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, तो आप सिर्फ उतना ही बोलते हैं जो आपने सिर्फ पढ़ा है, जाना है, सुना है, सीखा है। लेकिन जब आप सामने वाले को बोलने से पहले सुनने का जो है वो कोशिश करते हैं, तो फिर आप वो चीज़ें सीखते हैं जो उसके पास है, कुछ नई बातें, कुछ नया ज्ञान जो आपको नहीं मालूम है। जब भी हम किसी नए शख्स से बात करते हैं, तो उनके पास कुछ नई चीज़ें होती हैं बताने के लिए, और अक्सर लोग बताना चाहते हैं पर हम सुनना नहीं चाहते, है ना। तो अब से आप जो है वो कहने से पहले सुनने की आदत डालें, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, और अगर बोलें तो तोल कर बोलें, कम बोलें, और बेहतर है कि बोलने से पहले सुन लें। ठीक है, आपको ईश्वर ने दो कान दिए हैं, इसीलिए दिए कि आप बातों को ग्रहण कर सकें पहले। मुंह एक दिया है आपको, है ना, तो इसका मतलब है सुनने का ज़्यादा महत्व है। चलिए आगे और भी बातें होंगी। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी के साथ हैं आप कार्यक्रम सुप्रभात में।

बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है ना, तो आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए, तो फिर जो है आपकी सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है आपने उन्हें कुछ ज़्यादा बोलते हुए कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, इसीलिए आपसे जो आपके पिया है वो रूठ गए, है कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो क्यों है, क्योंकि इससे ना आपकी समझ में भी सुधार होता है। आप जो है जब कम बोलते हैं या पहले दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो दूसरों का जो दृष्टिकोण है उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे बातों में उलझते नहीं हैं आप। एक साफ तौर पर उनके विचारों को समझकर आप उनमें जो है वो सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं, या फिर इससे आपको सम्मान भी मिलता है, क्योंकि जब आप खुद से पहले किसी और को रखते हैं, किसी और की बात को महत्व देते हैं, तो वो आपका सम्मान भी करते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सुनना बहुत ज़रूरी है, कि सुनना चाहो तो बोल उठेंगे अंधेरे भी, सुनना चाहो तो बोल उठेंगे अंधेरे भी, शर्त इतनी है कि तुम्हारी तन्हाई में ज़रा सुकून होना चाहिए।

बिल्कुल, मंजिलों से बेहतर रास्ते ही होते हैं और इन्हीं रास्तों पर हम आपसे मिलते हैं कार्यक्रम सुप्रभात में। शालिनी कहते हैं मुझे और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। मैं कोई नगमा गा रहा हूँ, तुम सुन पाओगे क्या? मेरे पास बैठकर तुम भी गुनगुनाओगे क्या? लिखा है मैंने प्रेम का राग, सबको सुना सकता नहीं, तुम इस राग को चुपके से सुनने आओगे क्या? देखिए ना, कितनी सारी बातें सुनाने के लिए बेताब रहते हैं लोग, कितनी सारी बातें हैं कहने के लिए लोगों के पास, और कोई उनके पास सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा अगर आप किसी को दे सकते हैं तो थोड़ा सा वक्त और अपने दोनों कान उन्हें सुनने के लिए दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग सबसे नहीं कह पाते। शायद आप वो इंसान हो जिसे कहकर वो अपना मन हल्का कर सकें, और आपके साथ साथ आपको उनसे कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिले,

इंसान को बेहतर ढंग से समझने को मिले और उनके चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ सके, मन हल्का हो सके। इसीलिए कहते हैं कि सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। ये बिल्कुल ब्लड डोनेट करने जैसा ही है, बल्कि कई बार तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी की बात को सुन लेते हैं ना, तो कई बार वो गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब सुनते हैं ना, तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, सम्मान मिलता है, गलतफहमी से बच जाते हैं आप। क्योंकि जब हम बोलने की जल्दबाजी में होते हैं ना, तो कई बार बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। हमें सुनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनना नहीं, सुनना ज़रूरी है।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आप

हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

कहते हैं कि उतना ही बोलो जुबान से जितना सुन सको कान से, और बेहतर होगा कि बोलें कम और सुने ज्यादा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। इसमें किसका फायदा है, सुना आपने ध्यान से, इसमें आपका ही फायदा है, बिल्कुल आपका फायदा। और वो कैसे फायदा है, क्योंकि सुनने से जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं, और जब आप नया सीखते हैं ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि जो बातें आपको किताबें सिखाती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको कोई इंसान सिखा जाता है। किताबें पढ़ने से आप शायद उतना ना सीखें जितना आप किसी इंसान को पढ़ने से सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप अलग अलग इंसानों को पढ़ते हैं तो उनके अलग अलग अनुभवों को भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इसीलिए आपके लिए सुनना ज़रूरी है, और सुनने के लिए किसी के दिल में उतरना ज़रूरी है, और दिल में उतरने के लिए एक पेशेंस, धैर्य होना ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो उसकी बातों को ध्यान से सुन सकें, समझ सकें। बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना आपको कई बार फंसा देती है, तो इसीलिए सुनने की आदत डालिए, और बोलने से पहले भी थोड़ा सा रुक कर बोलें, ठहर कर बोलें। इससे आपको जो है वो डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी, आपके खुद के भी, और कई बार आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, है ना। किसी ने हमें क्या खूब लिखकर भेजा है कि जिंदा है तो सुन लिया करो हमारी बातें, ठीक है, जिंदा है तो सुन लिया करो हमारी बातें, वरना जहां से जाने के बाद सुनाना शुरू किया ना तो हमारे नाम के टोटके करवाते फिरोगे, है ना, ऐसी नौबत ना आए आपके लिए। इसीलिए सुन लिया करिए बातें, मेरी भी और बाकी लोगों की भी, ठीक है जी।

नहीं नहीं नहीं नहीं चिरकुट जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है अगर आप उसे बनाना चाहें तो। हाँ, ये आप पर ही निर्भर करता है। आप अगर जो है बोलने से ज़्यादा जो है वो सुनने पर ध्यान देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर हम मटर गश्ती करते करते थोड़ी सी ना समझदारी भरी बातें भी कर लेते हैं, अच्छा रहता है कभी कभी सुन लेना, जान लेना, समझ लेना। किसी ने हमें लिखकर भेजा है कि बोलो सुनो मगर ये याद रखो, दोनों में संतुलन ज़रूरी रखो। हर शब्द के दो मायने निकलते हैं, खुशी दुख दोनों माहौल को देखा करो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप ना बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की ही बात है, आपके फ़ायदे की भी बात है और दूसरे के फ़ायदे की भी बात है। क्योंकि आपको ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, समझदारी मिलती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, जैसे कि हमने बात करी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती है, वो आपको किसी इंसान को पढ़ना सिखा जाता है। तो पढ़िए, किताबें भी पढ़िए, वहाँ से भी ज्ञान लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंसानों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि सब सुनना चाहते हैं, मतलब सब सुनाना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जख्म तो सब दिखाते हैं पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। तो आप जो है वो मरहम लगाने वाले बनिए और इसी तरह से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपनी भी और दूसरों की भी, है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुप्रभात सुन रहे हैं आप, शालिनी कहते हैं मुझे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

एक बार फिर से बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी, कार्यक्रम सुप्रभात में। बात आज हो रही है सुनने की, कि सुनना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने क्या हमें खूब लिखकर भेजा है, हमारे श्रोता ने, कि सुनने के साथ साथ इंसानों को सुनने के साथ साथ हम खुद की आवाज़ भी सुनना भूल गए, उस बच्चे दिल की आवाज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें ज़िंदा दिल बनाए रखती है ना। इसलिए कहते हैं कि दिल के बच्चे को, अपने मन के बच्चे को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है एकदम हंसते खिलखिलाते रहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको जो है वो बोलने से पहले दूसरों की बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आँख से बात करना तो खैर आदत है हमारी, है ना, आँख से बात करना तो खैर आदत है हमारी, कभी जुबां से अपने हाल को कहा करो, हम तो तुम्हारी बातों को समझ लेते हैं बिना कहे, कभी हमारी आवाज़ को भी बिना कहे सुनो। तो इसी तरह से सारे लोग, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी दिल की बात को आपसे कहना चाहते होंगे, लेकिन आप शायद उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। आप जो है हमेशा कहने की जल्दी में रहते हैं, सुनने की आपको कोई कोशिश ही नहीं करते हैं आप किसी की बात को। अगर आप सुन लेंगे तो आपकी भी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और दूसरों की भी, है ना। तो चलिए बस, अब जो है वो जाने का समय हो चुका है, आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। और आपके खूबसूरत मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, आपके समय का शुक्रिया, क्योंकि हम भले ही नाम के साथ मैसेजेस ना पढ़ सकें लेकिन आपके मैसेजेस हम पढ़ते ज़रूर हैं। चलती हूँ, सभी अपना ख्याल रखिए, ते गाना सुनी जाए, ठीक है जी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मिंडर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेलों में आज मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सामना मेजबान जापान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। ये थे AIR FM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ओ जी दीदी ने क्या बोला, दीदी ने कहा कि ये लाइफ है बिंदास, रेनबो को स्विच तो करो। तो रेनबो को स्विच करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां कोई नहीं वहां आकाशवाणी है साहब। सितंबर के महीने की तारीख 18, दिन शुक्र मनाने वाला शुक्रवार। तो शुक्रिया अच्छी सेहत के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के लिए, खाने के लिए, यानी हर उस बात के लिए जो परमात्मा हमें दे रहे हैं। और ये परमात्मा आपको ऐसे ही जिंदगी के अंदर आपको खुशियां देते रहें और आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे। और भाई कोई क्या चाहेगा, लेकिन आपको नहीं नहीं मनीष भाई आपको पता नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं। अरे नहीं नहीं चाहते, सब कुछ आपका, हर कोई जो इंसान है आपका भला चाहता है, हर कोई इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो ये देश भी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के अंदर आपकी भी भागीदारी आती है। बाकी तो समय जो है वो धीरे धीरे अपने आप चलता ही रहता है। 2026 है, कुछ महीनों के बाद देखेंगे आप

2027 आ जाएगा, आप कहेंगे मैंने ऐसे किया था, ऐसा हुआ होगा। तो चलता रहिए सब कुछ। तो हाजिर मनीषा याद रेडियो वाला आज का गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आकाशवाणी रेनबो पर आप लोगों के साथ में। बस बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए और सुनते रहिए क्या आकाशवाणी रेनबो पर। शुरू हो चुका है, शुक्र मनाओ जी, फ्राइडे फ्राइडे।

पीपल ऑन द फ्लोर, जब घर के अंदर जब पोछा लगता है तो वो फ्लोर पर जब आ जाते हैं उसके बाद जो सुनने को मिलता है ये अच्छी अच्छी खबर होती है। तो क्या रहेगा साहब आज का खास दिन, आपको ये बताना, यानी कि क्या रहेगा आज की तारीख का इतिहास। 18 सितंबर है साहब, है ना, कुछ ना कुछ तो जरूर घटा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, और कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि आज आप किन सितारों के साथ में अपना हैप्पी वाला बर्थडे, मैं क्या जी, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है जी, किनकी आज जयंती है उनको भी याद करेंगे, साथ साथ में वो कौन लोग हैं जिन्हें हम आज भी याद कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम जो अमिट छाप छोड़कर गए इस धरती पर, जो कुछ ऐसा लिख कर गए। और फेस्टिवल सीजन के साथ साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है हर जगह, जहाँ पे आप देखो कि बप्पा मोरे आपको दे रहे हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के साथ साथ में कौन सा दिवस आज हम मना रहे हैं सब बातें करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर है साहब। 7 बजे से आपके साथ में मैं रहूंगा बाजी, 8 बजे तक उसके बाद तो शालिनी आएंगी आपके पास लेकर कई सारी और भी खबरें। तो इसका मतलब आपके पास सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको वो हम सारी की सारी जानकारी देते हैं जो आप सुबह सुबह चलते हुए ट्रैवलिंग टाइम में आप सुन भी लेते हैं, काम की बातें भी हो जाती हैं और थोड़ा सा पाजी एंटरटेनमेंट याना हो जाना, ठीक है। के और सुनिधि चौहान को आपके लिए लेकर आए, गाड़ी की स्पीड तेज नहीं करनी है, शीशे में से किसी को झांक के देखना नहीं है घूर के, जिस तरह से आप भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, तो बस एंजॉय कीजिए सफर और साथ में म्यूजिक।

मैंने कहा जी दिल अपने आप ही गार्डन गार्डन हो जाता है कि जब आप कहते हैं ना कि जब सुबह होती है तो साहब सबसे पहले आप जब आंखें मलते हुए जब आप उठते हैं, उठने के बाद आपको लगता है कि साहब हाँ आज क्या क्या काम है। कुछ शेड्यूल सबके पहले से कुछ बने होते हैं, कुछ लोग उस दिन उठने के बाद अपने शेड्यूल्स बनाते हैं, आज ऐसा करेंगे, आज यहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। हर किसी की ज़िंदगी के साथ ये चैप्टर जो है जुड़ा पड़ा रहता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के मन में ये नहीं आ सकता कि भाई आज सुबह उठते कुछ गलत काम करने हैं, है ना। इसलिए जब प्रभु आपको दिन की शुरुआत अच्छे अच्छे रूप में करवाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अच्छे अच्छे ही काम करें। अच्छे अच्छे काम करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब जैसे कि आज का इतिहास, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि 18 सितंबर की तारीख के साथ अब पिछले एक साल में नज़र मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर हटा होगा ना। शायद किसी को कुछ उपहार मिला हो, शायद आपको लगता हो कि भाई ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हमने ऐसे किया था, तो किसी का हैप्पी वाला बर्थडे होगा, किसी को गाड़ी मिली होगी, किसी ने कहीं प्रॉपर्टी ली होगी, शायद आज कहीं किसी की बातचीत भी हुई होगी, भाई ऐसा आज अच्छा जी। तो जब कुछ ऐसा है तो हम आपको बता दें कि 18 जो सितंबर है साहब इतिहास के पन्नों में क्या कहती है, जरा उस पर नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं 18 सितंबर 1809 की, जब लंदन में रॉयल ओपेरा हाउस आज ही के दिन में खुला था। ये अखबारों की दुनिया भी साहब बहुत अच्छी होती है, जिसके अंदर कई सारी खबरें आती हैं जिन खबरों को आप पढ़ते हैं। तो ऐसा ही 18 सितंबर 1851 के अंदर हुआ कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना प्रकाशन शुरू किया। वो साहब जी ये ट्रॉम लाइन जो है ना, ये आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तो हम बात कर रहे हैं 1905 की 18 सितंबर की, जब नीदरलैंड के रोटरडम शहर के अंदर विद्युत ट्रॉम लाइन की शुरुआत हुई।

0: चलो जी बात कर लेते हैं 1905 के बाद, आप आगे आ जाइए, इसके अंदर 14 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि फिर हो जाएंगे 1919, 18 सितंबर की बात कर रहे हैं, जब हॉलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, है ना, कितनी बड़ी बात। ये वो वाला साल है कि जब भारत देश भी, जब 15 अगस्त की हम बात करते हैं 1947 को जब वो आज़ाद हुआ, तो हम ऐसा ही 1947 की हम भी बात कर लेंगे कि जब 1947 के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की हम बात करते हैं, वो उस दिन 18 सितंबर को पारित हुआ था। ओ जी मैं क्या, ये 18 सितंबर की तारीख 1986 के लिए बहुत ही खास थी, बहुत अपने आप में कमाल थी। क्यों? क्योंकि साहब धीरे धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या मिला साहब, पहली महिला पायलट ने उस समय मुंबई से गोवा के बीच उड़ान भरी थी। आगे आ जाइए, कुछ सेवाएं होती है ना, जब बस सेवा होती है, तो एक बस सेवा 18 सितंबर 2003 को ढाका और अगरतला के बीच में शुरू हुई थी, आज की तारीख थी वो, याद रख लेना आप। धीरे धीरे धीरे बात करते हैं, जब भारतीयों की बात आती है ना साहब, अपने आप में सीना जो अपना बिल्कुल बड़ा सा हो जाता है, एकदम से गर्व फील होता है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2007 की, लेकिन ये 2007 की बात जरूर है, लेकिन ये चर्चा उससे बहुत पहले की है। कब? जब कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय, जी हाँ, जियोलॉजिस्ट जीबी मिश्रा को 2007 में विशेष सम्मान से नवाजा गया। और अब आप ये देख लीजिए कि आप आज की जो तारीख है, इस तारीख के अंदर आपको क्या कुछ मिला होगा या मिलने वाला है।
1: वैसे तो अगर हवा में उड़ते उड़ते मम्मी के चप्पल या पापा जी का जूता भी आ जाए तो वो भी आज की तारीख ही याद कर रख सकते हैं आप। कुछ ना कुछ तो मिला ही है, 18 तारीख याद कर लो।
0: याद करने के अलग अलग तरीके हैं साहब, ये बस कुछ कुछ है, और अगर उसी में उपहार में कुछ 5,000 रुपए मिल जाए।
1: अरे वाह वाह कमाल है।
0: सुनते रहिए, महसूस कीजिए और हंसते रहिए, आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर।

मैं त्रेया जी, मैंने कितने जाना है? किसी ने पूछा, मनीष भाई ऐसा क्या है जो हमेशा ताजा रहता है, बिल्कुल कभी भी उसकी जो खुशबू है, महक है, एहसास है, स्वाद है, बेकार नहीं होती, बासी नहीं होती। मैंने भी कह दिया साहब, मुबारकबाद एक ऐसा शब्द है, किसी को भी दे दो, जब भी दोगे तब वो ताजा ही लगेगी। चाहे आप उसको एक कह देना भाई साहब का हैप्पी बर्थडे, वो यार एक महीने पहले था, अरे भाई साहब मुबारकबाद आज दे रहे हैं आपको, अरे वाह वाह क्या बात, धन्यवाद जी धन्यवाद। समझ गए आप, किसी को भी अगर आप कुछ दे सकते हैं तो आप अगर मुबारकबाद किसी को भी देंगे ना, सामने वाला मोटिवेट होता है। अब मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भी इंसान किसी की बातों से भी हो सकता है ना, पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई अगर इंसान बहुत अच्छे से कर ले तो फिर तो कामयाबी आपके पास हो जाएगी। लेकिन ये बात बच्चों को समझाए कौन सा? अब समझाने के लिए तो उनको मम्मी पापा रोज लगे रहते, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अजी पढ़ ले अजी, हाँ हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, नहीं और कोई आएगा पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप पढ़ पढ़ कर कुछ एक कैसे ना ऐसा नाम कमा लेते हैं तो फिर अपने आप में ही एक मिसाल बन जाती है, और एक ऐसी मिसाल कि ऊपर वाले ने भी शायद इनके लिए कुछ ऐसा सोच रखा होगा। आज इनकी जयंती भी है और इनकी पुण्यतिथि भी है, ऊपर वाले ने आज ही के दिन इनको जन्म दिया था और आज ही के दिन इनको धरती से अलविदा भी कर दिया। बात कर रहे हैं हम काका हाथरसी साहब की, भारत के प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि, ऐसा कवि मतलब जिन्होंने अपनी शैली के अंदर कई सारे लाखों श्रोताओं और पाठकों का मनोरंजन तो किया ही किया, लेकिन आज वो जितने ऐसे और भी कवि हैं जो उनकी रचनाएं समाज में, जो अगर हम किसी दोष की बात करते हैं, कुर्ती की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, या राजनीतिक कुशासन की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, सबकी तरफ वो ध्यान अपनी बातों से लगातार खींचते रहते हैं। ऐसे ही थे काका हाथरसी साहब, आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी हास्य कविताएं जिन्हें वे हमेशा फुलझड़िया कहा करते थे, सदैव गुनगुनाते रहते हैं। कई सारे लोग इनकी शैली को अपनाकर आज अपना अपना जीवन भी चला रहे हैं और अच्छे रूप में चला रहे हैं। धीरे धीरे तो देखिए, बचपन में तो जब बहुत सारे काम होते हैं साहब, तो कहते हैं तो उन्होंने तो मतलब कचौड़ियाँ भी बेची हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मन में ही ये था कि कुछ ना कुछ लिखना है। लिखते लिखते उनकी रचना शैली इतनी हो गई कि उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर अपनी रचनाओं का पाठ किया, अपना काव्य पाठ किया, और लोगों के बीच में धीरे धीरे धीरे करते करते प्रसिद्धि हासिल कर ली। ये प्रसिद्धि इस रूप में हो गई कि भारत सरकार की तरफ से 1985 को उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। कहते हैं कि साहब काव्य पाठ तो करते ही थे, लेकिन काका हाथरसी साहब ने हाथरस में संगीत की उन्नति के लिए भी गर्ग एंड कंपनी एक उन्होंने स्थापित की थी, उसके अंदर भी साहब बहुत बड़ा उनका रुझान था और बहुत सारे लोगों को सिखाया भी, किताबें भी लिखी हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी रचनाएं आप देखेंगे। कभी मौका मिले तो जाके सर्च कीजिए इनके बारे में और फिर पढ़िए, पता लग जाएगा। हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से छत छत नमन करते हैं।

आने के बाद आपको बताएंगे कि आज आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे किनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज कौन सा वाला जो डे मना रहे ना, जहां पे कहते हैं साहब सब कुछ एक साथ एक जैसा होना चाहिए, तो फिर उसके लिए तो सुनना पड़ेगा और कहीं जाना नहीं है। अपनी अपनी बात करो। देखो विशाल डडलानी साहब कैसे बता रहे हैं आपको, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता साहब।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है साहब आकाशवाणी रेनबो पर, और बड़ा जोर दिया गया विशाल डडलानी साहब ने कि हुआ छोकरा जवारे, इसका मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी अब आ चुकी है। ये ध्यान रखिए साहब, क्योंकि अब आपको भी समाज के लिए, देश के लिए अपना योगदान करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब हो चुके हैं अब। लेकिन आपको बता दें कि आज 18 तारीख है साहब, भाई किन के साथ आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं शबाना आजमी साहब के मोहतरमा के साथ में, ठीक है जी। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं अभिनेत्री हैं। सोच के देखिए साहब, घर के अंदर बाबूजी यानी कि इनके फादर साहब कैफी आजमी साहब, प्रसिद्ध शायर, भाई बाबा आजमी जी सिनेमाटोग्राफर हैं, मम्मी जी शौकत आजमी जी वो घर के अंदर ऑलरेडी एक रंगमंच की बड़ी अदाकारा, इनके बीच में इनका बचपन गुजरा है। और फिर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने राष्ट्रीय अवार्ड अगर पांच बार किसी को मिल जाए तो फिर अपने आप में बड़ी कमाल है। लेकिन मुझे तो जो याद आती है, वैसे तो शुरुआत की अर्थ फिल्म है, लेकिन उसके बाद परवरिश फिल्म मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप सब लोगों को भी याद होगी तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, अमर अकबर एंथनी वो भी थोड़ा सा, लेकिन परवरिश को मैं उससे ऊपर रखता हूँ, वो बड़ी कमाल की फिल्म थी। स्वामी भी अच्छी थी वैसे तो। आप सबकी अपनी अपनी फिल्में होंगी, लेकिन मेरे को ये वाली फिल्म बड़ी पसंद आई। अब ये हैप्पी वाला बर्थडे की बात तो हो चुकी है, आप भी अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम आपको बता देते हैं साहब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस जरा मैं यूं गया और यूं आया, उसके बाद आपको बताएंगे कि आज हम कौन सा वाला दिवस मना रहे हैं, ठीक है? तो कहीं जाना नहीं है।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मैंने किथे जाना है भाई, मैंने तो काम की बात लेकर आनी है। दीदी ने क्या बोला, थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात। ये गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का जो हमारा ये शो है ना साहब, इसके अंदर यही होता है, प्यार से बहुत सारी चीज़ें आपको बताते चलते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अब

पेड है, यानी कि अब समान वेतन दिवस कैसे है साहब? हम कह रहे हैं कि हम 2026 में आ चुके हैं, सब हर दुनिया कह दे कि हम लगभग 21वीं सदी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी साहब मानसिकता में बदलाव की मुझे ऐसा लगता है जरूरत है। आज भी कहीं सारी जगह पर आप देखेंगे जहां जाते होंगे तो आपको कहीं वहां पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव वाली जो चीजें वो आती होगी, समान काम के लिए भी महिलाओं को बराबर वेतन नहीं दिया जाता साहब, ऐसा कौन करता है और ऐसा कौन से देश की जो ये परिभाषा उसकी बात करते हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत की गई 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए कहा गया कि बहुत सारी चीजें होती हैं साहब, इसको देखेंगे तो 15 नवंबर 2019 को 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर का जो दिन था इसको घोषित किया और प्रस्ताव को अपनाया और प्रस्ताव में कुल 105 सदस्य राज्यों ने सह प्रायोजित अपना भागीदारी कहा कि नहीं जी साहब, जो आप कह रहे हैं इसको जरूर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि साहब ये जो बीच की जो खाई है ना, इसको पाटना बहुत जरूरी है। इसलिए समझिए आप, जिस तरह से असमान वेतन महिलाओं को दिया जाता है, इससे भेदभाव की खाई और अधिक गहरी हो सकती है। तो आज ये वाला दिवस है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप सोचिए जरा साहब, ठीक है। बाकी जो आपके मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका समय तो आने दीजिए, तभी तो हम बताएंगे। हैं सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है। रेडियो पर जो इस तरफ से आवाज आ रही है बंदे की है, बंदे द नाम मनीष आजाद रेडियो वाला। तुलसी कुमार, नीरज, शिरी, धर

जाते जाते भी कुछ बेबे बेबे करके कुछ बोल रहा था है, मैं जैसे कुछ सुनाई देते बेबे बेबे। देखो जी, लव मेरा हिट हिट वो तो कह रहा है, हिट चैनल, हिट प्रोग्राम, हिट हमारे सारे आरजेज और बाकी हिट आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जो आपने भेजे हुए हैं। इन सब के साथ साथ में, हिट के साथ साथ में साहब, एक और भी बंदे थे जिन जो अपने आप में भी ज़बरदस्त हिट थे साहब। बात कर लेंगे ना आज उनके बारे में, लेकिन फिलहाल उससे पहले आपको बता दें कि ये हिट एकदम से पिट भी हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, इनके बारे में तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते साहब, हिट वाली चीज़ तब तक अच्छी लगती है जब तक आप कोई भी गलत लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं, तब तक तो हिट रहता है। नहीं तो ये हिट अपने आप में जब क्लिक करते वो हिट की जगह हॉट कब हो जाता है सब पता नहीं चलता है, क्योंकि आपकी 20 नाखूनों की जो गाड़ी कमाई है ना साहब, ऐसे यूं उड़ जाती है। इन लोगों का जो काम है ना साहब, इन लोगों का काम ठगी करने का ही है, क्योंकि ये अपने नाम के पीछे, जो आपके नाम के पीछे कुछ कुछ सरनेम होते हैं, इनके नाम के पीछे ठग लिखा होता है, इनको ये ठगी करनी है, किसी तरह से आपको अपने जाल के अंदर फंसाना है, किसी तरह से आपकी जो कमाई है उसको उड़ाना है, किसी तरह से ये एक नए नए पैतरों को ये इनको आजमाना है। अब कभी कह देंगे, आजकल आप देखेंगे मोबाइल पे आपके व्हाट्सएप पर APK फाइल आती है, किसी ने अभी आपको परसों की बात है मतलब मेरे मोबाइल पर कि आपका चलान साहब आ चुका है, इस चलान को भरने के लिए अगर नहीं भरेंगे तो ये कोर्ट में जाएगा, क्या करना है अब आप सोच लीजिए। जबकि ये वाला मैसेज किसी जानने वाले के उसमें आया, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब आपके, तो उन्होंने कहा साहब मेरा फ़ोन जो है हैक हो चुका है और वो किसी ने ऐसा ऐसा मैसेज आपको भेजा, उस पर क्लिक ना करना। अब मुझे तो पता था साहब ये जरूर APK की जो फाइल है वो वायरस है बेसिकली, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ये एकदम से आपका जो मोबाइल का जितना भी एक्सेस है वो जो जिसने भी ये भेजा है वो चला जाता है। अच्छा, इन लोगों के पास ये सारा ना डेटा होता है, ये डेटा भी कोई ना कोई तो इनको प्रोवाइड करा रहा होगा साहब, वरना ये नंबर्स कैसे जाते हैं, समझ गए ना आप। डेटा जिसने भी प्रोवाइड करवाया वो सब लोगों के पास वो रैंडम मैसेज भेज देते हैं। सोच के देखिए, अगर इन्होंने 500 लोगों को मैसेज भेजा, 0.01% यानी कि 5 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया और 5 में से क्लिक करने के बाद एक उनके जाल में आ गया, हो गया ना इनका काम, तो जो आपकी वो जो हिट वाली कमाई थी वो हॉट बन गई ना साहब एकदम से ही, वो ये काम करते हैं। तो इसलिए आपको इन सभी बातों से बचना है, ध्यान देना है कि कहीं कोई आपकी जो कमाई है वो सब उड़ ना जाए। वैसे भी अब UPI का तो आपको पता चल गया ना साहब, 15 अक्टूबर से ये जब आपके और भी चार्जेस लग जाएंगे 2000 के ऊपर से, तो इसलिए कोशिश कीजिए आप अपनी जेब के अंदर पैसा रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, 2000 से कम तो कुछ भी नहीं है, वैसे तो 2000 से कम ही होगा, लेकिन भाई मतलब मेरे जैसे गरीब से ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो 2000 से ज़्यादा पेमेंट करते होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, बचकर बिना किसी इधर उधर के करके अपना क्लिक कहीं नहीं करना है। और बेकार की बातों को कुछ भी, जब कोई फाइल आ गया किसी ने भेज दिया व्हाट्सएप, वो डाउनलोड करना ना जी, वो डाउनलोड कर, अरे भाई साहब इतना खाली समय आपके पास है क्या, नहीं ना, अगर है भी

अगर सोचिए आपका नाम जानम होता तो कितने प्यार से आपको बोला जाता, समझा करो, कितनी बार बोला समझा करो। तो समझा करो साहब कि समय धीरे धीरे आगे भाग रहा है, लेकिन आपको भी उसके साथ साथ में चलना है, रुकना नहीं है। जिस तरह से चलते चलते आज जिनकी पुण्यतिथि, हम इनकी बात करें

सुनती हो, याद आ गया आपको? आसिफ हुसैन साहब, लगभग लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया और अपनी भूमिका से, कब में कहते हैं, हास्य भूमिका से कई सारे, आप वो फिल्म याद होगी आपको, प्रतिज्ञा फिल्म थी ना, जिसके अंदर वो कमाल का साहब उन्होंने रोल किया, कितने सारे आप देखेंगे। तो मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है ब्रह्मचारी जैसी मूवी उनको देखेंगे तो लूटपोट करने के लिए उन्होंने आपको मजबूर कर दिया साहब। कलकत्ता से निकलकर जब आप बॉम्बे आए, बॉम्बे आने के बाद अपना आपने काम वहां पर किया, तो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आज इनकी पुण्यतिथि है, पूरे आकाशवाणी रेनबो की तरफ से छत छत नमन करते हैं इन्हें।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे तक अपने लिए तीन तीन नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के तीन तीन विकल्प देने को कहा है। विदेशी अंशदान विनिमयन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी

वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दन्नुक के कुलदान इलाके में 3 शव मिले हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। एशियाई खेल में आज मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सामना मेजबान जापान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। और भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

आपकी वाणी आकाशवाणी।

मामू मामी चाचा चाची ताऊ ताई सिस्टर ब्रदर और मेरे प्योरी प्योरी श्रोताओं फ्रेंड्स दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उठने का समय हो चुका है क्योंकि आप जो ये 3 घंटे से 5 मिनट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा वाला झूठ बोल रहे हैं ना आप, और सोए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं चलने वाला इधर, है ना, जो कह रहे कि बस 5 मिनट सो लेने दो, उठती हूँ मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि महीना इधर जगाने को ही चाहिए, तो मैं जगा के जाएगी और जाएगी किधर, अभी तो मैं आई है तो अभी नहीं जाएगी, जगाएगी, गाना सुनाएगी और फिर बजाएगी। क्या बजाएगी? कहीं नहीं तो बजाएगी, उसके बाद में कमर्शियल्स बजाएगी और उसके बाद क्या, फिर जाएगी मैं इधर से, तो शुरू कर लेने का क्या। शो का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, चैनल का नाम है आकाशवाणी रेनबो 102.6 और मेरा नाम तो आप जानते ही नहीं होंगे। जानते हैं क्या? अरे वाह, क्या बात है, इशारा नहीं कहते मुझे। तो हो जाए पहला वाला गाना, ठीक है जी।

0: क्या लगा आपको?
1: यहाँ पर कोई पंछी संग्रहालय? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन बतूता है। इवन बतूता किसे कहते हैं? कहते हैं बत्तख के बच्चे को। इसीलिए तो मैं यहाँ पर ना इसी तरह की हरकतें दिखाती हूँ, आपको तो पता ही है मेरा। फिलहाल आप जो जानते हैं वो ये कि ये जो शो का नाम है उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मुझे कहते हैं शालिनी, और आपको क्या कहते हैं तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पता कर लीजिए जरा अपने माता पिता से। मैं यहाँ पर आपको ये बताने आई हूँ कि जो दिल्ली एनसीआर की ढेर सारी खबरें हैं ना, उनसे आपको जो अवगत कराने आई हूँ। क्या शुद्ध हिंदी बोली है मैंने, देगा ऐसे थोड़ी। तो अभी फिलहाल जो पते की बात है वो ये है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है ना वो 24 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो वो तो ठीक है कि कम हो गया थोड़ा पहले से, लेकिन ये फील जो है 27 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे कोई बता दो कि एसी चलाना है कि बंद करना है, मैं कंफ्यूज ही होती है, मेरे को आती होती है यार, कभी बढ़ जाता है टेम्परेचर, कभी घट जाता है। ऐसी आँख में जोली ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खेलो तो ढंग से खेलो हाँ, ताकि मुझे जीतने का मौका मिले, ऐसा थोड़ी होता है। फिलहाल मैं आपके लिए गाना चला देती हूँ, आप जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना। मैं क्या जी सोने मखड़ो दिल्ली वालों की हाल चाल नहीं, और दिल्ली वाले कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल है। चला देती हूँ उनके लिए भी गाना। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, स्टे ट्यून्ड।

नहीं मतलब दुपट्टा चाहे वो कितने भी रंग का हो, 9 रंग का 10 रंग का 20 रंग का, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उसका करेंगे क्या? क्या करेंगे दुपट्टे का? किसी की माँ बहन से दुपट्टा मांगती है, अच्छा लगता है ही? हो गया ना, बोलती बंद, ऐसे ही चुप करा देती हूँ सबको। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं मुझे अनिशा रानी का, और शो चल रहा है की गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बातें होती हैं? यहाँ पर होती हैं ढेर सारी न्यूज़ अपडेट्स, और होते हैं गाने, और होते हैं कमर्शियल्स, और होते हैं इसके अलावा छोटे छोटे एड ब्रेक्स। ठीक है, तो फिलहाल मस्ती के तड़के के साथ ना आपको न्यूज़, बेहतर इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मेरी बातें तो है ही, आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से? मैं तो बोली जा रही हूँ, आप उठेंगे कब? हैं, हदी हो गई है, पिछले 15 मिनट से आपको उठा रही हूँ, इतना बोल बोल के मुँह थक गया, पर आपके कान में जू नहीं रेंग रही। क्या कह रहे हैं, जो है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास कोई दूसरा बहाना नहीं, मैं गाने चला देती हूँ, ठीक है?

0: नहीं मैं तो आ गई हूँ, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं पर हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, चाहे आप गोरी से करें चाहे जिससे भी करें, बड़ी गलत बात है, प्यार कीजिए आप, चोरी छुपके कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन जो गोरे काले का भेदभाव करते हैं ना, ये बहुत ही गलत बात है। ये बात ना मुझे पसंद नहीं आई है। मैं आपको बता दे कि ऐसी गल ना क्या करो तुसी, ऐसी बात ना को करो ना, मेरे को पसंद नहीं आती हैं ऐसी बातें। लेकिन जो बातें पसंद आपको आएंगी वही मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये बता देती हूँ आपको कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग की हाल चाल है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। हो गया बहुत सारा गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने आपको ऑलरेडी। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आप जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो आजकल की जो रोड्स हैं ना एक्सप्रेसवे की, बहुत ही स्मूथ हो गई हैं, तो ऐसे में आपको नींद तो आ ही जाती है ना, और नींद में तो आप एकदम परफेक्ट है, हमेशा आप तैयार ही रहते हैं सोने के लिए। लेकिन वो नींद तब खुल जाती है जब टोल प्लाजा सामने आता है। पर अब ऐसा शायद ना हो पाए, क्योंकि आपकी उस नींद को बरकरार रखने के लिए और ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए और आपको लाइनों में रखने से बचाने के लिए ना, ग्रेटर नोएडा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए अब लिंक एक्सप्रेसवे पर गाड़ी को रोकना नहीं पड़ेगा, तो टोल जो है वो अपने आप ही कट जाएगा। तो वो वाला बहाना नहीं चलेगा,
1: ए भाई साहब 20 रुपये कम है, छुट्टे नहीं है मेरे पास, 50 ही रख लेना, चलेगा क्या?
0: ये एक्स्ट्रा हंसी देने से ना कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि टोल तो कट ही जाएगा। फिलहाल इस सुविधा का जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा ना, वो एयरपोर्ट से आने वाले और जाने वालों को होगा। तो इस सुविधा की शुरुआत के साथ ही जो त्योहार का सीजन आने वाला है और उसमें लगने वाली जो लंबी लंबी कतार है, उससे आपको निजात मिल जाएगी और इसके साथ ही जाम में तो राहत मिलेगी ही। और इस लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो है वो नोएडा एयरपोर्ट और हरियाणा का जो मोहना क्षेत्र है उसको जोड़ा गया है। तो दिसंबर के अंत तक यानी कि एंड तक इस लिंक एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया जाएगा और काम पूरा होने के बाद पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। तो उड़ा उड़ा क्या गाड़ी नहीं?

आनी है। लुत्फ उठाओ और उड़ाओ मुझे यहाँ पर अच्छे अच्छे गानों की। कहते हैं इसे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, शालिनी कहते हैं मुझे, और आपको तो पता ही है कि यह है आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: मैग्या जी, वेलकम बैक है थोड़ा साड़े शो में, जिसका नाम है
1: क्या, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मतलब इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं कि आपको तो अब याद हो जाना चाहिए ना, एकदम अपने हाथ पे लिख लीजिए, टैटू करवा लीजिए इस शो के नाम का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और शालिनी कहते हैं मुझे, और फिलहाल मैं कह देती हूँ एक खास बात जो किसी ने मुझ तक पहुँचाई है। उन्होंने कहा है कि गुस्से की आग में भी तेरी फिक्र छुपी होती है, तेरी हर डांट में मेरी भलाई छिपी होती है, चाहे जितनी भी तकरार हो जाए हमारी दरमियाँ, तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी सी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने जो मैसेज भेजा ना, मैं आपको बता दूँ क्यों मैंने आपको बताया बढ़ के। वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, कितना भी गुस्सा हो जाए, ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, उल्टा आप ही गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। कहते हैं कि
2: मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैसेज पढ़ो बड़ा मत से, ए, इतनी देर हो गई मैं मैसेज लेकर, तुमने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक है?
0: तो बताइए, अब ना मैं डर से थर थर कांप रही हूं, पसीना भी आ गया, मैंने मैसेज पढ़ दिया, उल्टा आप इल्जाम लगाते कि मैं गुस्सा करती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। और फिलहाल मैं आपको एक न्यूज बता देती हूँ, ये रोना धोना बाद में कर लूंगी थोड़ा समय। अभी जो है वो सेवा संकल्प अभियान जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है 17 सितंबर से, और इसको जो है सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसको इसकी शुरुआत हुई है जो 17 अक्टूबर तक चलेगा, और स्वच्छ भारत मिशन और जन सेवा से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी निकायों के तहत जो है वो साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। उद्देश्य है इसका कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, स्रोत पर कचरे को अलग करना और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना इस अभियान का मुख्य हिस्सा है। तो सफाई पर ध्यान दीजिए,
2: ऐसा नहीं कि पान की पीक ठोककर कहीं भी चले गए, मैं बता रही हूँ,
0: कसम खा के कह रही हूँ मैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो सड़क पर थूक के चले जाते हैं। पानी पीने जा रही हूँ मैं, गुस्से को कंट्रोल करना ना, नहीं तो क्या पता क्या बोल दूँ मैं, ऐसा थोड़ी होता है, जस्ट चिल चिल करने जा रही हूँ मैं।

हाँ हाँ बस बस बहुत हो गया, इतना चलो ना काफी है, वरना प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, फिर आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे, तो बस इतना ही काफी है। फिलहाल वेलकम बैक है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम है शालिनी और चैनल का नाम है आकाशवाणी रेनबो 102.6। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, भले हम पढ़े मतलब पढ़ेंगे, गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिएगा, पढ़ते तो हम जरूर है। 9868107070 इज द नंबर जिसपे आप इस शो से रिलेटेड कोई भी आपका फीडबैक हो आप हमें दे सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो हमको देते रहिए अपना फीडबैक। और फिलहाल मैं आपको बताती रहूंगी वो बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है ना, बहुत देर से कुलबुला रही है, वो ये है कि एक कक्षा में ना गुरुजी अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, बहुत देर से विद्यार्थी ना कुछ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो गुरुजी बोले कि सुनो यहाँ कक्षा में आज से ना कोई भी

0: अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, शुद्ध हिंदी में बात करिए।
1: तो इतने में एक विद्यार्थी बोलता है कि
2: गुरु जी, मैं क्या आपसे कुछ कहने की अनुमति ले सकता हूँ?
1: गुरु जी बोले कि हाँ बिल्कुल बोलिए। तो विद्यार्थी बोला कि
2: गुरु जी, मेरे मुख विवर के भीतर ना एक तीक्ष्ण और वेगवान चीख उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आपकी इस कक्षा के ठीक पीछे एक विशाल काय मूसलाधार वायु प्रेरित यंत्र यानी कि पंखा अचानक मेरे मस्तक पर आ गिरा है।
1: और इसके बाद गुरुजी बेहोश और हम वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मतलब हिंदी से सबको प्यार करना चाहिए, पर हिंदी खुद भी तो आनी चाहिए ना, है ना, समझ में भी आनी चाहिए ना। तो इसीलिए दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को पहले आनी चाहिए, वरना ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हिंदी का सम्मान करिए। और इसी के साथ मैं हिंदी से पखवाड़े से जुड़ी हुई खबर आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो ये है कि हिंदी पखवाड़ा 2026 जो है वो 16 सितंबर से शुरू हो चुका है और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी कि इसे जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, और हिंदी भाषा से जुड़े हुए स्पेशल सेमिनार्स और कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पर जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप जो है इसी तरह से आप भी हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम जताइए, कुछ बातें हम तक पहुँचाइए। सुनिए सुनाइए क्या अगला गाना जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, शुद्ध हिंदी में आ रहा है आपके पास, जितनी समझ आए समझ लीजिएगा, बाकी तो मिक्स हो गई, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी बाद में।

बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से मौसम के मिजाज जो है वो बदल रहे हैं और जगह जगह बाढ़ें और तूफान आ रहे हैं और पानी में जो है वो शहर के शहर गांव के गांव डूबे जा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक दिन मुझे भी ना यही गाना गाना पड़ेगा कि प्रेम की नैया है राम के भरोसे, मेरी जिंदगी की नैया को पार तू लगाई दे। चई चपा छई छई छपा छई छई चपा छई। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, शालिनी कहते हैं मुझे, और आप जो कह रहे हैं वो तो मैं सुनी रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ और पढ़ के आप तक पहुँचा भी रही हूँ उससे जुड़ी हुई बातें। लेकिन जो मेरे पास बातें हैं वो भी तो आप तक पहुँचानी ज़रूरी है, और वो ये कहती हैं कि पी से पी से कर दियो, पी से भी क्यों मर दियो ही। तो पैसे से याद आया मुझे कि मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि अगर पैसा और अक्ल बैठ रहे हो तो तुम उसमें से क्या चूज़ करोगी। तो बोले कि पैसा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी ख़राब इंसान हो तुम। तो बोले अच्छा, अगर तुम होती तो क्या चूज़ करती, अक्ल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोली हाँ क्यों नहीं, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वही तो चूज़ करता है। मुझे जो गुस्सा आया है, जो गुस्सा है मैं बता रही हूँ आपको, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, दोस्त है ना उसे पीट भी नहीं सकते, हद होती है, ऐसे दोस्त है ना दुश्मन अच्छे होते हैं। इमोशनल अत्याचार नहीं करती हूँ मैं आपके ऊपर। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि ATM से पैसे निकालने पर क्या कहता है RBI का नियम। RBI के जो मौजूदा नियमों के मुताबिक सेविंग अकाउंट में अपने बैंक के ATM से कम 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर महीने मुफ्त होने चाहिए। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी मुफ्त रहने चाहिए। दूसरे बैंक के ATM की अगर बात करें तो 6 मेट्रो शहरों यानी कि मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में कम से कम 3 ट्रांजैक्शंस जो है वो फ्री हैं, और इन 6 शहरों के अलावा अन्य स्थानों पर यानी कि दूसरे बैंक के ATM से कम 5 ट्रांजैक्शंस जो है वो फ्री हैं, और इसके बाद जो है ऐप के ऊपर जो है वो टैक्स लग सकता है, मतलब आपके पैसे कट सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। RBI के अनुसार ATM से फ्री लिमिट के बाद जो है वो बैंक जो है ग्राहक से हर ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा 23%+ लागू टैक्स वसूल कर सकते हैं। कौन सी भाषा में बोली मेरे को कुछ समझ नहीं आया, फिर से बोलती हूँ। 23% आपको ये देने पड़ सकते हैं और टैक्स भी वसूला जा सकता है थोड़ा बहुत, यानी कि अगर किसी बैंक के नियम में 23% और GST लागू हो सकता है तो 18% के साथ ये रकम जो है किसी किसी में 27.14 रुपये तक भी जो है वो हो सकती है। तो ना ध्यान से इस्तेमाल करिए, यानी कि एक बार में 500 का नोट निकाला, फिर अगली बार 500 के निकाले, इकट्ठा निकाल लिया करो ना 3-4 हज़ार रुपये। ऐसे कैसे होता कि पहले 100 निकाला फिर 500, ऐसे तो आपके पैसे कटेंगे, बता रही हूँ मैं आपके भले की बात कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए अगला गाना सुन लेते हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: ये मेरी सीट है, हटो इधर से।
1: अरे ऐसे कैसे तुम्हारी सीट है, मैं बैठी थी यहाँ पर।
0: अरे ऐसे कैसे मेरी सीट है ये?
1: कोई सबूत है तुम्हारे पास?
0: सबूत? सबूत? मैं इधर तो लिया और मूंगफली के छिलके छोड़ के गई थी ना, देखो उधर।
1: ऐसे ही झगड़े होते हैं ट्रेनों में, और खास तौर पे त्योहारों के मौके पर। तो आपके साथ ऐसा ना हो और आपके बाल ना नोचे जाएं और आप एकदम चुड़ैल टाइप ना लगे, उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ खबर। दिवाली और छठ जैसे महापर्व पर घर जाने वाली यात्रियों के लिए ना बहुत सारी जो भीड़ होती है उसको देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। किस तरह की? देहरादून और गढ़वाल के यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए ऋषिकेश कोलकाता के बीच त्योहार विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, और इसके साथ ही अमृतसर कोलकाता और अमृतसर बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इस फैसले से जो देहरादून ऋषिकेश मुरादाबाद और आसपास

के क्षेत्रों में पूर्वांचल बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट के लिए राहत मिल जाएगी। सो इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लॉग ऑन टू www.irctc.com। ठीक है, फिलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि समय हो गया है। हमारे एकदम बराबर में अगर खड़े हैं मनीष, तो उनके शो को आप इंजॉय करिएगा। फिलहाल मैं जाती हूँ यहाँ से और आपके लिए बजा कर जा रही हूँ गाना बढ़िया वाला लव गर्ल। सो इंजॉय। मैं गया जी सोने मकड़ो, ख्याल रखें ते गणा सुनी जाए। शालिनी सेस टाटा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है AIRFM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी

वाणिज्य और समाजशास्त्र के विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मिंडर इलाके में बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दन्नुक के कुलदान इलाके में 3 शव मिले हैं। बांग्लादेश से भारत आने वाली हिल्सा मछली अब भारत से बांग्लादेश निर्यात की जा रही है। यह क्षेत्रीय मत्स्य कारोबार में एक महत्वपूर्ण है। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। एशियाई खेलों में आज मौजूद महिला क्रिकेट चैंपियन भारत का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला मेजबान जापान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे 2020 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। ये थे AIR FM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दीदी ने क्या बोला, रेनबो 102.6 पर। तो 102.6 पर समय हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का 9 बजे से लेके 10 बजे तक वाला सफर आपके साथ में रहेगा। बैक टू बैक म्यूजिक होगा, कहते ना कि जी गाने जब चिपक चिपक के एकदम के एक बजा दूसरा बजा तीसरा बजा सब आपके साथ में होंगे। और होगा भाई साहब 9:15 बजे बहुत ही खास कार्यक्रम, सुनना बिल्कुल नहीं भूलना। बंदे का नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला।

0: नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र और आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आज के इस कार्यक्रम में,
1: जिसमें होगी युवाओं की एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा। और मैं हूं विद्या।
0: स्कूल एजुकेशन के बाद ग्रेजुएशन करते हुए कई बार अपने लिए सही विषय का चुनाव कर पाना स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है।
1: ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, और इसी उद्देश्य के साथ आज के हमारे इस एपिसोड को डिजाइन किया गया है,
0: ताकि स्टूडेंट्स तक

0: मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए स्वागत करते हैं कार्यक्रम में कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग और डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मांगो मैम का।
1: नमस्ते
0: पायल मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे SOL के BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम कोर्सेज और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में।
1: BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम जो कोर्सेज हैं SOL के, वो

0: में, कॉरपोरेट लॉ के फील्ड में, इस तरह फाइनेंस के जितने भी अलग अलग तरह के फील्ड है उसमें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करने के साथ साथ स्टूडेंट्स अपने आप को सीएस, सीए, इन सब कोर्सेज में भी साथ साथ वो अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं। और दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 50% जो सीएस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीकॉम या एमकॉम अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ज़रूर किया होगा। और इसके साथ साथ जो कॉमर्स के कोर्सेज हैं इसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, कॉमर्स के साथ में जो माइनर इंट्रोड्यूस किया है वो एंटरप्रेन्योरशिप किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंपनी कैसे बनानी है, उसको कैसे रजिस्टर करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको उस माइनर में आपके कॉमर्स के कोर्स के साथ साथ मिल जाएंगी।
1: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा मैम, ये बताइए कि SOL के BA FIA यानी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कोर्स में स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप का करियर आगे वो भविष्य में चुन सकते हैं?
0: जो BBA FIA कोर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ना कि SOL का ही बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। बहुत कम कॉलेजेस में है, ये केवल 2 कॉलेजेस में, राजगुरु और शहीद सुखदेव कॉलेज में, और इमीडिएटली इसके बाद स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। वो फाइनेंस के फील्ड में, इंटरनेशनल फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिस्ट के फील्ड के अंदर अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और फाइनेंस की सारी जानकारी उनको इस कोर्स से मिलती है। बहुत ही इंटेंसिव इसका प्रोग्राम है और इंटेंसिव इसका करिकुलम है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ से जो कोर्सेज, जो SLMs इनको दिए जाते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वो भी बहुत अच्छे से जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस की फील्ड है उसको पूरे अच्छे से कवर कर लेते हैं।
1: पायल मैम, जो स्टूडेंट्स BMS पढ़ना चाहते हैं उन्हें SOL में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होंगी?
0: उनको एक तो लैंग्वेज चाहिए, कोई भी लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी हो 12th क्लास में, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स एक कंपलसरी है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो OBC हैं 40.5% की एलिजिबिलिटी है, और इसके साथ में जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनका 12th क्लास है उसमें पास होना जरूरी है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटीज हैं, और इसके बाद आप इस कोर्स में अगर आपके पास मैथ्स है और लैंग्वेज है आप अप्लाई कर सकते हैं।
1: पायल मैम, SOL के MBA कोर्स को लेकर स्टूडेंट्स में विशेष जोश देखने को मिलता है, इसका कोई खास कारण है क्या?
0: हाँ, MBA बहुत ही इम्पॉर्टेंट SOL का कोर्स है, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है। FMS में जो MBA पढ़ाया जाता है, जो करिकुलम है, वो सेम MBA स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी है। हर साल हमारे पास MBA करने के लिए करीब 3000 से 3500 स्टूडेंट्स आते हैं, और ये 3000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सीनियर लेवल के कॉरपोरेट गवर्नमेंट में काम करने वाले, और कुछ ऐसे भी लोग जो उनको लगता है कि हम MBA अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, हम अब रिटायरमेंट की तरफ हैं, अभी हमें मैनेजमेंट का कोर्स करना है, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आकर MBA करते हैं। MBA के 2 कोर्सेज हम चलाते हैं, MBA जो कि जनरल MBA है, और दूसरा MBA एग्जीक्यूटिव है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। ये हमने इसी साल से शुरू किया है। कोई भी स्टूडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA कर सकता है हमारे पास आकर, जिसने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लिए हैं वो MBA कर सकता है, MBA हेल्थ केयर में भी कर सकता है। हम उसके साथ में परस्यू करते हैं कि MBA हेल्थ केयर में जो हमारी जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें कि मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ी मार्केट इंडिया के लिए ओपन है, उसमें करने के लिए MBA हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइए, और उसके साथ साथ 1-2 लैंग्वेजेस जो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी साथ में करिए, तो आपका जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट है वो आपको बहुत अच्छे से आपको एब्जॉर्ब कर लेगा।
1: वाओ, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी MBA कर ही लूं। वैसे मैम, SOL में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ BA प्रोग्राम में क्या क्या कोर्स ऑप्शंस हैं और करियर में आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं?
0: इकोनॉमिक्स भी इसी तरह का सब्जेक्ट है कि आप किसी भी इकोनॉमिक एनालिस्ट की फील्ड में, फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी है। उसके साथ साथ BA प्रोग्राम में भी इकोनॉमिक्स है, और BA प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप भी हम ऑप्शन देते हैं। है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन हम लगभग लगभग सारे कोर्सेज में देते हैं और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीए प्रोग्राम में भी इकोनॉमिक्स के साथ में आप इंग्लिश कर सकते हैं, आप माइनर के अंदर पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं या हिस्ट्री कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं।

0: सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको इकोनॉमिक्स के साथ भी मिल जाते हैं।
1: घर की परिस्थितियां आपको आगे पढ़ने से रोक रही हैं और कमाने का दबाव बना रही हैं, तो पढ़ाई रोकिए नहीं, तरीका बदलिए।
2: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ अपने हायर एजुकेशन के सपने को कीजिए साकार।
1: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
3: वेलकम बैक टू द शो। और अब हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल सर। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू
3: सर। SOL के पॉपुलर कोर्सेज में से एक है इंग्लिश ऑनर्स, इसे मीडिया के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?
4: इंग्लिश ऑनर्स एक हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर कोर्स है, बच्चे जिसमें वो काफी स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट जॉनर को समझने का मौका मिलता है। और आप जानते ही हैं जैसे कि मीडिया में आजकल इंग्लिश लैंग्वेज की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करता है। तो एक बच्चों को उसका एडवांटेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के बाद, और उनके लिए और भी मीडिया ही नहीं और भी जो है ऑप्शंस कैरियर के अवेलेबल हो जाते हैं इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद, जैसे कि टीचिंग में भी बच्चे आ सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी इंग्लिश की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहते हैं आफ्टर परस्यूइंग BA ऑनर्स इंग्लिश।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। BA ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर?
4: इसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि बच्चे ने 12th में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा कोई और 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो एज प्रोस्पेक्टस बच्चे चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इंग्लिश लैंग्वेज प्लस 3-2 सब्जेक्ट्स अगर उसने बच्चे ने पढ़े हुए हैं और उसके सिर्फ 12th में 45% मार्क्स हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ BA ऑनर्स इंग्लिश करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बेनिफिट है वो उनको एलिजिबिलिटी भी मिलता है, उनके लिए वो 40% की एलिजिबिलिटी बन जाती है।
3: बहुत बढ़िया। अजय सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्या कुछ कवर किया जाता है?
4: BA प्रोग्राम में हम बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के हैं, डेटाबेसेस एंड अदर्स, वो हम बच्चों को यहाँ उन सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। 2026-27 सेशन से हम लोगों ने BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है, और जिसकी एलिजिबिलिटी में उनको 12th में बच्चों को मैथ्स पढ़ा हुआ होना कंपलसरी है। सिर्फ ये है, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए प्लस 3 सब्जेक्ट्स, एक लैंग्वेज, एक मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट्स। सेम इज द एलिजिबिलिटी फॉर BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। और BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा हमारा अच्छा कोर्स होगा इन कंपैरिजन टू BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिकॉज इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। उसमें BA प्रोग्राम में एक्चुअली बच्चे 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, और BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में मेजर जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं।
3: अजय सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि SOL मैथमेटिक्स से जुड़े कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है?
4: मैथमेटिक्स से जुड़े हुए BA प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स ही हम चलाते हैं इसमें, और इसके अलावा कोई कोर्स नहीं है मैथ्स का अभी, बट हमारी प्लानिंग है कि अगर आगे कुछ ऑप्शन हुआ तो हम मैथ्स के कुछ और कोर्सेज चलाने की कोशिश करेंगे।
3: अजय सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर क्या कॉम्बिनेशन और करियर ऑप्शन हो सकते हैं?
4: BA प्रोग्राम हिस्ट्री में भी BA प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं, और हमारा जो मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम विद हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, दिस इज द मेन कॉम्बिनेशन जिसको बच्चे बहुत प्रेफर करते हैं। और शायद ये सब्जेक्ट्स बच्चों को उनकी IAS की जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें भी उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो ये भी एक हमारा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम का, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस।
3: अजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी को हम सभी से साझा करने के लिए और अपना कीमती समय हम सभी को देने के लिए।
4: थैंक यू।
3: आइए अब हम श्रोताओं का परिचय कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रजेश रॉय सर से करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: थैंक यू। यू सो मच।
3: ब्रजेश सर, आप तो स्वयं ही लाइब्रेरी साइंस फील्ड से हैं, ऐसे में इस फील्ड में SOL की ऑफरिंग्स क्या हैं? ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
5: हमने SOL में जब इनिशियली स्टार्ट किया लाइब्रेरी साइंस, और हम दो कोर्सेज के साथ आए, ये 2022 से स्टार्ट किया, और दो कोर्सेज आए आपकी, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर इन इंफॉर्मेशन साइंस। दोनों कोर्स हमारा अभी तक चले, और 2023 से

0: हमने स्टार्ट किया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट पीजी डेट लैब। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट इन कोर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 गोल्ड मेडल ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट क्लियर किए हैं, पीएचडी में एनरोल्ड हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब भी मिल चुकी, तो ये एक अच्छी उपलब्धि रहा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो हम डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर इनिशिएट किए, ये यू विल बी सरप्राइज दैट दिस इज द ओनली कोर्स इन इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो एनईपी के तहत है। एनईपी के तहत होने से फायदा ये हुआ कि एक एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और दूसरा इस कोर्स में जो कंपोनेंट है वो आने वाले समय में जो लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरीज आपके पास होंगे या होना शुरू हो चुके हैं उन लाइब्रेरीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और आज के जो डिजिटल लाइब्रेरी है दोनों में तो अंतर है। अब दोनों में अंतर है तो उनके लिए मैन पावर चाहिए तो हम इस बीच से एक स्पेशलाइज कोर्स स्टार्ट किए और इसके थ्रू हम कैटर करना शुरू किए, तो इनका भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और बीएलआईएस के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने जो एचओएल के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हमने ये इनिशिएट किया वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट, दे कैन टेक डायरेक्टली एडमिशन टू बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। उनमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, 5% होते ही आप लाइब्रेरी साइंस बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में ज्वाइन की, आपकी कैपेसिटी है और आप अच्छे करना चाह रहे हो जीवन में, आपके पास नेक्स्ट स्टेप हो जाते हैं मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इस तरीके से स्टूडेंट ग्रो अप कर रहे हैं।
1: सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक इस फील्ड में कितने बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं?
0: 261 के करीब स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब में आ चुके हैं, उसमें कुछ कॉर्पोरेट में है और गवर्नमेंट जॉब में भी है। कॉर्पोरेट जॉब में नॉर्मली लाइब्रेरी साइंस देखा जाता है कि गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में ज्वाइन करेंगे, बट इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू, ये पीजी डेट लैब कोर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी होने के बाद हमारे स्टूडेंट की कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी डिमांड बढ़ चुके हैं, यहाँ पे नॉलेज मैनेजर के रूप में ये स्टूडेंट्स की इनरोल हो रहा है।
1: ब्रजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी को हम सभी से साझा करने के लिए।
0: थैंक यू मैडम।
1: और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
2: podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
1: हमारी ईमेल आईडी है
2: podcast.query@sol.oldcdu.ac.in।
1: हमें आपके सवालों के जवाब देने में बेहद खुशी होगी।
2: अपने अगले एपिसोड में हम आपको विस्तार से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्किल कोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: शुक्रवार का दिन है साहब, और शुक्र मनाने का भी दिन है, क्योंकि आपको जिंदगी के अंदर आज एक और जो दिन मिला ना साहब, इसको अच्छे अच्छे से जीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी रास्ते में भी होंगे।

कि कुछ लोगों का जो समय है वो शायद 10 बजे का होगा, तो अभी रास्ते में होंगे। अगर आप रास्ते में हैं तो साहब मैं आपको बता दूं कि आप अपनी गाड़ी का जो एसी है एक पर ही चलाएं, ठीक रहेगा। थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी के अंदर वो ठीक, लेकिन हम शुरू में इसको दो पे चला देते हैं क्योंकि आपको गर्मी का एहसास हो रहा होगा। टेम्परेचर कहता है कि 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, कम वाले की बात करें 24 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि उमस की जो कहते हैं ना ह्यूमिडिटी है वो 65% है साहब। बहुत ज़्यादा गर्मी अभी से ही लग रही है, सभी समाचार पत्रों के अंदर, सभी अखबारों में, न्यूज़ चैनल में ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। गर्मी का एहसास ऐसे हो रहा है कि मानो वो 40 के ऊपर की हो। तो गर्मी का एहसास आप अपने तक ठीक है, गाड़ी के अंदर ठीक रहेगा। ऑफिस में जाके अगर लेट होने पर अगर बॉस कुछ कहे तो थोड़ा सा शांत रहना है, ठीक रहेगा, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि साहब समय पर आइए, आप अपनी बात कुछ बताएंगे, तो इसलिए मामला ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय से निकले, गाड़ी तेज मत चलाइए प्लीज। एक्सीलेटर पर पैर हल्का ही रखना है।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
11: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
12: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
13: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
14: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

चले जी, अपना जाने का समय हो चुका है। अब आपको बता दें कि अब शालू जी लेकर आ चुके हैं प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूज़िक का मैचराज म्यूज़िक आर। इसके बाद श्वेता शर्मा आपके साथ में होंगी, बॉलीवुड ट्रेल्स का प्रोग्राम होगा। रेशमा फारूकी आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा आशियाना। इसके बाद में शैली भाषांजलि आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम होगा रेडियो डॉक्टर का। इसके बाद में निखिल वर्मा आपके साथ होंगे, मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम होगा। लिपिका दास आपके साथ में होंगी, वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम होगा फ्राइडे फिएस्टा। इसके बाद ताहिर हसन आपके साथ में होंगे, आपकी याद आती रहे। और आपको ये हम बताते रहें कि साहब कि आप लगातार सुनते रहें एफएम रेनबो, आकाशवाणी रेनबो जो है हमारा 102.6 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का। दिल के तराने, गाने नए पुराने का जो सेगमेंट है साहब, यहीं पर इसको देते हैं ब्रेक। आप अपना ध्यान रखिएगा, मुलाकात होगी आपसे फिर कल सुबह, ठीक है? तो अपना आपको ध्यान रखना है।

नमस्कार, लीजिए पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा है। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वो मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 नागरिकों की हत्या का मामला सामने आया है। एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ग्वादर जिले के दनमुख के कुलदान इलाके में 3 शव मिले हैं। बांग्लादेश से भारत आने वाली हिल्सा मछली अब भारत से बांग्लादेश निर्यात की जा रही है। ये क्षेत्रीय मत्स्य कारोबार में एक महत्वपूर्ण है। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम,

केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। एशियाई खेल में आज मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सामना मेजबान जापान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ।

नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मस्त मलंग आरजी श्वेता, आपके साथ लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम बॉलीवुड रेस, जहाँ होंगी ढेर सारी बातें। बॉलीवुड की गपशप होने वाली है, कौन कौन सी मूवीज हो रही हैं रिलीज, आखिर कौन कौन सी बातें हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी खास जिन्हें आप जानना चाहते हैं, और अगर बनना चाहते हैं बॉलीवुड सरताज तो बस आज का प्रोग्राम सुनिएगा ज़रा ध्यान से, क्योंकि आप सबने अब मार ली है एंट्री FM रेनबो पर, 102.6 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली NCR में इस फ्रिक्वेंसीज पर, और अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर।

वैसे तो जब से हनुमान अंश ने एंट्री मारी है बॉलीवुड में, तब से तो बस धमाल ही धमाल हो रहा है और एक से बढ़कर एक बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं हनुमान अंश फिल्म की कलेक्शन की, तो वो बढ़ती जा रही है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इसी तरह से जो है रामायण फिल्म का एक गाना है जय जय राम, उसके लिए अरिजीत ने, आपको जानते हैं कितने टेक दिए थे उस गाने को गाने के लिए, क्योंकि अरिजीत डूब चुके थे भक्ति में ऐसे कि भूल ही गए थे सब कुछ। हाँ जी, अरिजीत सिंह ने करीब 200 टेक दिए थे और उनको बस वो एक एहसास वो ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, जो भक्ति में बिल्कुल डूबा हुआ हो। और गाने में आप सब ने देखा ही है कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी एकदम राम सीता के रूप में नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत मच अवेटेड फिल्म है रामायण और रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में भी है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच में जबरदस्त बजरा हुआ है एकदम से। अब इसका पहला गाना जय जय राम लोगों के बीच में एकदम चर्चा में आ गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज हुआ इस भक्ति से भरे गाने में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन असली किस्सा तो कुछ और ही बताने वाली हूँ। हाँ, असली किस्सा सामने आया है कि आप भी कहेंगे कि सच में अरिजीत सिंह आखिर अरिजीत सिंह ही है। एक जानकारी के मुताबिक अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया तो लगभग 200 टेक दिए। खास बात ये थी कि वो सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने के लिए टेक पर टेक नहीं दे रहे थे, बल्कि हर बार उस भक्ति और भावना को और गहराई से महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये होता है देखिए कि जब आप गाना गाते हैं तो आप पूरा उसमें डूब जाते हैं, फिर चाहे वो भक्ति गीत हो, चाहे वो मेलोडी हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांटिक गाना हो, अरिजीत सिंह अपने हर गाने को एकदम सही से जस्टिफाई करना चाहते हैं। अब हर टेक के साथ वो गाने के इमोशंस को तलाश रहे थे और आलम ये था कि उन्हें खुद नहीं लग रहा था कि भाई इसे कब रोकना है। आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब अरिजीत सिंह ने गाने की टेक्निकल बारीकियों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और पूरी तरह से भावना के हवाले खुद को एकदम से सौंप दिया, जिस गाने को सुनकर अब सभी दर्शक भक्ति का एहसास कर रहे हैं और उसके पीछे

सिंगर ने भी उसी भावना से खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। तो ये होती है भावनाएं, और ऐसी ही जो भावना है वो देखने में आ रही है कहाँ पर, हनुमान अंश के गानों में भी, उस फिल्म में भी। अब 200 करोड़ पार हो चुकी है हनुमान अंश, और ये अभी तक थम नहीं रहा है इसका कलेक्शन। अब बहुत सारे दिन हो गए हैं लेकिन फिल्म की कमाई 250 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी है। तो लीजिए, चलिए सुनते हैं हनुमान अंश का ये गीत।

0: राम भजन की ओर तो चल ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं चल रही हूँ एक छोटे से ब्रेक की ओर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद होंगी ढेर सारी बातें, और 11:30 बजे मैं आपसे पूछूंगी बॉलीवुड सरताज का सवाल। सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से

0: बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है।

एक से बढ़कर एक हीरोइन जो है वो सामने आने वाली हैं। बहुत सारी मूवीज हो रही हैं रिलीज, तो सबसे पहले बात करते हैं थिएटर में होने वाली रिलीज दायरा फिल्म की। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दायरा इस हफ्ते यानी कि आज फ्राइडे को रिलीज हो रही है। और इस फिल्म को बनाया है मेघना गुलजार ने, डायरेक्ट किया है इस फिल्म को, जिसकी कहानी एक ऐसी है जिसमें रेप पीड़िता है और उसके 17 साल के नाबालिग आरोपी की कहानी को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एक नाबालिग का एनकाउंटर होता है जिस पर सवाल उठाए जाते हैं। फिल्म 18 फरवरी यानी कि आज हो रही है रिलीज। क्या आगे की कहानी बताऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आपको पता नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा आगे मूवी देखने में। बस इतना ज़रूर बता देती हूं कि करीना कपूर खान इस फिल्म में नज़र आने वाली हैं और इस फिल्म में वो एक दबंग, बहुत ही अच्छी सी एक दबंग सी डीसीपी अर्जुनी कोहली के मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। फैंस को करीना का ये नया रूप और वॉयलेंट अवतार काफ़ी पसंद आ रहा है जब से उन लोगों ने इसका प्रोमो देखा था। आप देखेंगे कि भाई उन्हें सच्ची में ज़्यादा मज़ा आने वाला है या नहीं आने वाला है। कहाँ एक तरफ चुलबुली सी प्यारी सी हमें करीना दिखी थी जब वे मेट में, और अब एकदम दबंग सी। तो देखते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा दर्शक किसे पसंद करेंगे। वैसे तो हर रोल में, हर रूप में करीना कपूर को हर कोई पसंद ही करता है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स मस्त मरंग आरजे श्वेता के साथ। चलिए भाई, अब अपनी एक और प्यारी सी हीरोइन के बारे में बात करते हैं और रिलीज डेट्स की बात करते हैं। आज है 18 सितंबर और फ्राइडे है, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली होंगी। और

बिल्कुल जन्नत दिखाएगा। और अगर आप बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज तो फिर देखिए दिन में ही आपके लिए इतने सारे तारे दिखेंगे, आपके ऊपर बिल्कुल हम बौछार करेंगे। चलिए पूछ लेती हूँ आज के बॉलीवुड सरताज का सवाल। अब भाई हमने बात करी थी अभी करीना कपूर की और वो बनने वाली है, मतलब दिखने वाली है डीसीपी के रूप में। तो अब मुझे बताइए इससे पहले शिवानी शिवाजी रॉय, हाँ जी शिवानी शिवाजी रॉय नाम से इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर के रोल में कौन नजर आई थी, उनका नाम बताइए और जल्दी से मुझे उस फिल्म का नाम भी बता दीजिए। एक बार सवार फिर से पूछती हूँ कि शिवानी शिवाजी रॉय ये सीनियर इंस्पेक्टर के रूप में कौन सी हीरोइन आई थी नजर और किस फिल्म में आई थी वो नजर। फिल्म का नाम और हीरोइन का नाम जल्दी से मुझे भेज दीजिए 9868107070 पर। और हाँ अभी जो है ना बहुत सारी बॉलीवुड की बातें बाकी हैं, आप सुनते रहिए और जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि बताने वाली हूँ थोड़ी देर में कि चाहे हिंदी फिल्में हो, तेलुगु हो, तमिल हो, इंग्लिश फिल्में हो, सभी ने मचाई हुई है धूम। और आज बहुत सारी फिल्में हो रही हैं रिलीज, उनके बारे में भी बताऊंगी और साथ में बताऊंगी किसका है हैप्पी वाला बर्थडे।

मैं भी शायराना सी हो रही हूँ. क्यों? क्योंकि बहुत सारी मूवीज आ रही हैं और आप सबके इतने सारे मैसेजेस देख के ना वैसे ही दिल इतना गार्डन गार्डन हो जाता है, खुश हो जाता है. बता देती हूँ आपको जल्दी से कि आज यानी कि 18 सितंबर को थिएटर में कितनी सारी मूवीज हो रही हैं रिलीज. हिंदी से लेके तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश फिल्मों का धमाका होने वाला है. ये फिल्में क्राइम, एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरी होने वाली है. तो बस अब जो है ना, ये फिल्में आप में कौन सी देखनी है कौन सी नहीं देखनी है ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है. दायरा के बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ. उसके अलावा जो है आ रही है फिल्म भारत देश है मेरा, आज होने वाली है रिलीज थिएटर्स में. एक छोटे बजट की फिल्म है भारत देश है मेरा और इस हफ्ते यानी कि आज रिलीज हो रही है. इसकी कहानी पाकिस्तान के कश्मीर में रह रहे पंडितों की कहानी पर बेस्ड है और इस फिल्म में अनूप जलोटा, रमाकांत सिंह, आदित्य मोहन, के गोस्वामी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं. और इसी के साथ एक और मूवी आने वाली है, आज ही हो रही है रिलीज, सीक्रेट सोल्जर. एक तेलुगु फिल्म आ रही है जिसका नाम है सीक्रेट सोल्जर और इस फिल्म की कहानी जियोपॉलिटिकल दिक्कतों और जासूसी से जुड़ी होने वाली है. मतलब ये कि फिल्म आपको देशभक्ति की फील देने के लिए एकदम तैयार है. और इस फिल्म में निहाल कोटघाटी, सूर्या श्रीनिवास, कमल कमाराजू और हर्षिता राव जैसे एक्टर्स आपको नजर आएंगे. चलिए अब बात करते हैं प्रीटी वुमन की. हाँ जी, आहा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब बात करने वाली हूँ प्रीति जिंटा की. वाइब्स फिल्म आ रही है उनकी, आज हो रही है रिलीज. कुणाल खेमू की पिछली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट करी थी मडगांव एक्सप्रेस, उसे ऑडियंस ने खूब प्यार मिला और अब वाइब्स नाम की फिल्म आ रही है जिसे उन्हें डायरेक्ट किया है और साथ में इस फिल्म में नजर आने वाली है प्रीति जिंटा. प्रीति जिंटा इससे पहले फिल्म में नजर आने आई थी और लेकिन उससे पहले बहुत पहले 2018 में नजर आई थी. फिर उसके बाद थोड़ा इन्होंने ब्रेक ले लिया था. आखिर वो ब्रेक क्यों लेती हैं जब उनके इतने सारे फैंस हैं और उन्हें देखना चाहते हैं. वेल, इसी वजह से अब ये वाइब्स फिल्म आ रही है. अब देखना ये होगा कि इस फिल्म के जरिए वो फिर से वैसी ही धूम मचाती हैं या फिर नहीं. फिलहाल उनके लिए ये गाना तो बनता ही है, वॉज है तो प्रीति, सच में प्रीति प्रीति.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: FM रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मस्त पलंग आरजी श्वेता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स।

तो बॉलीवुड ट्रेल्स में आपको अभी तक मैं बता चुकी हूँ कि करीना कपूर की फिल्म रिलीज हो रही है, प्रीति जिंटा भी दिखने वाली है फिल्म में, उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, और साथ में आपको बताया है कि किस तरह से फिल्में जो हैं अपना नाम बॉलीवुड में कमाए चली जा रही हैं। तेलुगु मूवीज, मलयालम मूवी हो, तेलुगू हो, इंग्लिश हो, कोई भी मूवी हो, वो सारी की सारी रिलीज़ हो रही है, उनके बारे में भी बताया। तो चलिए आगे भी बता देती हूँ, हैप्पी जर्नी, हाँ जी, ये आज ही हो रही है थिएटर में रिलीज़, एक फैमिली एंटरटेनमेंट तेलुगु फिल्म है हैप्पी जर्नी, और इस फिल्म में वामशीधर, पायल रामाकृष्णा, रवि सिया, तेजा जैसे एक्टर्स दिखने वाले हैं। और एक और तेलुगु रोमांटिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है कागिथम पद्मावलु। इस फिल्म में वर्धन गुरल्ला और कृष्णप्रिया लीड रोल में नजर आएंगे। ये रोमांटिक ड्रामा है, एमजीआर तुकाराम ने लिखी है और उन्होंने ही डायरेक्ट करी है। मलयालम सिनेमा को हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई, एक बार फिर से एक शानदार फिल्म लेकर आ रहा है मलयालम सिनेमा। फिल्म का नाम है LNO, यानी कि LNO ऑर्डर। ये जबरदस्त एक्शन

पुलिस ऑफिसर करता है। तो देखा आपको मैंने बहुत सारी मूवीज बता चुकी है, अब चलिए इंग्लिश मूवी भी बता ही देती हूँ जल्दी से। एक इंग्लिश फिल्म रेजिडेंट इविल इस हफ्ते रिलीज हो रही है और इस फिल्म को आप हिंदी समेत बहुत सारी भाषाओं में भी देख सकते हैं। फिल्म एक्शन से भरपूर है, साथ ही हॉरर है और साइंस फिक्शन थ्रिलर से भरी हुई है जो आज होने वाली है रिलीज। तो देखिए कितनी सारी मूवीज, अब आपको बताऊंगी कि OTT प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी मूवीज या कौन कौन सी सीरीज आप देख सकते हैं, लेकिन इस छोटे से प्यारे से गाने के उस पार। हाँ जी भाई, आप ही के लिए तो सारे ये गाने मैं बनाती रहती हूँ। ड्रामा क्वींस इतनी सारी दिखती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसीलिए उन्हीं सबके लिए ये गाना। क्यों क्यों, अब आप पूछेंगे कि क्यों ड्रामा क्वीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं हमें ये मूवी नहीं देखनी, नहीं नहीं हॉरर नहीं होनी चाहिए, रोमांटिक होनी चाहिए, और जब रोमांटिक देखने जाते हैं तो नहीं नहीं थोड़ी सी तो हॉरर या थोड़ी सी कॉमेडी या थोड़ी सी थ्रिलर तो होनी चाहिए, कोई ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। बाय गॉड,

ड्रामा क्वीन तो होती ही है भाई। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ड्रामा दिखाते हैं और सामने वाला कहता है कि हाँ ठीक ही है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ। और फिलहाल आपको बता देती हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर आखिर कौन कौन सी मूवीज या फिर सीरीज हो रही हैं रिलीज। भाई आने वाले 3 दिन ना बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोरदार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस बारी अलग अलग जॉनर के एक से बढ़कर एक शोज़ रिलीज़ होने वाले हैं। तो एंटरटेनमेंट से लेकर हॉरर, कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर और साथ ही साथ इंटरनेशनल ड्रामा तक इस हफ्ते दर्शकों के लिए मनोरंजन से कई ज़्यादा

बहुत सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे। अब जहाँ पर अनिल कपूर की बहुत ज़्यादा एक प्रतिष्ठित गेम शो है इंडिया के टॉप 1%, वो आने वाला है और इसके साथ साथ कई बड़ी फिल्में और सीरीज जो है रिलीज होने वाली है। तो चलिए जानते हैं जल्दी से इनके नाम। लस्ट स्टोरीज आज हो रही है ये रिलीज OTT प्लेटफॉर्म पर और इसके साथ साथ ली क्रोनियस द मम्मी ये भी कल हो चुकी है रिलीज OTT प्लेटफॉर्म पर। जाकिर खान का पापा यार ये भी हो चुका है। भाई आपको बता देती हूँ कि स्ट्रेचर थिंग्स ट्रेलर्स फ्रॉम 85 सीजन 2 ये भी कल रिलीज हो चुका है और OTT प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम जब फिल्में देखते हैं या फिर सीरीज देखते हैं तो उनके लिए हम दीवाने से हो जाते हैं ना। तो लस्ट स्टोरीज जो है ये भी रिलीज हो गई है और आप देख सकते हैं द स्कैंडल वो भी रिलीज हो चुकी है। अब बारी है हमारे आज के बॉलीवुड सरताज के नाम को बताने की बारी। मैं आप सबसे पता है एक बात के लिए बहुत नाराज हूँ सच्ची में। आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर पे बता तो देते हैं लेकिन फिर फोन नहीं उठाते हैं या फिर आपका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आता है। ऐसा मत क्या कीजिए ना प्लीज। चलिए आपको मैं बताती हूँ कौन बनी है आज की बॉलीवुड सरताज। तो उनका नाम है अनीशा जिनका फ़ोन नंबर की लास्ट डिजिट है 5903 और उन्होंने सही जवाब दिया है। मैंने पूछा था कि आखिर अब जैसे करीना कपूर दिख रही हैं DCP के रोल में ऐसे ही इससे पहले एक मूवी आई थी जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर का रोल निभाया गया था शिवानी शिवाजी रॉय के नाम से। तो वो किस पर था और वो हीरोइन कौन थी और फिल्म का नाम क्या था। तो हीरोइन थी रानी मुखर्जी और फिल्म का नाम था मर्दानी। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने सही जवाब भेजा है लेकिन सबसे पहले इन्होंने सही जवाब भेजा था और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से FM रेनबो जो है सुनते रहिए लेकिन अपना नंबर भी सही से भेजते रहिएगा। फिलहाल जाते जाते हैप्पी वाला बर्थडे कहती जाती हूँ शबाना आजमी जी को जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। और यहीं पर ही मुझे यानी कि मस्त मलंगा जी श्वेता को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी 1 बजे जहाँ लेकर आऊँ आपके लिए प्रोग्राम बिंदास बोल।

0: So that was Fast Car. Yes, it's always nice. Speed can thrill, but then we have to be careful. You know what I mean? Careful driving, careful living, conscientious living. That's what makes living, really, living it the big way.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: With your love now, always backing us, of course, we'll take a little break and come back right into that love which keeps drawing us back. This is Play It Cool.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, निजे पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वो मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिकता प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में चौक कर्जत रेलवे खंड के दोहरीकरण के लिए 497 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। 72 चेन्नई पुलिस आयुक्त डॉ ए अमल राज ने चेन्नई नगर पुलिस अधिनियम 1888 की धारा 41 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिनों की अवधि के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक सभा के लिए सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो।

0: और अब वक्त है हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम का, कैंसर अवेयरनेस।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं सुनीता नागपाल, एक कैंसर सर्वाइवर और इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली शाखा की एक वॉलंटियर हूँ। इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली ब्रांच के इमोशनल सपोर्ट विभाग सहयोग के डायरेक्टर होने के नाते मैं आप सबको हमारे वार्षिक सेमिनार में आमंत्रित करती हूँ। यह सेमिनार इस वर्ष 20 सितंबर रविवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मैक्स म्यूलर मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसका शीर्षक है ब्रिजिंग इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी इन कैंसर केयर, यानी कैंसर देखभाल में नव विचार और वहनीयता के बीच की खाई को पाटना। इंडियन कैंसर सोसाइटी की स्थापना 75 साल पहले 1951 में मुंबई शहर में हुई थी, जब जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दुराव जहांगीर जस्सावाला और श्री नवल टाटा ने यह महसूस किया था कि आम आदमी को कैंसर की जानकारी की आवश्यकता है। उन दिनों पे लोगों में कैंसर के बारे में कोई भी जागरूकता नहीं थी। धीरे धीरे यह प्रयास एक अभियान का रूप ले लिया और फिर दिल्ली में डॉक्टर रामलिंग स्वामी, श्री के मेहता और श्री वेद मेहता ने इंडियन कैंसर सोसाइटी की एक शाखा खोली। वर्ष था सन 1983। आज की वार्ता में हम आपको यह बताएंगे कि अगर कोई कैंसर के सफर से गुजर रहा है तो वह अकेला नहीं है। कैंसर सहयोग इंडियन कैंसर सोसाइटी का भावात्मक सहायता विभाग कैंसर सर्वाइवर्स और केयर गिवर्स का एक ऐसा समूह है जो कैंसर के सफर से गुजर चुके हैं और कैंसर पेशेंट्स के दर्द को समझते हुए उनका हाथ थाम कर उन्हें इस मुश्किल सफर को तय करने में पूरी सहायता देते हैं। हर वर्ष कैंसर सहयोग सेमिनार का आयोजन करती है, जहां कैंसर से जुड़ी किसी न किसी पहलू पर विचार विमर्श किया जाता है। कैंसर से जुड़े सभी हितधारकों को एक साथ लाकर एक राष्ट्रीय संवाद के लिए एकत्रित किया जाता है। जाने माने चिकित्सक, उद्योगपति, इंश्योरेंस के विशेषज्ञ,

रोगी अधिकारों के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि, पॉलिसी मेकर्स सभी कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस वर्ष के सेमिनार का थीम है ब्रिजिंग इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी इन कैंसर केयर। यह विषय आज कैंसर देखभाल के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। हम हेल्थ केयर में इनोवेशन के एक असाधारण दौर से गुजर रहे हैं, चाहे स्क्रीनिंग हो, डायग्नोस्टिक्स हो, टारगेटेड थेरेपी हो या इम्यूनोथेरेपी हो। सभी क्षेत्रों में हो रही प्रगति कैंसर की पहचान और उपचार के तरीकों को बदल रही है, लेकिन इस प्रगति के साथ हमें स्वयं से एक मूलभूत प्रश्न भी पूछना होगा। क्या ये सभी नई तकनीकियां और नए उपचार वास्तव में हर उस रोगी तक पहुंच रहे हैं जिसे इनकी आवश्यकता है? क्योंकि कैंसर से जूझ रहे किसी रोगी और उसके परिवार के लिए यह सिर्फ काफी नहीं है कि एक नए उपचार उपलब्ध है या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे अस्पताल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, आवश्यक जांच और उपचार का खर्च उठा सकते हैं या नहीं, अपने निदान को पूरी तरह समझ सकते हैं और उनके सामने उपलब्ध उपचार विकल्प किफायती हैं या नहीं। इस सेमिनार में हम कुछ ऐसे व्यावहारिक और व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों को पहचानने का प्रयास करने वाले हैं जो हेल्थ केयर में हो रही इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच की दूरी पाट सकें। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर देखभाल में हो रही प्रगति केवल कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि उसका लाभ हर रोगी तक पहुंचे। आगामी सेमिनार में तीन पैनल डिस्कशंस होंगे। पहला पैनल है अर्ली डिटेक्शन विथ स्पेशल फोकस ऑन इनोवेटिव डायग्नोस्टिक्स एंड रोल ऑफ पॉलिसी। यह पैनल समय पर पहचान, जांच विधियों और विभिन्न नीतियों की भूमिका पर चर्चा करेगी। दूसरा पैनल डिस्कशन है इंश्योरेंस कवरेज विथ एम्फेसिस ऑन हाई वॉल्यूम आउटरीच, यानी कि स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा पैनल मॉडर्न थेरेपीज इन कैंसर पर चर्चा करेगी, यानी कि नए और आधुनिक उपचारों पर। हर एक पैनल में जाने माने विशेषज्ञ भाग लेंगे और एक सच्चा प्रयास करेंगे कि इन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सके, क्योंकि जैसे कि हमने अभी आपको बताया, कैंसर का इलाज उपलब्ध है ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि यह अत्यंत जरूरी है कि मरीज इलाज तक पहुंच सकता है और उसका खर्च उठा सकता है। इंडियन कैंसर सोसाइटी पिछले 75 वर्षों से भारत में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हमारी संस्था इंडिया की पहली वॉलंटरी नॉट फॉर प्रॉफिट राष्ट्रीय संस्था है जो कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर पहचान, उपचार और कैंसर से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम, समय पर निदान, इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट, सर्वाइवर्स को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना तथा कैंसर देखभाल के क्षेत्र में जागरूकता, शोध और नीति समर्थन यानी कि एडवोकेसी प्रयासों को बढ़ावा देना।

0: 20 सितंबर का सेमिनार भी इस उद्देश्य को पूरा करने का एक प्रयास है। इसमें भाग लेकर आपकी कैंसर की जानकारी बढ़ेगी और क्या पता आप किसका उपकार कर सकें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष भारत में 14 लाख कैंसर के नए केसेस आते हैं। अगर हम जागरूक और जानकार रहें तो हम कैंसर को समय रहते पकड़ सकते हैं और इसका इलाज आसान व किफायती रूप से करवा सकते हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से हमारे सेमिनार के लिए आमंत्रित करती हूँ। रविवार 20 सितंबर को 9 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के मल्टीपर्पस हॉल में आपका इंतजार रहेगा। इस अवसर पर विदुषी पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गीता चंद्रन जी, जो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, एक नृत्य प्रस्तुति करेंगी जिसका शीर्षक है फ्रॉम फियर टू फ्रीडम, भय से मुक्ति तक। गीता जी एक लंबे समय से इंडियन कैंसर सोसाइटी की समर्थक रही हैं और हमारी संस्था के लिए कई कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां देती रही हैं। हम इनके अत्यंत आभारी हैं। अगर आपको कैंसर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है राइज अगेंस्ट कैंसर। आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 9910516562। इसे मैं दोहराती हूँ, 9910516562। इसी उम्मीद से कि हम आपको इस रविवार 20 सितंबर को सेमिनार पर मिलेंगे, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: अभी आपने हमारा स्पॉन्सर प्रोग्राम सुना कैंसर अवेयरनेस पर, और अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है बिंदास बोल, जहां पर होंगी आपकी बातें और आपके प्यार शिकायत सबकी बातें। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी मस्त बनेगा आरजे श्वेता।

और हमारा जो दिल है, हमारा जो ये जी है, मन है, ये आप लोगों के बिना कहाँ ही लगता है। बिंदास बोल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ मस्त मलंग आरजी श्वेता आपके साथ और आपके ढेर सारे मेल्स और मैसेजेस के साथ आ गई हूँ। अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 पर। बिंदासपुर, जहां आप अपने मन की बात बताते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम डोली पवार के मेल से, जिन्होंने दिल्ली से हमारे पास ये मेल भेजा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली प्रोग्राम, कृष्णा जन्माष्टमी पर बेहद प्यारा प्रोग्राम किया पूजा और ज्योति ने, गीतों के साथ प्रस्तुति सब बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही वो लिखती हैं कि आशुतोष और राजेश कुमार जी का छोटे उस्ताद अमेजिंग प्रेजेंटेशन रही, निखिल कुमार, गौतम, रेणु भट्ट और रविंदर जी का गुड मॉर्निंग दिल्ली शो भी अच्छे लगते हैं। ये कहती हैं आगे कि जहां नजर वहां कलम टॉपिक पर बबीता त्रिपाठी ने जो बहुत खूबसूरत शो किया कला लेखन पर, तो इसमें मेहमान थे वंदना जी और बहुत अच्छी टिप्स दी उन्होंने प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में, इन्हें ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये लिखती हैं आगे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो 10 सितंबर को हुआ था, मुनीश जौली जी ने किया था आशियाना पर, और ये काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक था। डॉक्टर सुनील के साथ काफ़ी बेहतरीन शो, टाइम कम था, ऐसे प्रोग्राम आगे भी आते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉली जी आपके इतने अच्छे मेल के लिए। आपने हम सभी, हमारे जितने भी सभी आरजी हैं, उन सब का एक तरह से उत्साहवर्धक किया है। उनके नाम लेके उनके प्रोग्राम आप सुनती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, और जो प्रोग्राम्स के बारे में आपने बताया, आपको वो टॉपिक अच्छा लगा, प्रोग्राम अच्छा लगा। जहाँ तक बात है समय की, तो सच में समय तो हमेशा ही लिमिट में होता है। हर एक शो का एक समय है, एक घंटे का समय है, और कभी कभी जब स्पॉन्सर प्रोग्राम आ जाते हैं तो वो समय थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर प्रोग्राम होते हैं वो भी बेहद ज्ञानवर्धक होते हैं, तो उन्हें भी आप जरूर सुनिए और उनसे भी अपना ज्ञान जरूर बढ़ाइए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल। अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है या कोई शिकायत है, तो वो भी सराकों पर, क्योंकि ये सब आपका है। ये एफएम रेनबो आपका है, दिल्ली एनसीआर में आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के

0: बिल्कुल सब आपका है और हम सब जो है यहाँ पर आप ही के लिए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं। टॉपिक अलग अलग होते हैं, अलग अलग आरजीज होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के उस पार होंगी ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: इंडियन कैंसर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो, मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ बिंदास बोल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। अमरावती महाराष्ट्र से आया है हमारे पास पंकज का मेल और वो ये लिखते हैं कि FM रेनबो दिल्ली का श्रोता हूँ और FM रेनबो दिल्ली के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और सभी आरजीज की कार्यक्रम प्रस्तुति बहुत बढ़िया लगती है।

मुझे 17 सितंबर 2026 का संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। प्रस्तुतकर्ता आरजे गीतिका उनियाल मैडम जी इस कार्यक्रम में कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जी से बातचीत बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपके इस उत्साहवर्धक मेल के लिए। और साथ ही जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये संदेश टू सोल्जर, ये हर किसी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं उन सोल्जर्स के बारे में, उनकी जिंदगी की कहानियां, उनकी जिंदगी की ऐसी ऐसी बातें जिन्हें वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे लम्हे भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं जहां हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे प्यारे पल भी वो हमारे साथ शेयर करते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आती है, उनकी फैमिली के चेहरे पे मुस्कान आती है और हम सबके चेहरे पे मुस्कान आती है। आप सभी के जो मेल आते हैं और जब आप बताते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल। चलिए अगला मेल लेते हैं, ये है संजीव कुमार का और इन्होंने हमारे पास ये मेल भेजा है करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। तो चलिए खुखनी, हाँ जी, ये खुखनी से इन्होंने हमारे पास मेल भेजा है। डियर सर मैडम, आई एम अ लिसनर ऑफ AIRFM रेनबो इंडिया। और ये आगे लिखते हैं कि 28 अगस्त को इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम सुना AIRFM रेनबो पर, जहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक था, प्रधानमंत्री जन धन योजना पर ये प्रोग्राम हुआ था, जिसे मिसिस कंचन ने ये प्रोग्राम होस्ट किया था और अलग अलग जो है इसमें गेस्ट आए थे, उनसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, काफ़ी नॉलेजेबल जो है ये प्रोग्राम रहा। और आगे लिखते हैं कि इन्होंने ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के चीज़ें इन्होंने अपनी डायरी में लिखी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात आती है कंप्लेंट की। जी सर, तो क्या है आपकी कंप्लेंट? आगे लिखते हैं कि कंप्लेंट में प्लीज़ नोट, हमारा जो रेडियो है वो AIRFM रेनबो इंडिया आकाशवाणी दिल्ली पिछले 2 सालों से अप्रोक्सीमेटली इस फ्रिक्वेंसी पर नहीं पकड़ पा रहा है। मैंने बहुत सी कंप्लेंट करी है इस मैटर में और व्हाट्सएप के थ्रू करी है, मोबाइल नंबर जो है 9868107070 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पर ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मजबूरी में आकाशवाणी FM रेनबो इंडिया को हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर सुनना पड़ता है। हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती आकाशवाणी मुंबई पकड़ती है, हमारी रेडियो आकाशवाणी FM रेनबो इंडिया नहीं पकड़ती है। तो सर, इसके लिए मैं आपसे एक, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगी कि ये आपकी मजबूरी नहीं, ये तो एक आकाशवाणी ने आपको एक सुविधा दी हुई है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए और हमारा जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है उसके ज़रिए आप कहीं पर भी सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम। अगर आप हरियाणा से कहीं और भी जा रहे हैं, चाहे आप राजस्थान जा रहे हैं, चाहे केरला जा रहे हैं, असम जा रहे हैं या फिर गुजरात जा रहे हैं, आपके पॉकेट में है आपका फ़ोन, है ना, और उस पॉकेट वाले फ़ोन में जो है उसमें है आपके पास हमारी ऐप, न्यूज़ ऑन एयर ऐप। तो आप दिल्ली, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, पूरे भारत के FM रेनबो के और आकाशवाणी के प्रोग्राम कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हैं। तो देखिए, ये तो सुविधा हुई ना। और जहाँ तक बात है फ्रिक्वेंसी ना पकड़ने की, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि जैसे हम बताते हैं कि अभी ये दिल्ली का प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली FM रेनबो आपने ट्यून इन किया है 102.6 मेगाहर्ट्ज़, हम कहते हैं दिल्ली आकाशवाणी, दिल्ली FM रेनबो, दिल्ली और NCR, दिल्ली NCR में जो नोएडा है या फिर गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ये सब आ जाते हैं। अब आपका है हरियाणा, तो वहाँ तक ये फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पर वो चेंज हो जाएगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके वहाँ पर दिल्ली FM रेनबो किस फ्रिक्वेंसी पर आता है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने मोबाइल पर सुनिए न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी ये शिकायत होगी ये दूर हो गई होगी और आप जरूर हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी तरह से सुनते रहिए। कहाँ पर? FM रेनबो पर, जहाँ आप आराम से सुविधाजनक सुन सकते हैं, चाहे वो न्यूज ऑन एयर ऐप हो, चाहे फिर वो आपका अपनी रेडियो की फ्रिक्वेंसी हो। Thank you.

कभी ना कभी तो पहली बार आपने सुना होगा ना प्रोग्राम हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप के थ्रू, तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ सुनाई देता है, एकदम साफ। नहीं, सुनते रहिए प्रोग्राम बिंदास बोल।

देखा इसमें भी कितने प्यार से बताया ना कि पूरा पूरा दिन रेडियो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, और सच बताऊं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कभी कभी तो इस तरह से हम भी जब आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, मेल पढ़ते हैं, तो आप मानेंगे नहीं, हमारा दिन बन जाता है इतने प्यारे प्यारे मेल और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेल है वो पढ़ते हैं। इरशाद जहां विद्या विहार मुंबई से हमारे पास मैसेज आया है, ये मेल आया है माफ कीजिएगा, और ये कहते हैं कि मैसेज मसाला मिक्स में बड़े अच्छे अच्छे और रोचक विषय लेते हैं। एक दिन टॉपिक लीजिए, कोई ऐसी घटना बताएं जिसको सोचकर आज भी हंसी आती हो। तो ये इन्होंने एक टॉपिक बताया है। वैसे आपको बताऊं इरशाद साहब कि ये टॉपिक बहुत बार लिया जा चुका है, और आगे आप लिखते हैं कि एक प्रोग्राम वही लोग मैसेज करें जो एक बढ़िया सा शेयर भेजे या कविता, और जिसका मैसेज आपको सबसे अच्छा लगे। अच्छा, शेयर भेजे और जिसका मैसेज सबसे अच्छा आपको लगे उसको फ़ोन पर ले और उसको अपनी आवाज़ में पढ़ने के लिए कहे। बहुत ही बढ़िया सजेशन है और आपके इस सजेशन का स्वागत है। हम आपके इस सजेशन को अपने चैनल इंचार्ज तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और जहां तक बात है आपके प्रोग्राम में और भी अच्छे अच्छे टिप्स देने की, तो आप इसी तरह से हमें और मेल करते रहिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल, और मैं हूँ मस्मना गार्जी श्वेता। चलिए अगला मेल लेते हैं, और अगला मेल है हमारे पास संजीव कुमार का। अच्छा, संजीव कुमार जी का मेल आया, वो कहते हैं कि मैं 44 साल का हूँ और मैं खुकरानी का रहने वाला हूँ, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनल, हरियाणा से। अभी आगे लिखते हैं कि ये रेगुलर लिसनर है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के और AIFM रेनबो के भी। ये 2007 से प्रोग्राम सारे सुन रहे हैं। तो अब आगे लिखते हैं कि एक दिन टुडे आई हैड लिसन द प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, ठीक है, और आपने डेट नहीं लिखी है। अगर आप डेट लिखते तो हमें पता चलता। आपने लिखा है आगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी पर टॉपिक था, और जिसपे डॉक्टर साहब अपने अपने सुझाव दे रहे थे। अब कंप्लेंट की बात जहाँ तक आती है, तो ये लिखते हैं कि मैंने उस प्रोग्राम में बहुत सारे मैसेज भेजे, अपना मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, और वो इंक्लूड नहीं किया गया प्रोग्राम में। साथ ही आगे लिखते हैं कि इन्होंने टेलीफोन कॉल भी करा उस प्रोग्राम में, लेकिन वो भी इंक्लूड नहीं किया गया। मुझे टेलीफोन जो कॉल है वो होल्ड करवा के रखा गया 17 मिनट तक। अब मैं क्या करूँ, ये इनकी शिकायत है। ठीक है, तो जनाब होता क्या है, रेडियो डॉक्टर जैसे प्रोग्राम में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये आप भी सब सुनते होंगे, ये आप भी सब जानते होंगे। हो सकता है जब तक आपके मैसेज को उन्होंने देखा होगा या पढ़ा होगा, वो स्पेशल जो क्वेश्चन है वो ले लिया गया होगा। और जहाँ तक बात है होल्ड करने की प्रोग्राम में बात, तो आप देखिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है और डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, तो हम डॉक्टर साहब को बीच में रोककर नहीं कहते कि आप पहले फ़ोन ले लें, हम उनकी बात पूरी होने देते हैं। तो हो सकता है उस दिन ऐसा ही हुआ हो कि जो सवाल पूछा गया हो उसका आंसर डॉक्टर साहब दे रहे हो, इसी वजह से आपका फ़ोन जो है वो इतनी देर तक होल्ड पे रह गया होगा। और आगे से ऐसा ना हो हम इस बात का भी बिल्कुल ख्याल रखेंगे, और आपकी बात रेडियो डॉक्टर के इंचार्ज तक ज़रूर पहुंचा देंगे। तो आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा, और अपनी जो बातें हैं वो इसी तरह से हम तक और हमारे जो प्रोग्राम इंचार्जेस होते हैं उन सब तक इसी तरह से पहुँचाते रहिए। सुनते रहिए प्रोग्राम बिंदास बोल। शुक्र है कि हम लोग एक दूसरे से खूब अच्छे से बातें करते हैं, मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। आप अपनी शिकायतें, आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं, इसी तरह से पहुंचाते रहिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल, और चलिए अगले मेल और मैसेज की तरफ भी बढ़ेंगे, जल्दी से लेते हैं। सुदर्शन मुखी का हमारे पास मेल आया है, ये लिखते हैं कि सादर प्रणाम। इन्होंने मेल भेजा है शांतिनगर सोनीपत से। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए अब SMS करिए। अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें भी SMS कीजिए। अब ये आगे लिखते हैं कि डेट 10, 12 और 13 जो है इन्होंने मैसेज किए और अपने गाने की फरमाइश भी करी है, उन्होंने टाइम भी लिखा है। और इसके साथ लिखते हैं कि मैसेज भेजे हमारी पसंद का गीत सुनवाना तो बहुत दूर की बात, हमारे मैसेज कार्यक्रम में भी शामिल नहीं किए गए, फिर हमारा मैसेज भेजने और कार्यक्रम को सुनने का क्या अर्थ रहा, बहुत निराशा हुई। ये सभी कार्यक्रम सुनकर आपका दिवस और जीवन बहुत मंगलमय हो, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका मेल भेजने के लिए। और आप जानते हैं कि समय का अभाव होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। मेरे वाला सॉन्ग की रिक्वेस्ट इतनी सारी आती है, बहुत सारी, और सभी लोग जो हैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, और यही एक शिकायत हमारी अभी मैसेज में भी आई है। नमस्ते श्वेता मैम, मैं हूँ प्रगति राज पटना से, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि जब भी मेरे वाला सॉन्ग कार्यक्रम होता है मेरा मैसेज कभी नहीं पढ़ा जा रहा और मेरे गाने प्ले नहीं किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मैसेज को इग्नोर किया जा रहा है और शिकायत यही है। तो प्रगति जी और सुदर्शन जी, आप दोनों को मैं यही कहूँगी कि मेरे वाला सॉन्ग में बहुत सारे मैसेज आते हैं और आप लोग रेगुलर लिसनर हैं, है ना। अगर आप हर रोज़ या हर एक प्रोग्राम में जो मेरे वाला सॉन्ग है, अगर सिर्फ आप ही के गाने प्ले होंगे तो फिर सोचिए जो हमारे साथ नए लिसनर्स जुड़े हैं वो फिर शिकायत करने लगेंगे कि आप तो सिर्फ अपने पुराने लिसनर्स के गाने प्ले करते हैं, हमारे तो प्ले

नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो ठीक है, अगली बार से मतलब आप भी ये ध्यान रखिए कि आप जब भी मैसेज कर रहे हैं तो एक ही बार मैसेज करें। कभी कभी क्या होता है, आप एक मैसेज करते हैं और जब तक वो पढ़ा जाता है, पढ़ने में आ रहा होता है, तब तक आप एक और मैसेज कर देते हैं, वो फिर सबसे ऊपर चला जाता है। तो जो आरजी होते हैं, जो ये प्रोग्राम दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, अब हमारे पास मैसेज, अब आपको भी मालूम है ना मोबाइल में कैसे होता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे मैसेज चले जाते हैं, जो नए मैसेज आते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम तो नीचे से ले रहे हैं, जिनका पहले मैसेज आ रहा है उस हिसाब से, तो आपका ऐसे में फिर सबसे ऊपर चला जाता है, फिर कहीं गुम हो जाता है, तो फिर आरजे उस मैसेज को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा सब्र रखा कीजिए, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर एक दिन आपके गाना प्ले हो गया है तो नेक्स्ट डे अगर नहीं प्ले हो पाया है तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे साथ भी मैं ये कह सकती हूँ कि आप हम पर भी थोड़ा सा प्यार और लुटाइए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके गाना एक दिन प्ले हो गया, नेक्स्ट डे किसी और का प्ले हो जाएगा फिर वो गाना। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सबके गाने प्ले होते चले जाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा ना। इसके बाद हमारे पास मैसेज आया है कि ये आया है शकाया गुफ्ट राधे श्याम का, और कहते हैं कि प्रोग्राम अच्छे लगते हैं इन्हें सबके। भगवती जी कहती हैं कि अभी ज़्यादातर प्रोग्राम नहीं सुन पा रही हूँ, घर में थोड़ी सी व्यस्त हूँ। और मैसेज आया है अगला हमारे पास जी एस गिल का पटियाला से, कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है जो आप बॉलीवुड सरताज बनाते हैं उसमें मूवी टिकट्स इनाम होने चाहिए। अच्छा जी, तो ये तो आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई हमें अगर स्पॉन्सर करेगा मूवी टिकट्स तो हम ज़रूर दे देंगे, है ना। इसके बाद मैसेज हमारे पास आ रहा है बिंदास बोल में कि एफएम रेनबो दिल्ली का नियमित श्रोता हूँ, और ये भेरूलाल धाकड़ उन्होंने मैसेज भेजा है उज्जैन से, और हर रोज़ वो शाम को मैसेज मसाला मिक्स में मैसेज करते हैं, बहुत पसंद आता है विषय और जो श्रोता है उनकी प्रतिक्रियाएं और गीत सुनने को मिलते हैं। अपने पहले दिल से दिल तक का कार्यक्रम जो सुबह 10 से 11 बजे होता था वो कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया है, कृपया दिल से दिल तक कार्यक्रम फिर से शुरू करें। अच्छा, दिल से दिल तक का प्रोग्राम था 10 से 11 बजे आता था, बात से बनी बात, तो अगर मुझे याद मुझे सही लग रहा है तो आप शायद उसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो बात से बने बात प्रोग्राम जो है वो क्यों बंद कर दिया है, उसकी जगह अब हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया है, इसीलिए उसके स्थान पर हम लोगों ने वो किया है। बाकी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको समय समय पर मिलती ही रहती है। इसी के साथ दिनेश नाहर सिंह ने हमारे पास मैसेज भेजा है गोकलपुरी दिल्ली से, कहते हैं कि उमंग अच्छी नॉलेज देता है ये प्रोग्राम, और कृषि दर्शन भी अच्छा है, दिल में दिल्ली को रीस्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। तो ठीक है, आपकी ये बात हम अपने सीनियर्स तक ज़रूर पहुंचा देंगे, कंसर्न पैक्स तक, पर्सन तक पहुँचा देंगे, आप चिंता ना कीजिए। yeah.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हमारे पास और बहुत से मैसेज आ रहे हैं। कुछ शिकायतों के मैसेज आ रहे हैं तो कुछ तारीफों के मैसेज आ रहे हैं। तो आप सबके मैसेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेल का भी धन्यवाद। और हमारे पास सुदर्शन जी ने मैसेज किया है कि ये साप्ताहिक कार्यक्रम कर दीजिए इसे, और साथ ही साथ ये दो लोग अगर मिलकर करें तो बहुत अच्छा है, और इसमें गाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जनाब, अगर गाने नहीं होंगे ना तो बोर हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि हर कोई गाना सुनकर और अपने दिल की बात कहकर एकदम थोड़ा सा हल्का और ताज़ा महसूस करता है। नहीं तो अगर गाने नहीं होंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी पसंद के गाने बजा दें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गाने ना बजाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, है ना। तो इसी तरह से आप हमेशा सुनते रहिए प्रोग्राम्स एफएम रेनबो के, जुड़े रहिए। और जिन लोगों की भी शिकायतें हैं, आप सबकी शिकायतें ज़रूर हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर कभी भी किसी भी प्रोग्राम में एक मैसेज कर रहे हैं तो सिर्फ एक मैसेज कीजिए। अगर आप बार बार उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके डालते रहेंगे तो वो बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आरजे या जो भी अनाउंसर रहते हैं वो आपके मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स को रीस्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने कहा है, उस पर भी हम ज़रूर विचार करेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं मस्त मलंग आरजे श्वेता यहीं पर लेती हूँ इजाज़त, और फिर अगली बार मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ, नई बातों के साथ, नए गानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है, मेल करना है बिंदास बोल में, तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, feedback@fmrainbow@gmail.com। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं।

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में चौक कर्जत रेलवे खंड के दोहरीकरण के लिए 497 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। बिहार, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आशियाना कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं रेशमा। कहते हैं सफर सिर्फ रास्तों को तय करने का नाम नहीं होता, कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो दिल के भीतर एक खूबसूरत सा आशियाना बना जाते हैं, जहां झीलों के पानी में शाम के रंग उतरते हैं, जहां महलों की दीवारें सदियों पुरानी दास्तानें सुनाती हैं, जहां अरावली की पहाड़ियां शहर को अपनी आगोश में समेट लेती हैं और जहां हर मोड़ पर राजस्थान की शान, संस्कृति और तहजीब से मुलाकात होती है। जी हां, आज आशियाना में सफर उस शहर का जिसे कहा जाता है झीलों की नगरी उदयपुर। तो रहिएगा हमारे साथ और इस पूरे प्रोग्राम में यकीनन आप उदयपुर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपका मन हो तो हम तो आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आपको उदयपुर जरूर जाना चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, कार्यक्रम है आशियाना।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आशियाना, और आशियाना में हम आपके साथ बात कर रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की। भाई, पिछोला की खामोश लहरों से लेकर सिटी पैलेस की शाही भव्यता तक, जग मंदिर से लेकर सज्जनगढ़ की ऊंचाइयों तक, उदयपुर सिर्फ देखा नहीं जाता जनाब, बल्कि इसे महसूस किया जाता है। और आज कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से चलिए दूर चलते हैं और बसते हैं एक ऐसे शहर में जहां पानी में ख्वाब है, महलों में इतिहास है और हवाओं में राजस्थान की खुशबू है। और वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप ज़रूर जाएं उदयपुर और उदयपुर को ना सिर्फ देखें बल्कि महसूस करें कि उदयपुर वाकई अपने आप में किस कदर खूबसूरत जगह है। और जनाब, मेरा पूरा वादा है कि अगर आप जयपुर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत जगह हैं जहां जाने को जी चाहता है, जहां रहने को जी चाहता है।

तो जनाब आशियाना में बात हो रही है आपके साथ उदयपुर की। उदयपुर जब भी जाएं और सिटी पैलेस ना देखें तो जैसे शहर की शाही कहानी का एक अहम अध्याय छूट जाएगा। पिछोला झील के किनारे बना ये विशाल महल परिसर मेवाड़ के राजघराने के इतिहास और वास्तुकला की झलक पेश करता है। महल की खिड़कियों से दिखाई देती है झील और आसपास की पहाड़ियां। इसके दृश्य को जब आप देखेंगे तो आपका वो दिन यकीनन खास बन जाएगा। और पिछोला झील की अगर बात करें तो भाई कल्पना करके देखिए कि शाम का वक्त झील का शांत पानी और उसके ऊपर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी। चलिए बताएंगे आपको इस झील के बारे में। फिलहाल एक गीत सुनते हैं और उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ उदयपुर की।

बिल्कुल जनाब, एक दूसरे से प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए और मूड हो तो कहीं घूम कर भी आ जाइए। पिछोला अजमेर की हम आपके साथ बात कर रहे थे। नाव की सवारी करते हुए सिटी पैलेस, जग मंदिर और झील के आसपास के नज़ारे देखना शहर को महसूस करने का एक अलग ही आपको अनुभव देगा। जग मंदिर की बात करें तो पिछोला झील के बीच स्थित जग मंदिर अपनी खूबसूरत स्थापत्य कला और

के अट्रैक्शन में शुमार किया जाता है। और वहीं सज्जनगढ़ की बात करें यानी मॉनसून पैलेस की बात करें तो उदयपुर को ऊंचाई से देखना हो तो भाई सज्जनगढ़ एक शानदार जगह आपके लिए हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाई आप अगर घूमना चाहते हैं अपने साथी के साथ तो बस पकड़िए उसका हाथ और घूम आइए, चंद लम्हे अपने लिए भी एक बार जी के देखिए।

तो भाई उदयपुर आप ज़रूर हो आइएगा और फतेह सागर झील वहाँ देख सकते हैं आप संस्कृति और जो बाज़ार है वहाँ की, जो एक मेवाड़ी लोक संस्कृति है उसका आप आनंद ले सकते हैं। कठपुतली कला है, पारंपरिक जो हस्तशिल्प है और राजस्थानी चित्रकला, इसकी कला की पहचान है। और साथ ही अगर स्वाद की बात करें तो भाई उदयपुर का जो स्वाद है वो तो वाकई अपने आप में ही अनोखा है। राजस्थानी खाने की बात अलग है, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केड़ सांगरी, प्याज की कचौरी और मिर्ची, बहुत अलग अलग आपको स्वाद वहाँ नज़र आ जाएंगे। और सबसे ख़ास बात जो शायद मुझे लगती है, इतिहास

और प्रकृति एक साथ आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ सदियों पुराने महल तो दूसरी तरफ झीलों का सुकून, एक तरफ राजसी विरासत तो दूसरी तरफ अरावली की हरियाली और पहाड़ियाँ। इसीलिए आशियाना में उदयपुर का जिक्र हमने आपके साथ किया है कि अगर आप उदयपुर जाते हैं तो इन जगहों पर आप ज़रूर जाइएगा, महसूस कीजिएगा कि हमारा जो इतिहास है वो कितना समृद्ध है और साथ ही जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कला है, वो अपने आप में कितनी रिच है। और जनाब यहाँ पर न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे जो महल हैं उनके जो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें कर सकूं। तो बस इतना ही कहूँगी दोस्तों कि आप जब भी आपको मौका मिले, अगर आप चाहें तो अपने साथी के साथ आप उदयपुर जा सकते हैं, उदयपुर का एहसास कर सकते हैं, अपनी विरासत के बारे में जान सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और जब भी कुछ पल सुकून के गुजारने हों तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि ज़रूर जाइए, क्योंकि ज़िंदगी जनाब दोबारा नहीं मिलती। ज़िंदगी के जितने भी पल हैं उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजारिए। फ़िलहाल मुझे यहीं अनुमति दीजिए और एक गाना आप तक पहुँचा रही हूँ और उसके बाद हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक।

0: नहीं रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओ, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ?

0: लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
0: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
1: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।

0: ले आ रहा है।
1: कल रात फिर भी कर आ गया। क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
2: ना कमाता है ना धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
1: दीदी
2: अरे इनको तो
1: दीदी।
3: अरे आलोका तुम सब ठीक तो है ना?
1: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
3: अरे?
1: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
3: हाँ हाँ,
1: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
3: अब फिर क्या?
1: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
3: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
4: जी दीदी।
3: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
4: बिल्कुल चलेंगे।
3: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
4: जी दीदी।
1: जी दीदी।
4: हम सब तैयार हैं।
5: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
6: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
5: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थीं कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
6: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
5: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
6: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
5: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। वी हैव गैदर्ड हियर टू फैसिलिटेट डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। नाउ आई रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी टू कन्फर नाइटहुड टू डॉक्टर बोस। फ्रॉम टुडे ही विल बी द एस्टीम्ड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी।
3: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
4: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
3: सोच रही थी? क्या?
4: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
3: बिल्कुल।
4: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
3: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
4: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
3: हाँ।
4: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
3: बिल्कुल।
4: आपको नहीं लगता?
3: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
3: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
4: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
3: बिल्कुल।
4: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
3: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था। यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और

0: झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
4: करता है। बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपने पांव पर खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
4: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का अंक फिर एक बेहद खास अंक हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर आम समस्या है जिस पर हम आज बात करेंगे, और वो है किडनी स्टोन, यानी जो हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है। वो बहुत आम हम सुनते हैं और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं। हम आमतौर पर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बताते हैं कि अरे भाई, ज्यादा पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा, या ये मत खाओ वो मत खाओ, पर क्या हम सही एडवाइस एक दूसरे को देते हैं ये कई बार हम खुद भी नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए स्टूडियो में, उनसे हम सही तरह से जाने कि ये पथरी जो होती है, किडनी स्टोन होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, और इससे जुड़े हुए जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो क्या है, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्या मिथक है और क्या इसके तथ्य हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। नमस्कार और स्वागत डॉक्टर हेमंत आपका।
2: धन्यवाद मैम, नमस्ते।
1: और जैसा मैंने बताया कि आज का विषय आप पुनः एक बार सुन लें, किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स, गुर्दे की पथरी, इससे जुड़े हुए मिथक और इससे जुड़े हुए तथ्य, ये बात करेंगे हम आज डॉक्टर हेमंत गोयल से। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, किडनी स्टोन्स हम सुनते बहुत हैं, पर ये होता क्या है और क्यों हो जाता है, ये दोनों कारण मैं जानना चाह रहे थे।
2: देखिए, किडनी स्टोन ये होता क्या है, जैसे कि कोई, ये बेसिकली पथरी है ना। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है दो तरीके से निकलते हैं मेनली, एक हमारे मोशंस में और एक यूरिन के थ्रू। तो हमारे काफी वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू या हम ईटिंग के थ्रू या लिक्विड के थ्रू जो हम लेते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी निकालती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो, अगर हमारी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पानी को निकालने में असमर्थ हो, तो वो पानी की तरह वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे किसी भी नाले में, अगर वो पानी साफ है, नदी में पानी बहता है, तो उसमें पत्थर नहीं जमते। नाले में धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो इम्प्योरिटीज है वो जुड़ जाती है, पहले छोटी छोटी पथरी बनाती है, उसके बाद वो पथरी को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे सारी पथरियां जुड़ के एक बड़ी पथरी बन जाती है, और फिर जो यही यूरिन है उसको रुकावट कर देती है, तो किडनी का काम करने में रुकावट हो जाता है। Okay. जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है।
1: तो ये पता लगता है पथरी होती है कि मुझे इस तरह के कुछ, उनको लक्षण पता लगते हैं क्या डॉक्टर साहब?
2: देखिए, ये बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लक्षण दो टाइम पे होंगे। एक होगा शुरुआत में जब वो पथरी हमारी अटक रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे लक्षण आते हैं जरूर कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा जब वो पथरी इतनी बड़ी हो गई है और उसने पूरी तरीके से यूरिन को रोक दिया है।
1: Okay.
2: तब आएंगे किडनी फेलियर के लक्षण। तो बीच में जनरली ये किडनी स्टोन साइलेंट होते हैं, तो ये डैमेज भी कर रहे हैं मगर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। तो इसके लिए जब परेशानी होती है तो ये कर देना कि हाँ, अब तो मेरा दर्द खत्म हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि दर्द खत्म हो गया मतलब स्टोन निकल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये यदि देखनी है, अगर आपको पथरी है तो आप उसका फॉलोअप कराइए, नहीं तो बिना दर्द के ही आपकी किडनी को खराब कर देगी, तब पता चलेगा।
1: ओके, तो ये काफी सीरियस टर्न भी ले सकती है, अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल जाएं, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पर जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी जब होती है, जब शुरुआत होती है, क्या तब भी कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है कि इस तरह का हो रहा है मेरे साथ, कि बिल्कुल जब पेन के लेवल पर पहुंच जाता है तभी पता चलता है?
2: वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो छोटी पथरी है उसमें सिम्टम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि

0: छोटी पथरी हमारी किडनी से जो आगे एक नली होती है पतली सी, यूरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें गिरने के चांसेस हैं। जब पथरी एक बार बड़ी हो जाएगी तो वो आगे नहीं गिरेगी, क्योंकि आगे की पाइप छोटी है। तो किडनी में फंस जाएगी। तो जब वो छोटी पथरी होती है शुरुआत में तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ही वो यूरेटर में गिरेगी पेशेंट को पेन होगा, तो उसमें तो सिम्टम आ जाएंगे, मगर एक बार पथरी बड़ी हो गई तो फिर सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो किडनी में ही बैठी है और किडनी में पेशाब रोक रही है और उसकी वजह से वो किडनी फूलती जा रही है और किडनी डैमेज हो सकती है। तो इनिशियल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। पेशेंट को पता होता है उसको 2 साल पहले पथरी का दर्द हुआ था, बट फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 2 साल पहले हुआ था, फिर तो मैं ठीक हो गया था, मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई खा ली जिससे मैं ठीक हो गया। फिर वो 2 साल बाद आता है कि जब पथरी बड़ी हो गई किडनी खराब हो गई। ये हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे अच्छा, आते हैं। तो वो 2 साल पहले के दर्द को इग्नोर ना करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखें निकली है नहीं निकली है, वो बहुत जरूरी है।
1: चलिए और भी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल इस समय मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ जो उनके मन में चल रहा है वो जरूर आपके साथ शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आज हम किडनी स्टोन्स पर विस्तार से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, समय निकालकर डॉक्टर साहब यहां आए हैं, तो फायदा उठाइए और जरूर पूछिए आपके जो सवाल हैं। हम खास तौर पर इससे जुड़े हुए जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं उस पर भी डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, पर पहले एक सुंदर सा गीत सुन लें। चलिए ये गीत सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप है रेडियो डॉक्टर में, बिल्कुल होशोहवास में रहिए, लापता मत रहिए और हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। और आज इसी तारतम्य में हम आज किडनी स्टोन्स पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं, कॉल्स पर भी हम वेट कर रहे हैं आपकी, अगर आप हमसे पूछना चाहें तो जुड़ जाएं। पर डॉक्टर साहब, मैं यहां पर ये जानना चाहूंगी कि आपने लक्षण थोड़े से बताए कि किस तरह किडनी स्टोन के लक्षण दिख सकते हैं या उसको पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ उम्र दराज लोगों या वयस्कों में ही देखी जाती है समस्या, क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो बड़े बुजुर्ग या मिडिल एजेड लोगों को मैंने ज्यादा सुना है बोलते हुए। क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन हो सकता है?
1: अगेन ये सवाल, ये भी एक मिथ है कि ये बड़े लोगों को ही होती है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये स्टोन के पेशेंट आते हैं वो 20 से 50 साल के बीच में आते हैं, तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं स्टोन, मिडिल एज में भी दिखाई दिए जाते हैं और एल्डरली एज में भी देखे जाते हैं, पर सबसे कॉमन एज है 20 साल से 50 साल के बीच की उम्र की। तो सबसे कॉमन कारण तो यही है कि आदमी पानी कम पीते हैं या किसी प्रकार का फ्लूइड कम लेते हैं तो वो स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते, तो या फिर वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि पसीने बहुत आ रहे हैं बट पानी का इंटेक कम है। जैसे अगर आप राजस्थान देख लीजिए तो वो एक स्टोन बेल्ट बोली जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीने इतने आते हैं बट पानी का इंटेक उतना नहीं है, तो वहां पर जनरली स्टोन, बड़े बड़े स्टोन पाए जाते हैं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर हमारा पसीने इतने नहीं निकलते, ठंडे इलाके, तो वहां स्टोन कम पाए जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, मगर सबसे कॉमन 20 से 50 साल की उम्र में होते हैं और वो किसी भी उम्र में पाए जा सकते हैं।
0: पर इसका कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि पेरेंट्स को है तो चांसेस बढ़ते हैं कि बच्चों को हो जाए?
1: देखिए, जेनेटिक नहीं होता इसमें जनरली, इसमें मगर फैमिलियल बोलेंगे, जो हेरिडिटरी फैक्टर इसमें है वो डाइट रिलेटेड है। जनरली देखिए, एक फैमिली में एक तरीके की डाइट ही फॉलो की जाती है। अब आप गुजराती लोगों में देखेंगे तो वो कॉमन डाइट है, अब राजस्थानी में देखेंगे वो एक डाइट है, साउथ इंडियन होंगे तो उनकी डाइट सेम है। तो इट्स मोर रिलेटेड टू डाइट की डाइट से, कि वो डाइट तो वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, पानी का इंटेक भी वो वैसे ही लिया जाएगा, है ना। किसी की डाइट में जैसे हम जब जैसे इसमें बोलते हैं कि नमक का इंटेक, है ना, सोडियम अगर हमारी डाइट में ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है स्टोन बनने के। तो हम जो प्रिकॉशन पेशेंट को बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए, सोडियम थोड़ा सा कम लीजिए, जैसे हम मसाले हो गए, चटनी हो गई, अचार हो गए, इसका इंटेक हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम बंद मत करिए, कैल्शियम मॉडरेट कैल्शियम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंगे कैल्शियम इंटेक तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सेलेट कम करें, आप पेशेंट बोलते हैं ऑक्सेलेट क्या होता है, ऑक्सेलेट जैसे चोको पाउडर है, कोको पाउडर है, इन सब चीजों में ऑक्सेलेट लेवल ज्यादा होते हैं। आजकल हर जगह AI आ गया है, तभी भी आप ये चीजें डालेंगे कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, तो वो डाइट में चेंज करने में बहुत समय लग जाता है। मगर आप इनिशियली अगर हम आज भी ट्राई करेंगे 2-3 महीने में हम उसको अपनी हैबिट में लेके
0: बहुत अच्छे से मजबूत इरादा करना पड़ता है कि ये खाना ये नहीं खाना।
1: ये अगर मैं बचपन से मेरे घर में सब लोग अचार खा रहे हैं तो उसको छोड़ना भी 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में बहुत आसान चीज नहीं है। तो मगर जब आपको रिकरेंट, आपको पता है कि ये इतना सीरियस ले सकती है मोड, तो फिर आपको जब उसकी अवेयरनेस आ जाएगी तो वो चीज छूट जाएगी
0: जी। तो बेसिकली खान पान और पानी, ये दो चीजें इसके मेजर फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं।
1: साथ ही साथ अगर डायबिटीज भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, वो भी फैमिली में चलता है, तो डिजीजेस जो फैमिली में चलती हैं उनमें इंसिडेंस स्टोन के ज्यादा होंगे, पर से स्टोन जेनेटिक नहीं होता।
0: तो डायबिटीज अगर किसी को है तो क्या उसको पथरी भी होने के चांस?
1: बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और खासकर यंग एज में बहुत कॉमन है। हमारे पास जितने भी 20-30-40 साल के लोग आते हैं स्टोन के साथ, फर्स्ट टाइम स्टोन फॉर्मर, तो डायबिटीज बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं कि उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन या कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन भी कॉमन, थोड़े इंसिडेंस ज्यादा है। तो डायबिटीज का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये फैमिलियल होता है, तो आपको जिसको डायबिटीज है उसको स्टोन के चांसेस भी ज्यादा है और उसको स्टोन की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा है,
0: तो उन्हें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा,
1: ज्यादा ध्यान देना
0: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान पान की बात बताई, कैल्शियम और ऑक्सीलेट की बात बताई जो ज्यादातर सुना जाता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में बीज हो तो उसको नहीं खाना चाहिए, ये तो कितना ये मिथ है कि ये फैक्टर?
1: ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, कि ये भी हमारे से पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं कि जिस भी चीज में बीज है तो उससे

0: स्टोन बन जाते हैं, ये बिल्कुल मिथ है। कोई भी बीज हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर यूरिन में नहीं जाता,
1: okay.
0: है ना, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है। और वो सब हमारा जो जीआई सिस्टम है, जो हमारा ओरल सिस्टम है, वो इतना अच्छा है कि जो भी यूजलेस चीज होगी उसको वो मोशन में निकाल देगा। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेनली इसमें जो आप क्या चीज खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब बहुत सारे यंग लड़के होते हैं जो जिम जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो सप्लीमेंट में क्या ले रहे हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, हैवी मिनरल ज्यादा ले रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी, हमारी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे पानी ज्यादा लेना है, कैल्शियम मॉडरेट इंटेक लेना है, नॉनवेज बहुत ज्यादा नहीं लेना, मॉडरेट लेना है, एनिमल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो एनिमल प्रोटीन अगर ज्यादा लेंगे तो उसमें फिर क्रिएटिनिन और ये सब चीजें ज्यादा होंगी जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी होगी, मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं। तो आपको नॉर्मल एनिमल प्रोटीन लेना है। तो ये सारी ऑक्सैलेट आपको नॉर्मल ऑक्सैलेट लेना है या ऑक्सैलेट रिस्ट्रिक्शन करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डाइट में देखोगे कि मेरी डाइट में ये किस चीज में ज्यादा है, और तब आप कम कर पाओगे। जो नॉनवेज खाता ही नहीं उसे मैं बोलूंगा नॉनवेज कम खाओ, वो तो खाता ही नहीं है, तो ये तो उसको खुद ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी।
1: और बहुत मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो इजी तो नहीं है कि ये सोचना कि मैं ये मॉडरेट खा रहा हूं या मेरा एक्सेस हो रहा है, तो क्या कोई टेस्ट कराकर फिर आदमी उस हिसाब से करे? क्योंकि बहुत आम बात है आजकल लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, आयरन सप्लीमेंट लेना, कि अब चलिए 50+ हो गए हैं तो ये लेना शुरू कर दीजिए, ये कमी ही होगी, B12 ले लिया, विटामिन डी ले लिया, इट्स सो कॉमन, तो क्या ये भी नुकसानदायक हो सकते हैं?
0: तो देखिए मैम, क्या होता है कि हम अपनी डाइट में हम तोल के या ग्राम से तो खा नहीं सकते
1: जी।
0: तो डाइट तो हम वही लें जो हम ले रहे हैं, जिसकी हमें हैबिट है, हम उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। कि मैं अगर कोई हमें, जैसे एक बहुत बड़ी मिथ है कि दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, वो कहते हैं कैल्शियम होता है दूध में, दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, दूध में बहुत अच्छा लिक्विड कंटेंट है, इट इज वो बहुत न्यूट्रिशियस है, उसको पीने से कहीं से भी स्टोन नहीं होते। तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज से हो सकते हैं। अगर मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रहा हूं, तो अगर हमारी मेरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने दो दी है तो मैं एक ले लूं, मैं मॉडरेट अमाउंट लूं, तो मुझे हमें पता है। अगर मैं कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बहुत हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं प्रॉब्लम यह है कि स्टोन हो गया, तो हम ये बनाते हैं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, इस स्टोन हो गया, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इतना पसीना वहां पर बहा रहे हैं, उतना फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे, जिसकी वजह से स्टोन है। तो हर इंडिविजुअल को अपना ना खुद ही बॉडी लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि कहां वो गलती कर रहे हैं, और फिर इसमें जो हेल्प कर सकते हैं डाइटिशियन हेल्प कर सकते हैं। डाइटिशियन बता सकते हैं कि आपकी आपका जो आप जो खा रहे हैं, आप 3 दिन का उन्होंने बोला कि आप क्या क्या खा रहे हैं बताइए, तो वो उसमें देख लेंगे कि इसमें थोड़ा कैल्शियम कम कर दीजिए इसमें, तो वो डाइट का मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो डाइटिशियन
1: आप तरह से कस्टमाइज होना चाहिए,
0: कस्टमाइज होना चाहिए, आप जनरल नहीं बोल सकते, मगर हम मोटी मोटी ओपिनियन तो दे देते हैं पेशेंट को। बट अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और देखना चाहे तो वो डाइटिशियन को बता सकता है ये मेरी डाइट है, इसमें मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मॉडरेट कैल्शियम ऑक्सैलेट कम होना चाहिए और एनिमल प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए, मेरा फ्लूइड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं। बट एक इंटेलिजेंट पेशेंट समझ जाता है कि सोडियम कैसे कम करना है, कैल्शियम मुझे बहुत ज्यादा नहीं लेना, मुझे एनिमल प्रोटीन ज्यादा नहीं लेना, मुझे फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है। बट घूम घुमा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूइड इंटेक है। फ्लूइड इंटेक अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, हाइड्रेशन इतना कि आपका यूरिन साफ आ रहा है, आपका क्लियर यूरिन आ रहा है, मतलब आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, तो आपको स्टोन होने के चांसेस भी कम है, और अगर स्टोन हो जाते हैं तो वॉश आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है।
1: तो कितना यूरिन इंटेक होना चाहिए?
0: यूरिन का देखिए, आपका फ्लूइड इंटेक जो है वो मौसम के हिसाब से है, आप किस जगह पे रह रहे हो,
1: मतलब वाटर इंटेक भी मौसम के हिसाब
0: से, मौसम के हिसाब से, क्योंकि जितना आपका पसीना बहेगा, जितना वाटर लॉस हो रहा है उसके उसी हिसाब से होगा। अगर आप बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं, या गर्मियों में हम बोलते हैं पेशेंट कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, मगर यही सर्दियों में हम बोलते हैं 2.5 से 3 लीटर या 2.5 से 3.5 लीटर पानी एडिक्वेट है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पानी पी रहे हैं, जब आप कम पानी पियेंगे तो यूरिन थोड़ा येलोइश आएगा, तो ज्यादा येलोइश आ रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। अगर यूरिन आपका पानी की तरह आ रहा है मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं। उसके ओवर एंड अबव ज्यादा पानी पीने का कोई फायदा नहीं है।
1: तो ये अब सेल्फ चेक किया,
0: हाँ, ये सेल्फ चेक कर सकते हैं, यूरिन का कलर देख सकते हैं, वो पानी की तरह है तो आपका हाइड्रेशन अच्छा है।
1: ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते जी।
1: हाँ, अपना नाम बताइए, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपना नाम बताइए, क्या पूछना चाहते हैं फिर पूछिए।
2: मैम मेरा नाम महेश है। मैम मेरा भाई है, उनके पति है मैम, तो कभी दर्द होता है तो इतना दर्द होता है कि उस टाइम हम खुद होपलेस से हो जाते हैं। उस टाइम मतलब क्या करना चाहिए कि दर्द थोड़ा राहत हो जाए, जैसे हॉस्पिटल दूर है तो फिर वहाँ तक थोड़ा राहत मिल जाए।
0: देखिए ये बिल्कुल कॉमन गलती जो सब करते हैं वही आप कर रहे हैं। जब आपको पता है स्टोन है तो आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं कि जब वो दर्द हो तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं। आज जब दर्द नहीं हो रहा तो आप इलाज क्यों नहीं करा रहे? तो यही गलती जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से जब आदमी का किडनी फेलियर हो जाती है तब उनको लगता है कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि भाई हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको पता है आपके मरीज को स्टोन की प्रॉब्लम है, अब आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं, तो यही तो वेट नहीं करना आपको अब।

0: आज दिखाइए डॉक्टर को, वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, सीटी स्कैन कराएंगे, बताएंगे आपके मरीज को इलाज की जरूरत है नहीं है।
1: तो आपको समझ में आ गया, आपको लेके जाना है फौरन, है ना डॉक्टर साहब, और उनके फर्दर चेकअप्स कराने हैं और जैसा डॉक्टर साहब बताएं उनको फर्दर ट्रीटमेंट कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी। और ये एक हमें मैसेज आया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी ने लिखा है उज्जैन से, कि यूरिन करने के बाद तुरंत क्या पानी पिया जा सकता है?
0: देखिए खंडेलवाल

0: ये तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसमें उसको आप टाइम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, तो आप पानी ठीक पी रहे हैं
1: जी। देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से, नमस्कार। और डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमें अच्छी लग रही है, तो बहुत धन्यवाद। यही बात हमें लिखकर भेज रहे हैं हितेंद्र दास जी आसाम से, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सही जगह पर मैसेज कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर हमें भेजिए। और जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें निरंतर सुनती हैं और लगभग प्रतिदिन प्रश्न पूछती भी हैं, धन्यवाद जोया जी। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर बिकॉज आई feel thirsty and then go to pass urine frequently, do that impact kidney, एक ही उनका क्वेश्चन है। और when I'm unable to go to toilet as stuck in traffic jam, do give a bit of pain in my right kidney, is that alarming?
0: देखिए रोहित जी, इसमें ना दो सवाल हैं, एक तो है कि आपको प्यास बहुत लगती है और आप यूरिन बहुत भर जाते हैं
1: जी।
0: तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन भी ज्यादा जाएंगे, तो डायरेक्टली रिलेशन, अगर 10 लीटर पानी पीऊंगा तो 8 या 9 लीटर यूरिन आएगा, है ना। 8-9 लीटर के लिए मतलब हर आधे घंटे में जाना पड़ेगा अगर आप टाइम के हिसाब से लगाएं तो। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न ये है कि प्यास इतनी क्यों लगती है, उसके दो कारण होते हैं, या तो किसी को आदत होगी ज्यादा पीने की, जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं कि अब आदत हो गई है कि मुझे ज्यादा पानी पीना है, है ना। दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्यास बहुत लगती है, सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज है, डायबिटीज में प्यास भी ज्यादा लगती है और यूरिन भी ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेकअप करा सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायबिटिक है आप या प्री डायबिटिक है जिसकी वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है। दूसरी बात जो आपने बोला कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं और आपको उस टाइम पे आप यूरिन नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो आपकी किडनी में तो नहीं मगर ब्लैडर में जरूर पेन होगा, क्योंकि वो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा अनलाइकली है कि किडनी में पेन हो, मगर आपका जो नाभि का एरिया उसके नीचे आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आपका पेशाब की थैली ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं वो यूरिन से भर गई है, तो उस वहां पर पेन हो सकता है। तो उसका तो यही है कि अगर यूरिन पानी ज्यादा पी रहे हैं तो यूरिन ज्यादा बन रहा है, ब्लैडर जो हमारा स्टोरेज है उसमें स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जब वो भर जाएगा ज्यादा तो पेन होगा।
1: पर इन्होंने ये भी लिखा है डॉक्टर साहब कि कभी ज्यादा देर हो जाती है तो राइट साइड में किडनी में पेन होता है, तो
0: ऐसा बड़ा अनलाइकली है, कभी कभी ब्लैडर का पेन रेफर कर सकता है राइट साइड में, बट थोड़ा सा सुपरा प्यूबिक पेन ज्यादा कॉमन है ऐसी कंडीशन में।
1: अच्छा, फिर भी एक बार दिखाएं तो
0: दिखाना तो चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीना और यूरिन ज्यादा, पानी ज्यादा पीने के साथ तो यूरिन ज्यादा आ सकता है, बट पानी ज्यादा क्यों पी रहे हैं उसके लिए चेकअप कराना चाहिए।
1: और एक ये हमारे पास प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि मेरी पुत्र वधू के कुछ साल पहले पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि वापस पथरी बन जाती है, क्या हर साल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अगर हम हर साल कराएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड का?
0: देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, ये भी एक मिथ है कि एक बार पथरी निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। देखिए कम से कम जिसको पथरी बन रही है उसको 50% चांस है कि उसको लाइफ में फिर से पथरी बनेगी।
1: क्यों तो ऐसा क्यों है?
0: क्योंकि उनकी ना डाइट चेंज होती है।
1: अच्छा।
0: ना उनका पानी पीने का ये चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, और जो उनको टेंडेंसी
1: बॉडी टेंडेंसी
0: जो टेंडेंसी से उनको बना था वो तो करेक्ट नहीं किया, वो वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं। तो इसलिए देखा गया जिनको पथरी बनती है उनको 50% फिर से लाइफ टाइम में पथरी बनेगी। तो इसके लिए जिनको पथरी बनी है कम से कम उन लोगों को हर साल अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हर साल कम से कम अल्ट्रासाउंड करा लें तो पता चल जाएगा पथरी जब बनी इनिशियल फेज में पता चल जाएगी पथरी बन गई। तो जिनको स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ उनको पक्का कराना है। प्लस मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पेशेंट हमारे पास, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो आयुर्वेदिक दवाई ले ली और उससे मेरी पथरी निकल गई, है ना। तो ठीक है, आपको डॉक्टर ने बोला बिना अल्ट्रासाउंड किए कि पथरी निकल गई, ये बहुत गलत है। आपको कोई भी दवाई दे, हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बिलीव करते हैं हम भी, तो आपको दवाई दी आपकी, उन्होंने बोला पथरी निकल गई, फिर भी अल्ट्रासाउंड करा के उस चीज को आप वेरीफाई कराइए पथरी निकली या नहीं निकली। 90% केसेस में पथरी नहीं निकली होती और पेशेंट को बाद में पता चलता है जब वो बहुत लेट हो चुका होता है
1: जी। और इसका कोई और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जैसे कि होम्योपैथी, और अभी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी क्लेम किया जाता है, आयुर्वेद में भी क्लेम किया जाता है, तो इस तरह से क्या एलोपैथी में भी कोई दवाई है या सिर्फ सर्जरी ही एक सोल्यूशन है?
0: मैम देखिए इसमें फिर दो चीजें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर पथरी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लोगों में मिथ है कि भाई किडनी स्टोन में अल्ट्रासाउंड पथरी आ गई अब तो ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। जनरली 6 mm से छोटी पथरी, जो हमारे पास जितने भी अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 50% पेशेंट में 6 mm से छोटी पथरी होती है। जो इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड पे मिल जाती है। मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्या पता उसमें 3-4 mm की पथरी आ जाए। तो 6 mm से छोटी पथरी को जनरली अगर वो अड़ नहीं रही, वो रुकावट नहीं कर रही, बहुत छोटी पथरी भी कभी कभी रुकावट कर सकती है मगर जनरली नहीं करती, तो उस केस में उनको हमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में हम उनको दवाइयों से, एल्कलाइजर से, अपनी डाइट से, अपना लिक्विड इनटेक से वॉश आउट कर सकते हैं। किडनी का, बॉडी का भी अपना नॉर्मल मैकेनिज्म होता है छोटी छोटी पथरी को निकाल देने का।

0: निकल जाता है। हम उन पेशेंट को बोलते हैं आप मॉनिटर करिए, कोई दर्द हो तो आइए, नहीं तो 3 से 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करिए, बहुत चांसेस है ये निकल जाएगी। okay. सिर्फ बड़ी पथरियों के लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है या जो पथरी फंस रही है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। तकरीबन 2 सेंटीमीटर से छोटी पथरी का बिना ऑपरेशन के भी इलाज कर सकते हैं
1: जी। तो अलग अलग किस तरह से सर्जरी की जाती है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, साथ ही साथ आकाशवाणी के प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम फोन लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, सतीश गाजियाबाद से।
1: जी सतीश जी, बताएं क्या।
2: मैंने रेडियो अभी खोला है।
1: जी जी, आपको विषय पता चल गया है ना।
2: हाँ, मैं उसी विषय पे ही बात करूंगा।
1: जी बताएं।
2: एक्सपर्ट कहते हैं कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। तो क्या अगर किसी को कोई यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो भी नॉर्मल आ रहा है, तो उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कोई मेडिसिन की जरूरत है?
3: थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वैसे हम रीनल स्टोन्स की बात कर रहे हैं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।
4: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी, प्रश्न पूछे राजेंद्र जी।
4: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी पा से ही नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
3: नमस्ते।
4: पहला सवाल तो है कि आज से ना 6 महीने कब मेरी डाइट जो है 24 घंटे में मैं यही कोई 10 बजे खा जाया करा, 2 फुलके सुबह, 4 दिन में 4 शाम को। पर अब मैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 ही फुलके खा पा रहा हूँ और मेरे पेट में ना मतलब गैस बनती है और पेट भारी भारी हैवीनेस रहती है और जलन गर्मी भी पेट में होती है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई पेट में तो कई पार्ट्स में जो है वो पथरी हो सकती है, तो क्या ये किडनी स्टोन?
3: देखिए, ये
4: हैं?
3: किडनी स्टोन का सिम्टम नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर के सिम्टम है, तो पेट में जो छाले हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए मेडिसिन या गैस्ट्रो में दिखाना पड़ेगा। ये किडनी स्टोन के सिम्टम नहीं है।
4: ये है किडनी स्टोन से क्या थायराइड या टॉन्सिल का कोई कनेक्शन है?
3: किडनी स्टोन का
4: थायराइड किसी को है, टॉन्सिल, तो देखिए किडनी स्टोन से रिलेशन है?
3: जनरली डायबिटीज से होता है और पैराथायरॉइड से होता है, एक ऑर्गन होता है थायराइड के पीछे, पैराथायरॉइड, तो वो जिसमें बढ़ जाता है उसमें बहुत ज्यादा स्टोन के चांसेस होते हैं, मगर थायराइड से जनरली डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि पेन, जैसा ये भी बता रहे थे अभी कर्णपुरा से राजेंद्र जी, कि इनको अनइजनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है, कई बार ये भी देखा जाता है कि पेन हो रहा है, आपने बताया है कि पेन होता है जब स्टोन होता है, और कुछ लोग जो है पेन किलर खा लेते हैं, उनको ये लगता है पेन हो रहा है, पेन किलर खा लेंगे हमें आराम मिल जाएगा, या उन्हें पता नहीं लगता कि इसके लिए मुझे जाना ही चाहिए। तो पेन किलर इस तरह से कोई हैबिचुअल खा रहा है जब पेन होता है, तो कितना हार्मफुल हो सकता है?
3: मैम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी दवाई वो खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अगर देखिए कोई भी दवाई हम 2-3 दिन के लिए खा रहे हैं तो जनरली वो रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, वो दिक्कत नहीं है, बट कोई भी दवाई आप लंबे टाइम के लिए खा रहे हैं या आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पेन किलर आपका दर्द तो कम कर देंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि 3rd कॉमन कॉज रीनल फेलियर का पेन किलर इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। तो जो लोग ये ब्रूफिन या पिंक कलर की दवाइयां खाते हैं कि भाई मेरे को दर्द होता है मैं तो दवाई खा लेता हूं, तो ये तीसरा सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है। लाखों से ऊपर लोग हैं जिनकी पेन किलर खाने की वजह से किडनी फेलियर होती है, और एक किडनी नहीं दोनों जाती हैं जब जाती हैं।
1: अच्छा।
3: तो उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है या ट्रांसप्लांटेशन पे आना पड़ता है, तो बड़ी मेजर चीज है। आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उनको पता है, बताएंगे कि सबसे दो चीजें वो पूछते हैं कि आप बार बार दवाई, दर्द की दवाई तो नहीं खाते थे, और आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं खाई पेन किलर के लिए? जो चूर्ण वूरण होते हैं इसमें बहुत हैवी मिनरल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं सॉरी, तो उन हैवी मेटल्स से एक्चुअली जो, तो कोई आप दवाई लें उसके बारे में आपको कहीं लिटरेचर पता होना चाहिए कि आप ये 6 महीने के लिए दवाई खा रहे हैं, तो ये उन दवाइयों में इतना हैवी मेटल्स होता है कि जिसकी वजह से पेन आपकी किडनी फेल हो जाती है, और ये बहुत कॉमन हम देख रहे हैं यंग बच्चों में, 25-30 साल के बच्चे, उनकी एक हिस्ट्री होती है, मैंने किसी झोला छाप टाइप डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली थी, पेन आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, वो एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है, उन्होंने बस कहीं से सीख लिया और उन्होंने कुछ दवाई दे दी, तो प्रॉपर मेडिसिन

0: हर चीज रिसर्च के साथ होती है, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च की वाली दवाई दे देते हैं, लोग खा लेते हैं, किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, पेन किलर का रेगुलर यूज ना करें। वो पेन किलर सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि कभी आप घर बैठे हैं और आपको पेन ज्यादा दर्द हो गया तो आपने दवाई खाई और डॉक्टर के पास चले गए।
1: जी ये बहुत जरूरी बात है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर मैम जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्ते जी
2: डॉक्टर साहब, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था अपने आप ही, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्टोन की वजह से करवाया था। तो मेरा अल्ट्रासाउंड निकला कि आपका यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, PVR मतलब, क्योंकि एक बार में यूरिन नहीं निकलता, थोड़ा रह जाता है।
0: स्टोन तो आपको नहीं है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
2: यूरिन का रिटेंशन हो जाता है एक बार में, नहीं होता
0: नहीं,
2: क्लियर।
0: अगर आपको सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाने चाहिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे अगर यूरिन रुक रहा है अंदर तो वो बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं है। किसी को 100 ml रुक सकता है, किसी को 50 ml रुक सकता है, तो उसके लिए जरूरी नहीं। जब तक आपको परेशानी ना हो कि आपका यूरिन धीरे धीरे हो रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में 3-4 बार उठना पड़ रहा है, फ्लो कम है आपको, स्ट्रीम पुअर है, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज सिर्फ प्योरली अल्ट्रासाउंड पे अगर PVR बढ़ा हुआ है तो उसमें जनरली कोई भी डॉक्टर आपको कोई बोलेगा कि आप ठीक हो।
2: थैंक यू,
0: ठीक है जी।
1: जी ये हमारे पास एक मैसेज है, वैसे ये स्टोन से रिलेटेड तो नहीं है, आप देखें अगर आप जवाब देना चाहें तो। ये 49 ईयर्स की हैं सुमन देवी, और ये लिख रहे हैं कि मेरी मम्मी का नाम सुमन देवी है और उनको किडनी में मल्टीपल सिस्ट है, और इनको बताया है ADP PKD शायद बताया है डॉक्टर ने, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं?
0: देखिए इसमें आपको जो मल्टीपल सिस्ट और ADP KD बताया, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो डॉक्टर ने बता दिया होगा कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। अदरवाइज ये सिस्ट कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, तो आपको एक रेगुलर फॉलोअप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रहना चाहिए। जो अब ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का मेडिकल वाला इलाज करते हैं, तो इसमें सर्जरी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर करिए कि कल को हाइपरटेंशन बनती है तो ये किडनी डैमेज हो सकती है, अदरवाइज ये ठीक चलेंगी।
1: हमारे एक साथ हमारे एक कॉलर है। हेलो।
3: हेलो,
1: नाम बता।
3: नमस्कार सर
1: जी,
3: आपको तो भी नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी।
3: सर ये जो इसका किडनी का जो ऑपरेशन होता है आजकल कते रोबोटिक या AI से ये पॉसिबल है? और दूसरा जो है ये जैसे किसी को ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी है वो उसको तो बिना पेन किलर खाए हुए रह ही नहीं सकता होल लाइफ।
0: देखिए ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी या न्यूरोजेनिक पेन होगा तो उसके लिए उस वो वाली दवाई पेन किलर दिए जाएंगे जो किडनी को डैमेज नहीं करते। जब भी डॉक्टर आपको देते हैं ना लंबे टाइम के लिए तो वो ऐसी दवाई देते हैं जिससे किडनी डैमेज ना हो, है ना। मैं आपको उन पेन किलर्स की बात कर रहा हूँ जो कॉमन पेन किलर हैं वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। बट ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजी हो गया या आपको गाबापेंटिन दे रहा है कोई, तो वो वाले पेन किलर हैं जो किडनी को डैमेज नहीं करते। तो हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट आपको वही दवाई देगा, है ना। कोई भी डॉक्टर आपको 6 महीने के लिए पेन किलर ऐसा नहीं देगा जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाए। आज की डेट में जो नई थेरेपीज आ रही हैं, है ना, मेडिकल में जो ऑपरेटिव थेरेपीज आ रही हैं समय समय के साथ, पहले जो हम ऑपरेशन करते थे समझ लीजिए अगर हमारे को कोई 10,000 का खर्चा आता था तो आजकल 1,00,000 का खर्चा आता है। तकनीक बेहतर तकनीक आ गई है, वो महंगी भी है तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ गए हैं, ठीक है। अब कौन कहां पर कितना पैसा मांगता है वो तो हम यहां पर हमारा डिस्कशन नहीं है, मगर ट्रीटमेंट महंगे हो गए हैं क्योंकि अभी हर चीज भी महंगी आ रही है। कि अगर आपका जहां तक आपका सवाल है, रोबोटिक इसमें नहीं होता मगर एंडोस्कोपिक होता है, जैसे लेजर या RIRS जो टेक्निक बोलते हैं उसको लेमैन में रोबोटिक बोलते थे, बट रोबोट का एक्चुअली इस्तेमाल इन स्टोन की सर्जरी में नहीं होता, वो किसी और सर्जरी में होता है।
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर्जरी की बात चल रही है तो हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि इसका ट्रीटमेंट के लिए किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको क्या है। जैसे बोल रहे हैं AI है या आपने बताया एंडोस्कोपिक ही होता है, बट होते क्या क्या है उसमें?
0: देखिए जो पहला सवाल है कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अल्ट्रासाउंड पे स्टोन आ गया तो मतलब आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटे स्टोन होंगे या फिर जो स्टोन नहीं अड़ रहे तो उनको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको हम बस आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 3 से 6 महीने में उसको ट्रीट कर सकता है। अब जब पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ट्रीटमेंट में 3 तरीके के ट्रीटमेंट मेनली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं बिना ऑपरेशन वाली, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी बोलते हैं ESWL, वो एक ट्रीटमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से कम स्टोन में, अब ये बात नहीं कि 2 सेंटीमीटर सब 2 सेंटीमीटर के कम स्टोन में हम ESWL दे देंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी है, मशीन से बिना ऑपरेशन के हम स्टोन तोड़ सकते हैं। एक तो वो ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट है कि जो हम कमर से एक छोटा सा इंसिजन लगा के आधे सेंटीमीटर का, जिसको PCNL बोलते हैं, उसमें किडनी में कितने बड़े स्टोन हो वो हम निकाल सकते हैं। तो और तीसरा ट्रीटमेंट है जो आपके इंसिजन के बिना बोलते हैं कि वहां पर हम दो अगेन दो

0: मीटर के जो छोटे स्टोन है जो ESWL से नहीं टूट सकते, वो हम RIRS के थ्रू, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट ढूंढने में, जो ये सारी टेक्निक जिसके पास है, और लेट हिम चूज, उसको चूज, आपने आपकी रिपोर्ट देख लिया, अब उसको देखने दीजिए, आप उनसे पूछिए आपके पास ESWL भी है, RIRS भी और PCNL भी है। अगर उनके पास ये तीनों चीजें, तो आप उन पे छोड़ दीजिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप बताएंगे कि मैंने AI से पढ़ लिया कि मेरे को तो ये ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पर डॉक्टर, वहां डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। बट हाँ, उसके बाद ऑप्शन सारी होनी चाहिए। मैं एक जगह बैठा हूँ जहां पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तो फिर तो मैं पेशेंट को एक ही ऑप्शन दूंगा। आपका काम है ये देखना कि हाँ, इनके पास सारी ऑप्शन है, उसके बाद ट्रीटमेंट उन्हें डिसाइड करने दीजिए।
1: जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सलमा बेगम जी ने, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून शाली मैम एंड डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अगर पित्त की थैली में स्टोन होता है, तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इलाज है? और स्टोन अगर किडनी में है और दर्द भी नहीं है, तो उसको क्या सिस्टम हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया हो? तो ये सारी बातें हमने अभी कवर कर ली है मेरे हिसाब से, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये काफी चीजें डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में भी था कि एक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जब पुरानी बात करें खान पान से लेकर रहन सहन, बच्चों का एक स्टाइल डिफर हो गया। उसी तरह की एक बात हमारे एक श्रोता भी पूछ रहे हैं कि पहले बहुत कम सुनने में आता था खान पान जो समय था, या जो सारे लोग मेहनत करते थे, चलते थे, तो पथरी कम सुनने में आती थी। अभी आजकल क्या फास्ट फूड का जमाना है, इसलिए पथरी ज्यादा सुनने में आ रही है? ये पूछना चाह रहे हैं नरदेव सिंह चौहान कोटदार।
0: ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है कि आज की डेट में खान पान तो खराब हुआ ही है, वो सब हर चीज देखिए, समय के साथ साथ चीजें अच्छी से, पहले जो हमारा देसी लाइफ स्टाइल था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं गांव से और 80 साल में भी हट्टे कट्टे होते हैं, और मुझे पूछते हैं हम क्या खाएं। हम तो उनको ये बोलते हैं जो खा रहे हो वो खा लीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा ले आइए, क्योंकि वो ही ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो है, ठीक है ना। मगर आप जो एक दूसरी चीज बोल रहे हैं कि एक और इसका एंगल है कि पहले इतने अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते थे, इतनी इमेजिंग ही अवेलेबल नहीं थी गांव में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था स्टोन हो रहे होंगे, मगर क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रहे तो वो इंसिडेंस कम लगता है। तो क्योंकि आज की डेट में दो तरीके से स्टोन बढ़ गए, एक तो हम बहुत अल्ट्रासाउंड बहुत इजिली अवेलेबल हो गए, कोई भी अल्ट्रासाउंड जाके करा सकता है, उसको पता चल जाता है स्टोन, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। और दूसरी चीज है लाइफ स्टाइल डेफिनेटली खराब हुआ है, पिज्जा और ये सारी चीजें, हम ज्यादा नमक की और पानी के इंटेक बहुत कम हो गया, बच्चों को याद ही नहीं रहता कि, या हमको भी याद नहीं रहता था बहुत टाइम पहले तक जब हम पढ़ते थे कि कब हमें पानी पीना है, हम सुबह जाते थे शाम तक पढ़ते रहते थे और पानी का इंटेक कम होता
1: जी,
0: था
1: जी, जी। तो ये सॉल्ट, जैसे आपने कहा सॉल्ट भी रीजन हो सकता है, तो वो सॉल्टी फूड्स और ज्यादा लेते हैं।
0: आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं, कितने स्टूडेंट्स को आदत है पानी की बॉटल कैरी करने की, हार्डली 5% होंगे, 95% सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं बैग लेके। तो वो हैबिट होनी चाहिए कि आप अपनी पानी की बॉटल कैरी कर रहे हैं और बीच बीच में हाइड्रेशन मेंटेन रखें।
1: जी, जैसे पहले सिखाया जाता था कि निकल रहे हैं बाहर तो पानी पी के निकलो, घर आ रहे हैं तो पियो, तो शायद कुछ आदतें ऐसी हैं जो अगर हम दोबारा से शुरू कराएं घर में बच्चों।
0: कहीं ना कहीं मतलब आप देखिए, कॉलेज स्टूडेंट कोई पानी की बॉटल ले जा रहा है तो वो एक तरीके से उसको एक सिंबल आ रहा है कि ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पानी की बॉटल ला रहा है, टिफिन ला रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया,
1: नेगेटिव हो रहा है।
0: पहले ये पॉजिटिव होता था कि अपनी पानी की बॉटल ला रहे हैं, अपना टिफिन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो है।
1: जी, अच्छी हैबिट्स को हम अगर कोशिश करें कि बढ़ावा दें तो ज्यादा अच्छी बात है। और जैसे स्ट्रेस की भी बात करते हैं, स्ट्रेसफुल बहुत लाइफ है, लोग अननेसेसरी स्ट्रेस भी लेने की आदत पड़ चुकी है, तो क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्ट करता है और स्टोन को बनाने में मदद करता है?
0: देखिए, ओवरऑल तो बॉडी की हेल्थ को खराब करता ही करता है स्ट्रेस। कि अगर आप देखें कि जिसको टेंशन लेने की ज्यादा आदत है, वो हमारे लिए भी एक डिफिकल्ट मरीज होता है, क्योंकि वो हर चीज को बहुत, उसको ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से नहीं लगता। एक हैप्पी पेशेंट जो हमारी बात समझ रहा है और स्ट्रेस कम ले रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा लगेगा। बट डायरेक्टली स्ट्रेस ऐसा रिलेटेड नहीं है, बट स्ट्रेस के साथ आपकी डाइटरी हैबिट भी चेंज होती है ना, स्ट्रेस के साथ आपका वाटर फ्लूइड इनटेक भी चेंज होता है, और बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जो इनडायरेक्टली आपको डिजीजेस से ज्यादा प्रोन बना लेते हैं, जिसमें से स्टोन भी है।
1: जी, तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में अभी भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप फटाफट हमें कॉल करिए, हमें मैसेज करिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेकर फटाफट हम भी वापस आते हैं और जितने प्रश्न बचे हैं उसको जल्दी जल्दी से डॉक्टर साहब से पूछेंगे।

आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। कार्यक्रम अब समापन की ओर है, थोड़ा सा समय बचा है। किडनी स्टोन्स, मिथ्स एंड फैक्ट्स पर काफी सारे बातें हमने नई भी जानी और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। एक हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे भी बात करते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न पूछ लें।
1: जी, मेरा नाम जियाउर रहमान है।
0: जी
1: मैडम नमस्कार,
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार, पूछिए।
1: एक आदत है, एट प्रेजेंट आई एम एट द एज ऑफ 74 इयर्स। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब खाना खाता हूँ, एक तो गर्म खाना खाता हूँ
0: जी,
1: और उसमें पानी जो है बीच में पीता रहता हूँ, शुरू में भी पी लेता हूँ, बाद में भी पी लेता हूँ। अमूमन ये सुनने में आया है कि खाना खाने के बाद में जो पानी 1-1.5 घंटे बाद या आधे घंटे बाद पीना चाहिए, अगर ऐसी आदत है, ये मेरी आदत जो बनी हुई है 74 साल में, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अशी वहा कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो अशी कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस आदत से मेरी?
2: देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो सब चीज़ें ठीक है ना। मगर जनरली ये बोला जाता है और बोला भी जाता है और ये सही भी है कि आपको खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है कि पानी पीने का टाइम और खाने का टाइम अलग किया हुआ है। खाना जाएगा वो उसको उसको कच्चा कच्चा वो पार्ट्स में जाएगा, फिर स्टमक अपना काम करेगा उसको डाइजेस्ट करने में, तो फूड बेटर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है अगर उसका साथ पानी ना पिया जाए। पानी पी लेंगे तो जल्दी से आगे चला जाएगा, तो जनरली मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इसलिए आपको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
0: जी धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब, ये सुना जाता है कि पहले जैसे आप कह रहे हैं कि देर से पीना चाहिए, आधा घंटा गैप करके, पर आजकल ये भी कहीं मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कि बीच में सिप सिप करके पीना चाहिए तो अच्छा रहता है।
2: देखिए सिप करने में वो एक अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा फूड के साथ वाटर इनटेक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गंदा नहीं मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसमें बहुत फ्लूइड इनटेक है। अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 से 4.5 लीटर सिर्फ हमारी जो जीआई ट्रैक है वो एक दिन में डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है।
0: Okay.
2: तो वो पानी ऑलरेडी सिक्रीट कर रहा है, वो फूड में मिक्स हो रहा है और तभी वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो रही है। तो हमें अलग से पानी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर किसी वो हैबिट पर है, जनरली हम छोटे बच्चों में तो ये बात मना करते हैं कि जिनको अपने बारे में नहीं पता कि भाई जब आप पानी साथ साथ में मत पीते रहिए, है ना, या फिर कि बहुत लोगों को आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की कि उसका निगला ही नहीं जाता उनको, वो ज्यादा निगलने के लिए है कि गले से नीचे जाने के लिए। तो फूड आप ऐसा लीजिए जो थोड़ा सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड सबसे अच्छा है। बहुत सॉलिड फूड लेंगे तो उसको फिर अच्छे से चबाइए दांतों में, तब वो जा पाएगा। अब आप रोटी ले रहे हैं और उसको मोटा मोटा निगलने की कोशिश करेंगे तो बिना पानी के नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खाने में गलती कर रहे हैं, पानी इसलिए हेल्प कर रहे हैं।
0: ओके चलिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मैसेज के माध्यम से भी हैं, देखते हैं कितने हम ले पाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं ये कि KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से, उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है लेकिन मेरा एक प्रश्न जो मुझे आपसे सॉल्व कराना है कि मेरी पत्नी की उम्र 49 ईयर्स है, उसे रात को नींद डिस्टर्ब रहती है क्योंकि 2-3 बार कर यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जबकि 9 बजे के बाद वो पानी नहीं पीती है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, और शुगर बीपी नहीं है।
2: देखिए अगर रात में 2 से 3 बार उठना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, 1 तक हम नॉर्मल मान लेते हैं। 2 से 3 बार अगर उठना है तो डेफिनेटली उनका एक वर्कआउट, डायबिटीज नहीं है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो रात में पानी भी ज्यादा नहीं पी रही। तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं रात में पानी कम कीजिए, अपना शुगर का टेस्ट कराइए, दोनों ही चीजें नहीं है उनकी। तो उनका डिटेल वर्कअप होगा जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड होगा, यूरोफ्लो होगा, यूरिन रूटीन कल्चर होगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि रात में उनका यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पेशेंट में कहीं ना कहीं कार्डियक चेकअप भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली हमारा दिन में यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रात में कम होता है, एक एज के बाद रात का बढ़ जाता है, तो वो जनरली 50 साल के बाद बढ़ता है। जैसे अभी 49 की एज में अगर बढ़ रहा है तो इनका कार्डियक चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार इनका डिटेल्ड यूरोलॉजी चेकअप भी कराना चाहिए कि रात में यूरिन ज्यादा बन क्यों रहा है, बन रहा है इसलिए ज्यादा बार बार जाना पड़ रहा है।
0: जी बिल्कुल, और बस एक ये बात और मैं जानना चाह रही थी कि बार बार जैसे किडनी स्टोन होता है तो किडनी के अलावा भी कहीं कहीं और ये स्टोन बन सकता है किसी कारण से, बॉडी की कोई टेंडेंसी हो तो?
2: देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो मैंने आपको बताया किडनी स्टोन हमारा किस किस वजह से बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि किडनी में या किडनी के नीचे यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, प्रोस्टेट आता है, ये सब कनेक्टेड है, इनमें कहीं पर भी रुकावट होगी तो पेशाब जो यूरिन बन रहा है वो रुक रहा है तो उसमें स्टोन बन सकता है। तो जैसे ट्यूब जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर किडनी के आगे एक नली होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, या ब्लैडर के आगे प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स जो होते हैं जिनको रुकावट होती है तो उनके ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर ब्लैडर की प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में स्टोन बना तो आपसे स्टोन मत निकलवाइए, आपको प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा नहीं तो स्टोन फिर से हो जाएगा। तो इसमें कारण का भी इलाज होगा और उसकी वजह से बने हुए स्टोन का भी इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है।
0: जी यही मैं चाह रही थी कि आप श्रोताओं को बताएं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो बहुत सारी आज हमने किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स की बातें समझी जानी, और बहुत सारी बातें और मिथक जो है डॉक्टर साहब ने क्लियर भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल

0: हमारे साथ रहे प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. नमस्कार. और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

और लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में चौक कर्जत रेलवे खंड के दोहरीकरण के लिए 497 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। बिहार, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की है। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम अल्फा जैन में। और भाई, जब बात अल्फा जैन की हो तो शुक्रवार यानी हफ्ते की भागदौड़ पर एक छोटा सा विराम और खुद से मिलने का एक नया बहाना। आज की दुनिया में जहां सुबह खुलते ही नोटिफिकेशन हमारा स्वागत करते हैं और दिन का एक बड़ा हिस्सा हम स्क्रीन्स के बीच गुजारते हैं, वहां अगर हम अल्फा जैन की बात करें, कैसी पीढ़ी जिसने टेक्नोलॉजी को जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी के आसपास का पूरा माहौल ही बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि वीकेंड का मतलब सिर्फ देर तक सोना, रील्स देखना और गेमिंग करना है या फिर खुद को थोड़ा सा रीसेट करने की जरूरत है? तो भाई, शुक्रवार को आइए बनाते हैं वीकेंड रीसेट। जी हाँ, जहां थोड़ा स्क्रीन से ब्रेक हो, थोड़ा अपने लोगों के साथ वक्त बिताने का थोड़ा सा दिल हो, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा आउटडोर फन और थोड़ा सा अपने मन की सुनना भी हो। काफी थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई जिंदगी का हर वक्त फास्ट फॉरवर्ड करने का नहीं होता है, कभी कभी पॉज बटन भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आज का जो हमारा मंत्र है, रीसेट द माइंड, रिचार्ज द मूड एंड री स्टार्ट द वीकेंड। क्यों?

क्यों के यस आई एम द बेस्ट जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ अल्फा जैन और मैं पूरे हफ्ते काम कर सकता हूँ, लेकिन दो दिन अपनों के नाम कर सकता हूँ।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है। दैट मींस दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यह एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि। कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग। अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी। दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी। मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति

जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए, किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ जनाब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है अल्फा जैन, और अल्फा जैन में हम बात कर रहे हैं आपके साथ। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो भाई, वीकेंड आते ही मोबाइल गेमिंग, यूट्यूब और सोशल मीडिया का समय शायद सभी का बढ़ जाता है, लेकिन क्या वीकेंड में कुछ घंटे का डिजिटल डिटॉक्स दिमाग और मूड को हमारे बेहतर बना सकता है? भाई ये तो सवाल अपने आप से ही पूछने वाला है। जी हाँ, पूरे हफ्ते स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, या फिर अलग अलग वर्क की बात करें, ऑफिसेस की बात करें, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से स्लीप जो है हमारी, उसका जो रूटीन है, जो हमारी नींद है, वो अक्सर बिगड़ जाता है। तो भाई वीकेंड में देर तक सोना कितना ठीक है और स्लीप शेड्यूल को कैसे रीसेट किया जा सकता है, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। तो भाई हम तो आपसे यही कहेंगे कि पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिए कि आप अपनी पूरी नींद ले सकें काम के साथ साथ, क्योंकि वीकेंड भी सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है। वीकेंड पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को भी हम वक्त दें, और ये जो अपने आप को वक्त देने की बात है ना, तो भाई ये अपने आप से मिलने का भी समय है। और फिर हमारी जो आज की जनरेशन है वो जानती है, वो खुद कहती है कि भाई अब हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, हम डिजिटल हैं। तो भाई डिजिटल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को समय ना दें, अपनी फैमिली को टाइम ना दें, अपने अपनों को टाइम ना दें। थोड़ा सा टाइम एटलीस्ट अगर वीकेंड पर आपके पास फुर्सत होती है या फिर किसी और दिन आपके पास फुर्सत होती है, तो भाई अपने दोस्तों से आपको जरूर मिलना चाहिए, अपने कजन्स सिस्टर से या फिर ब्रदर से आप जरूर मिलें, क्योंकि भाई उनसे मिलना भी बेहद जरूरी हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लड़की हैं, तो फिर आप अपनी बहन से जरूर मिलिएगा, क्योंकि कहते हैं कि बहन से मिलने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दोस्त मिलना जो कई महीनों के लिए काफी हो जाती है। जी हाँ, ढेर सारी बातें हो जाती हैं, अपनों की बातें हो जाती हैं, दिल की बातें हो जाती हैं, क्योंकि बहन सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती है, और जो बात आप अपनी बहन से कह सकते हैं वो किसी और से आप नहीं कह सकते। लिहाजा अपनी बहन का पूरा ख्याल रखिए, अपनी बहनों से मिलते रहिए, और बहनों से भी हम कहना चाहेंगे अपने भाइयों से भी आप ज़रूर मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने कजन से मिलिए, क्योंकि ये है वीकेंड, इसीलिए तो हम कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो बस सुन लेते हैं वही गीत जो हम सुन नहीं पाए थे, क्योंकि हम आई एम द बेस्ट। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा वक्त सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि जनाब थोड़ा थोड़ा करके ही ज्यादा हो जाता है। अभी कहा था मैंने आपसे।

तो भाई जब हम ये कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो भाई आई एम द बेस्ट की भी कोई परिभाषा शायद हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं परफेक्ट वीकेंड, तो भाई शायद इसकी भी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के लिए दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, किसी के लिए परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, चाय पीना, उनके साथ समय गुजारना, किसी के लिए म्यूजिक या फिर किसी के लिए मूवीज, यानी हर किसी के लिए बस एक कप चाय के साथ थोड़ी सी खामोशी। अब भाई प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आखिर ये परफेक्ट वीकेंड है क्या, किस तरह से हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो भाई मुझे अगर आप पूछेंगे कैसे, तो भाई वीकेंड दरअसल सिर्फ काम की छुट्टी नहीं, बल्कि खुद को, जो मुझे लगता है, रीसेट करने का मौका होता है। अगर आपके पास जब भी छुट्टी है एक दिन या फिर 2 दिन की, तो उसको आप अपने हिसाब से जिंदगी को बिता सकते हैं, अपना वक्त देकर, अपने आप को वक्त देकर। तो भाई जब भी छुट्टी हो, यानी जब भी वीकेंड हो, तो क्या कुछ किया जाए। तो भाई मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा आराम करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आउटडोर टाइम अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं, और अपने लोगों और अपने आप के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना भाई बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम पूरे हफ्ते ऑफिस के लिए काम करते हैं, हम पूरे हफ्ते औरों से मिलते हैं, आखिर हम अपने आप से कब मिलेंगे, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, आखिर ये हमें कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्त, ये तो हमें अपने आप से ही पूछना होगा। इसलिए थोड़ा सा थम के, थोड़ा सा रुक के अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, जो आपका दिल चाहता है आप उसको करने की कोशिश कीजिए। इसी को कहते हैं परफेक्ट वीकेंड।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अल्फा जैन और आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और थैंक गॉड हम इसीलिए कहते हैं जब हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना भाई? तो भाई, जब बात हो वीकेंड की और बात हो आपके साथ के परफेक्ट वीकेंड क्या होता है, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि परफेक्ट वीकेंड का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, अपना फंडा तो भाई बस यही है कि अपने आप को रीसेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई, वीकेंड पर हमें क्या करना चाहिए? तो भाई, मुझे तो लगता है कि आपको सचमुच जो पल खुशी दें वो आपको ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा आराम, थोड़ा एंटरटेनमेंट, और कहीं अगर आपको लगता है कि आपको कहीं वक्त देना अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब मन फ्रेश हो तो आने वाला हफ्ता भी कुछ आसान सा लगने लग जाता है। तो भाई, परफेक्ट वीकेंड आपका कैसा होता है, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, ये आप अपने आप खुद ही देखिएगा। फिलहाल मैं आप तक पहुंचा रही हूं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सा गीत, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो हम कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि कल आने वाला जो कल है वो हमारे पास हो या ना हो। लिहाजा जो करना है आज ही करना है, जो करना है अभी करना है, क्योंकि बाद में तो हम यही सोचते हैं कि काश उस वक्त हमने ऐसा किया होता। लिहाजा कर डालिए जो आपका दिल कहता है। क्योंकि जनाब, जिंदगी पता नहीं फिर हो या ना हो, आज हमारे पास है, कल पता नहीं हो या ना हो, या फिर आज हम जैसे हैं हो सकता है कल ऐसे ना हो, जो हमारे आसपास लोग हैं हो सकता है कल हमारे साथ ना हो, तो क्यों नहीं आज हम कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ बेहतर कर जाएं, कुछ अपनों से मिलने, कुछ अपने लिए वक्त निकाल लें, क्योंकि अगर मन अच्छा है, हम फ्रेश हैं, तो समझ लीजिए सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है।

कितनी अच्छी बात है ना, कल हो ना हो, इसीलिए तो कहा था दोस्तों कि हमारे पास कल का हम नहीं जानते, बल्कि कल क्या अगले पल का हमें नहीं मालूम, फिर कल तक बात क्यों छोड़ी जाए।

जो करना है आज ही क्यों न किया जाए। वैसे जेंसिस का परफेक्ट वीकेंड यानी मंडे की जो थकान के पीछे, अगर हम कह दें कि भाई मंडे की जो थकान उसे पीछे छोड़ दीजिए, अपनी पसंद की दुनिया में थोड़ा सा हमें वक्त ज़रूर बिताना चाहिए। वीकेंड की शुरुआत हमारी अक्सर स्लो मॉर्निंग से होती है, बिना किसी जल्दबाजी के उठना, फेवरेट म्यूजिक लगा देना और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो कि बिल्कुल बैठकर सुकून के साथ हो, फिर दोस्तों के साथ कॉफ़ी, कोई नया कैफे भी एक्सप्लोर हम करते हैं, या फिर शॉपिंग, मूवी, या बस शहर में यूं ही इधर उधर घूमना। क्योंकि भाई हम तो जानते हैं कि जेंजीज के लिए वीकेंड सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक्सपीरियंस कलेक्ट करने का भी वक्त होता है। लेकिन यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर वक्त ऑनलाइन रहना भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कुछ घंटे अपने फ़ोन से दूरी, थोड़ा वॉक, कोई हॉबी, किताब, म्यूजिक या अपने फेवरेट लोगों के साथ दिल खोल कर बातचीत। हाँ, किताबों से मुझे याद आया कि आजकल मैं अक्सर देखती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो किताबों से बहुत दूर हो गई है। हो सकता है आपको मेरी ये बात ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन भाई ये हकीकत है। अगर हम स्कूल के बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई आप किताबों से क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उनका कहना यह है कि सब कुछ तो यूट्यूब पर मौजूद है, सब कुछ सोशल मीडिया पर जो छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो फिर किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि हर किताब के हर एक शब्द में एक एक कहानी होती है। जो बात किताब पढ़ने से होती है वो कहीं भी हमें हासिल नहीं मिल सकती, वो बात हमें नज़र आती ही नहीं। वैसे आपकी मर्जी है, क्योंकि भाई हर एक को अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक होता है, अपने अंदाज में गुजारिए। लेकिन एक बार कोई किताब पढ़ के देखिए, तब आपको लगेगा कि वो जो मैंने क्लिप देखी थी और ये जो मैंने किताब पढ़ी है उसमें कितना अंतर है। कभी देखिएगा, अगर आपको वक्त मिले और आप चाहें कोई किताब उठाकर आप देखना चाहें तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। तो भाई ये तो हुई बात रीसेट करने की, ये तो मेरी बात हो गई कि आखिर आपको कैसे करना है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि जब फेवरेट प्लेलिस्ट यानी कि अक्सर हम वीकेंड पर अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं, तो भाई चलिए एक और छोटा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आपके पास और फिर आपको हम कुछ और बातें करना चाहेंगे आपके साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

बिल्कुल जनाब, ये ज़िंदगी है, ये हमारा जीवन है और कंटिन्यू हमें चलना और चलना और चलना चलना चलना ही है। लेकिन जब वो वीकेंड आपके साथ, तो भाई हम तो आपसे कहेंगे कि आप फ्राइडे नाइट में भी थोड़ी मस्ती कर सकते हैं, सैटरडे नाइट भी आप मस्ती कर सकते हैं, यानी देर तक आप जाग सकते हैं। लेकिन अगर आपका है संडे, जी हाँ, संडे नाइट में कोशिश कीजिए कि आप बहुत देर तक ना जागे, जी हाँ, वक्त पर सो जाएं। क्योंकि जनाब, जब हम अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनते हैं, मूवी देखते हैं, चिल करते हैं, तो हमें ख्याल ही नहीं रहता कि आज तो भाई संडे है और फिर कल आ जाएगा मंडे। मगर इसीलिए हम आपको याद दिलाने के लिए आ जाते हैं कि भाई मंडे की सुबह को बिल्कुल भी अपना मुश्किल मत बनाइए। वीकेंड को बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए, खूब अपने मन की कीजिए, जो आपका दिल चाहता है वो कीजिए। हम तो कहते हैं कि अगर आप सोना और सिर्फ सोना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस वीकेंड पर अपने अपनों से मिलना चाहते हैं तो भाई वो भी आपकी मर्ज़ी है, भाई आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे चाहें उसे गुजार सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आपको इतना तो कह सकते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ संडे तक। और संडे अगर देख रहे हैं आप, घर पर अगर आप आ गए हैं, तो समय पर खाना खाइए और वक्त पर सो जाइए, क्योंकि कल तो है मंडे और मंडे में हमें जाना होता है अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यानी व्यर जहाँ भी आपका अपना वर्क प्लेस है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेंसी का जो परफेक्ट वीकेंड होता है शायद वही है जिसमें थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा कह सकते हैं थ्रिल हो, थोड़ी दोस्ती, थोड़ा सा सेल्फ केयर, और सबसे ज़्यादा आपके पसंद का जो वक्त है वो आप कैसे गुजार सकते हैं, ये तो भाई आप अपने आप ही फैसला करेंगे। और जहाँ तक बात फैसले की है, हाँ, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं आज की नौजवान नस्ल। तो भाई जेंजीज, न्यू जनरेशन, आपसे इतना ही कहेंगे कि अपनी वैल्यूज़ को कभी मत खोइएगा। आप चाहे कितना ही डिजिटल हो जाएं, कितना ही आगे बढ़ जाएं, अगर कोई बड़ा आपको आवाज़ दे तो फौरन उसकी आवाज़ पे दौड़ जाइएगा।

इस गीत को सुन रही थी तो बार बार ये बात समझ नहीं आ रही थी, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। बेशक अगर आप अपनी एक किसी अच्छी बात से या फिर आपके अंदर जो टैलेंट है उससे अपने आप को मनवा सकते हैं तो बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई ऐसी बात हमारे अंदर हो जो सामने वाला उसको समझ नहीं आ रहा हो। तो भाई यहाँ हमें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। अगर वीकेंड है तो अपने आप को अपने बारे में ज़रा सोच के देखिए कि क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। बेशक आपके पास ढेर सारा काम हो सकता है, आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट हो सकते हैं, आपके पास मैं कहती हूँ कि आपको सर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अपनों के लिए। चाहे दिन में 2 मिनट निकालें, हर आप 24 घंटे में से ऑब्वियसली आप 12 घंटे ज़रूर सो सकते हैं, 8 घंटे सो सकते हैं, या फिर जैसे भी आपका दिनचर्या हो उसके हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने अपनों के लिए ज़रूर वक्त निकालिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपनी वैल्यूज़ को जाने मत दीजिएगा, अपनी जो एक तहसीब है उसको कभी भी आप मत छोड़िएगा, क्योंकि यही हमारी असली पहचान होती है। हम चाहे जेंजी की बात करें, चाहे हम जनरेशन अल्फा की बात करें, कुछ भी कह लीजिए जनाब, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारा जो एक कल्चर है हम उससे दूर जा रहे हैं। लिहाजा अपने आप को पहचानिए, अपने पेरेंट्स को देखिए कि क्या कभी उन्होंने किसी अपने बड़े की बात को नाराज़गी से सुना है, या फिर अपने आप को हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम आई एम दी बेस्ट। नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा जानते हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेस्ट हो, आपके अंदर ढेर सारी क्वालिटी हो, लेकिन याद रखिए कि वो आपके बड़े हैं, आपके अपने हैं, है ना, आपके अपने रिलेटिव्स हैं, आपके ताया, आपके मामा, आपके चाचा, या फिर आपके अपने पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन। एक बार खामोशी से उनकी बात भी कभी सुन लीजिए, सर झुकाकर मुस्कुरा के एक बार उनको देखिए।

लीजिए, थोड़ा सा वक्त दे लीजिए, फिर देखिए जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। चाहे जेंसी की बात करें, अल्फा जेन की बात करें, कुछ भी, वक्त कितना ही आगे निकल जाए, कितना भी हम डिजिटल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो अपनी तहजीब है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये होगा अल्फा जेन का एक खूबसूरत सोच, एक खूबसूरत ख्याल। तो बस इसको गांठ बांध लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, बेहतर बनाइए, और अपने अपनों के बीच में बनाइए, और जीवन में आप तरक्की करते रहिए, ऊंचाइयों को छू लीजिए, चांद तारों को छू लीजिए, लेकिन जो आपके कदम हैं उन्हें ज़मीन पर ही रखिएगा, क्योंकि ज़मीन पर आपके आसपास आपके अपने मौजूद हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, लेकिन वादा रहा बहुत जल्द आपसे एक और मुलाकात होगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।

पांच बज चुके हैं और लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। वित्त मंत्रालय आज से नई

दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केरलम में कोच्चि में एक महाकाव्य अनेक कथाएं रामकथा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम की कथा भारत तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे एशिया में फैली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी 3 महीने के वेतन से 6,35,000 रुपये का योगदान दिया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में चौक कर्जत रेलवे खंड के दोहरीकरण के लिए 497 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता KGP-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटी लाइट्स। सांझ का शो है, सिटी बेस्ड है, तो आपके काम का है एंड लवली म्यूजिक फॉर श्योर। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। स्टे ट्यून्ड।

गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सिटेलाइट्स। इस शो में आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि। और 11 साल के इंतजार के बाद बहुत लोग खुश हैं कि 12 पुला फेज 3 आखिरकार शुरू हो गया। अब मयूर विहार से एम्स तक का सफर सिग्नल फ्री होगा, मतलब कम रेड लाइट, कम कोफ्त, ज्यादा वक्त। सड़क हमें सिर्फ आने जाने के लिए ही नहीं बल्कि एक साझा जगह है, इट्स नॉट अ पर्सनल स्पेस नो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी सफर को बेहतर बना सकती है, मानते हैं ना इस बात को। हेलमेट जरूर पहनिएगा, जेब्रा क्रॉसिंग पे जरूर रुकिएगा, हॉर्न जितना कम बजाएंगे ना शहर उतना ही सुकून से सांस लेगा। वैसे कहते हैं कि रुकना भी जिंदगी का एक हुनर है, हर मोड़ पे भागना जरूरी नहीं होता।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक। 5:13 और 20 सेकेंड हमारे स्टूडियो की घड़ी में। सो यू स्टे ट्यून टू सैटेलाइट सांझ का शो है। आपकी शहर के बारे में बात होती है तो कुछ काम की बात जरूर निकल के आती है। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अब इस दिन की ना बात सीधी सी है, समान काम समान जिम्मेदारी, तो वेतन में भी समानता चाहिए ना। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाएं पुरुषों की कमाई में अंतर दिखने को मिलता है, और इस अंतर को कम करना सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात नहीं बल्कि वर्क प्लेस पर भी एक जस्टिस, एक इक्वालिटी उसकी बात है। काबिलियत का जनाब कोई जेंडर नहीं होता, तो फिर मेहनत की कीमत अलग क्यों? समान अवसर, समान सम्मान, समान वेतन, यही तो है बराबरी वाली दुनिया की पहचान। और आकाशवाणी की पहचान आप लिसनर से बनती है। और आज के सांझ की सूत्रधार हूं मैं। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

Yes, indeed. You're tuned into Akashwani Rainbow और आप सुन रहे हैं Satellites in the Evening. ये शो आता है आपके लिए और वीकेंड बस पास में ही है. एक्चुअली इट हैज़ बिगन और वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली के पास बहुत कुछ है देखने को, सुनने को, जाने को. ऐसे में ना एक सवाल जस्ट फील लाइक आस्किंग कि क्या दिल्ली में आपका भी कोई अपना कोना है, एक फेवरेट पसंदीदा सुकून वाला, वे यू लव टू गो एंड सिट, स्पेंड टाइम, जस्ट बी देयर. कोई पार्क, कोई गली, कोई कैफे, कोई मेट्रो का वो पसंदीदा सीट, एनीथिंग इट कुड बी. शहर इतना बड़ा तो कोने भी काफ़ी सारे होंगे. थोड़ा टटोल कर देखिए, सोचिए, या फिर आपकी कहानी ये है कि मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहाँ बैठकर तुम्हें सोच लेता हूँ.

वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और इस शो में अब जो IGI एयरपोर्ट में सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए एक सुविधा के बारे में बात करती हूँ जो अभी अभी शुरू हुई है। अगर आपके पास हैंड बैगेज या कैबिन बैग है, मतलब बहुत कम सामान के साथ आप यात्रा कर रहे हैं या नहीं है, तो एंट्री जो है ना बहुत आसान हो गई है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल्स पर ऐसे यात्रियों के लिए बिल्कुल समर्पित एक्सप्रेस एंट्री गेट ये बनाए गए हैं। अब इसका एक फॉर्मल उद्घाटन भी हो गया है, तो आपको बता देती हूँ कौन से गेट नंबर्स हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअली भीड़ कम हो ये मकसद है, हल्के सामान के साथ आप सफ़र करें ये भी शायद एक मोटिवेशन है, तेज़ हो सुगम हो आपकी जो यात्रा है। अब टर्मिनल 1 पे गेट नंबर 5 और टर्मिनल 2 पे गेट नंबर 1 एंड टर्मिनल 3 पे गेट नंबर 2, इनमें केवल कैबिन बैग वाले यात्रियों के लिए एक्सप्रेस लेन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इजंट इट अ लिटिल इंटेलिजेंट ऑप्शन? वेल, आप सोचिए। लेकिन अगली बार अगर आप सफ़र करेंगे तो एक छोटे से बैग के साथ कीजिएगा, ज़्यादा बोझ लेके जाना ठीक नहीं है, शायद इसी को एनकरेज किया जा रहा है। वैसे ज़िंदगी में भी जो बोझ है ना वो ख्वाहिशों का ही तो है, वैसे बड़ी हल्की फुल्की है ज़िंदगी।

यू ड्राइविंग एब्सोल्युटली केयरफुली इस टाइम, ये हम आशा करते हैं और प्रे भी करते हैं, और ये हम चाहते भी हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. आई होप यू मस्ट हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. उसकी कहानियाँ तो अलग ही हैं, उसके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग है. नहीं, मेट्रो में सफ़र करते हैं ना तो ईयरफोन्स लगाए, ईयरफोन के बीच ना एक पल के लिए ज़रा आस पास बैठे लोगों को देखिएगा, कितनी कहानियाँ हैं ना इस शहर में. शायद कोई यू नो उस चेहरे को देख करके कि कोई पहली नौकरी के लिए शायद जा रहा है, कोई किसी पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत खुश है कि घर लौट रहा है, कोई बहुत खामोश है. कल फिर वही भागदौड़ शुरू. हर चेहरा एक कहानी है और शायद यही हमारे शहर की खूबसूरती भी है. शाम का ये जो पल है ना, सबको एक तरह से जोड़ देता है, जैसे आकाशवाणी जोड़ता है पूरे देश को, हमारे दिलों को. उसी तरह से हम सब एक शहरवासी के नाते बंधे हैं एक दूसरे से. मेरा नाम है शैली भाषांजलि.

आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि। ट्रैफिक रूल्स सिर्फ कानून नहीं, अपनों को सही सलामत पहुंचने का वादा है। अपना शहर अपनी जिम्मेदारी है ना।

0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट्स में आप देखना एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस कल और परसों होने वाला है वेस्ट दिल्ली में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा। ही इज अ प्रोफेसर ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, HOD डेंटल ओरल सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और इस वक्त वो हमारे साथ सैटेलाइट में जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर प्रवेश मेहरा।
1: नमस्कार मैम
0: जी।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। जी ऑलराइट। सो ये डेंटल एसोसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका जो एजेंडा है मेन, उसके बारे में बताइए हमें।
1: हाँ जी, एक्चुअली ये 19 और 20 तारीख को, दैट इज सैटरडे एंड संडे, कल और परसों, ये दो दिन IDA वेस्ट दिल्ली ब्रांच जिसका हम रन करते हैं और मैं इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ अंडर द लीडरशिप ऑफ आर ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर JR सबरवाल सर। हम लोग एक ये 2 डेज का कॉन्फ्रेंस IDA दिल्ली स्टेट की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो डेंटल कोलीग्स के लिए है, और एक IDA वेस्ट दिल्ली तरफ से एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इसमें हम वेरियस स्पीकर्स बुला रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो आके डेलिबरेट करेंगे ऑन लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ओरल हेल्थ, बी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, बी प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री, और ऐसे हर एक ब्रांचेस के ऊपर हम 2 दिन लगातार ये लेक्चर्स रखेंगे। और साथ में दोपहर के बाद शाम को करीब 2 से 4-5 बजे तक ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स होंगे। 3 हमने वर्कशॉप्स रखी है, एक एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के ऊपर रखी हुई है वर्कशॉप जो हम बोलते हैं दांत को बनावटी के लिए, क्योंकि दांत हम सबसे समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एक दांत का होता है वो है बनावटी का, आपके पर्सनैलिटी को देने का, आपके एस्थेटिक्स को देने का। और साथ बाय साइड हमने रखा हुआ है ऑन जितने हमारे रेजिंग बेस्ड सीमेंट्स हैं उनके साथ, और साथ में डॉक्टर अमोघ हमारे वो ले रहे होंगे एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन बच्चों को आजकल, बिकॉज पेन एक डेंटल में बहुत इश्यू है और इसको रिलीव करना इज नेक्स्ट टू गॉड। सो इसको करने के लिए हमें बहुत कॉन्शियस सेडेशन की जरूरत पड़ती है, जहां हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते फियर के मारे चलता है, तो कॉन्शियस सेडेशन इज अ वेरी गुड रोल। और सब साथ मेरे कुलीग डॉक्टर

0: अशोक छाबड़ा साहब, डॉक्टर पी वर्मा और इसको मॉक कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर महेश वर्मा सर, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री डॉक्टर अनिल कोहली सर, और बॉम्बे से आएंगे खास गेस्ट ऑफ ऑनर दूसरे जो हैं डॉक्टर अशोक ढोबले सर, जो हमारे आईडी एसोसिएशन के हेड ऑफिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये दो दिन का वर्कशॉप में हम करीब करीब 250-300 डेलीगेट्स होंगे और साथ में सब स्टूडेंट्स भी होंगे। तो स्टूडेंट्स के हमने दोपहर का रखा है जिसमें हम चाहेंगे मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वो आके अपने पेपर और पोस्टर प्रेजेंट करें, और इन सब में से जो भी एक इनोवेटिव और एक अच्छा पोस्टर पेपर होगा उनको हम अवार्ड भी देंगे। तो इसके साथ थैंक यू सो मच हर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मैं चाहूंगा हर एक ओरल प्रोफेशनल को इसको अटेंड करे और पब्लिक को भी अवेयरनेस हो ऑन ओरल हेल्थ एंड इट्स डिजीजेस।
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच।
1: राइट डॉक्टर प्रवेश मेहरा, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
0: हाँ जी, सिग्निफिकेंट आउटकम इसके लिए बिकॉज एज यू नो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली। सबसे पहले चीज टेक्नोलॉजी जो हम देखते हैं इज यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन जैसे हम रूटीनली देख रहे हैं, इसमें भी हमारे ओरल हेल्थ में भी डिजिटलाइजेशन इज टेकिंग अ वेरी मेजर लीप। और ये जो हम पहले इंप्रेशन लेते थे या जो प्लानिंग करते थे, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा इन द टाइम्स टू कम। और इसके लिए हर एक ओरल प्रोफेशनल को ही हैज टू बी अपग्रेड फॉर दैट न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और साथ में स्टूडेंट्स भी, बिकॉज दिस टाइम्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड टोटली इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।
1: एब्सोल्युटली, हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता है, उनको सरोकार है इससे। डॉक्टर प्रवेश मेहरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, हमारे को प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
1: थैंक यू। जुड़े रहिए सैटेलाइट से। बात बस इतनी सी है लेकिन काम बहुत हो जाता है सांझ के शो सैटेलाइट्स में जब आप जुड़ते हैं तो।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और लुटियंस दिल्ली की हरियाली की कुछ बात कर लेते हैं। लुटियंस दिल्ली में अब हरियाली ना थोड़ी सी और बढ़ाने की तैयारी पुख्ता हो रही है। NDMC ना मियावाकी टेक्निक से छोटे छोटे जंगल तैयार कर रही है, घने जंगल, मतलब टू इंक्रीज द ग्रीन पार्ट ऑफ इट। इसकी शुरुआत लोधी कॉलोनी के पास एक पार्क से की गई, वहाँ कई 100 पौधे लगाए गए। नाउ NDMC का लक्ष्य ये है कि जो लुटियंस दिल्ली है उसका जो ग्रीन एरिया है वो कई गुना कई प्रतिशत बढ़ जाए, एग्जिस्टिंग जितना परसेंटेज है उससे ज़्यादा बढ़ जाए। आंकड़े में इस वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहा है। इसके लिए भारत वन नाम से एक बड़ा हरित क्षेत्र भी तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत हज़ारों पौधे लगाए जाने की योजना है। यानी राजधानी के बीचों बीच आने वाले दिनों में पेड़ ज़्यादा होंगे, हरियाली ज़्यादा होगी और दिल्ली की हवा में सुकून का एक हिस्सा बढ़ जाएगा। बाकी आप अपनी अपनी तैयारी, अपना बिट करते रहिए। शहरवासी है ना, सिटेलाइट सुन रहे हैं ना, तो शहर की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, आप जुड़े हैं सांझ के शो सिटेलाइट्स में।

यह है सैटेलाइट्स आकाशवाणी पर। ये शो आता है सांझ को, जहाँ सिटी की ही बातें होती हैं। और सिटी यानी शहर आपका हमारा सिर्फ इमारतों से तो नहीं बनता, बल्कि आपसे हमसे, लोगों से, रिश्तों से, आवाज़ों से और सबसे बढ़कर के जिम्मेदारी से बनता है। साधारण सी बात लगती है ना, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है सड़क सुरक्षा और शहर में सुरक्षा। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, फिर मुलाकात होगी आपसे।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे ने महाराष्ट्र के मुठबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। निर्वाचन आयोग ने आज अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस नाम और चुनाव चिन्ह लिफाफा दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह दिया गया है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में

भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, लक्षद्वीप, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का तराई वाला क्षेत्र और सिक्किम में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जो आकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत ज्यादा स्वागत है आपका इस प्रोग्राम, इसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और इस शो में हम करते क्या है, ढेर सारी बातें करते हैं, म्यूजिक होता है और दिल से दिल का कनेक्शन तो होता ही होता है ना जी। तो आज का टॉपिक, आज एक्चुअली मैं एक चीज सोच रहा था कि हम लोगों का जो फोन है ना, वो बहुत सारे राज लिए बैठा रहता है और हमारे फोन हमारा एक साइलेंट सीक्रेट बेरर भी होता है ना, उसके पास हमारे सारे सीक्रेट रहते हैं और विटनेस भी है वो हर चीज का। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे फोन की गैलरी क्योंकि गैलरी में ना सिर्फ खाने की फोटो, सेल्फीज, मीम्स या फिर रैंडम स्क्रीनशॉट्स नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसी फोटोज भी होती है जिन्हें हम कभी चेक करते हैं तो बोलते हैं अरे ये किसकी फोटो है, मेरे फोन में क्या कर रही है ना। हो सकता है वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आती है और आप उनको कभी डिलीट ही नहीं करते। तो भाई सारी बातें शॉर्ट करके मैं आज का सवाल आपसे जो पूछता हूं वो ये है कि अगर आपके फोन की गैलरी बोल पाती तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताती, कि क्या आप एक फूडी हो, एक ट्रैवलर हो या फिर फैमिली पर्सन हो, मीम लवर हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर्सन हो या फिर स्क्रीनशॉट कलेक्टर हो, या फिर क्या मिलता आपके फोन में, किस चीज से भरी हुई है आपकी गैलरी, आपको मुझे बताना है। भेज देने अपने मैसेजेस 9868107070 पे, 9868107070 पे आज बता दीजिए, क्योंकि फोन खोल के देख लीजिएगा ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा आज, और इसी बहाने शायद फोन से कुछ फोटोज भी डिलीट हो जाए। तो पहला गाना सुनते हैं और जानते हैं भाई आपकी फोन की गैलरी आपके बारे में क्या कहती है।

यही तो है ना, आपका फोन भी अब कहता है कि भाई मेरी फीलिंग्स को भी समझो, और मतलब आप उसकी फीलिंग्स को भी समझो कि भाई आपने फोन में क्या क्या रखा हुआ है और क्या है आपका फोन, आपके बारे में क्या कहेगा। अगर आपका फोन आपकी फीलिंग्स के बारे में बता पाता, आपकी गैलरी आपके बारे में कुछ बोल पाती, नॉट द फोन, जस्ट द फोन गैलरी, तो फिर आपकी क्या पर्सनैलिटी वो बताता। यही आज हम आपसे पूछ रहे हैं। 9868107070 पर अपने मैसेजेस भेज दीजिए, और काफ़ी मैसेजेस आ भी चुके हैं। और पहला मैसेज आया है हमारे दोस्त का, सरफराज आलम, जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से लिख रहे हैं कि मेरे फ़ोन की गैलरी बोलती है कि सफ़र करने वाला हूँ, इसलिए तस्वीरों में जगह जगह की यादें हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्डर भी हूँ, इसलिए गैलरी में शुभ प्रभात और शुभ रात्रि की भी भरमार है। और कुल मिलाकर मेरी गैलरी कहती है कि जनाब आप तस्वीरें कम नहीं लेते, यादें जमा करते। अरे वाह, दिस इज सच अ स्वीट लाइन। मतलब आपका जो मैसेज की लास्ट लाइन है ना, दैट गॉट मी। मतलब एग्जैक्टली, कुछ मेमोरीज ही होती है जिनके लिए हम फोटो लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि कई जगह ज़रूरत भी नहीं होती, और हम खुद सोचते हैं कि भाई ये है कौन मेरे फ़ोन में, और ये कहाँ की फ़ोटो है, किसने क्या हो रहा है ना। तो वही है, क्योंकि हो सकता है कि आप व्हाट्सएप फॉरवर्डर हो और व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोटोज़ भी आती है और आप डिलीट नहीं करते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट मैसेज हम लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है हमारे दोस्त नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, लिखते हैं गुड इवनिंग जी, और कहते हैं कि हमारे फ़ोन गैलरी तो हमसे यही कहती है कि हमें कमाऊँ पुत्र मिला है। अच्छा जी, तो मतलब कुछ आपके वर्क रिलेटेड फोटोज़ ही होती होगी, थोड़ा डिटेल में बताइए भाई नरेंद्र जी, तभी तो पता लगेगा। एक मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, और ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। इनको गाने भी पसंद आ रहे हैं, शो भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बट आप भी अपने फ़ोन की गैलरी के बारे में कुछ बताइए ना। और अगला मैसेज हमें भेजा है अभय मिश्रा ने, ग्रेटर नोएडा से भेज रहे हैं, और कहते हैं कि अपने शास्त्री नगर से ग्रेटर नोएडा अपने घर जा रहे हैं ऑफिस कंप्लीट करके, और हमारा शो भी सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे तो फ़ोन ये कहता है कि भाई इतने स्क्रीनशॉट जमा करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी आदत है ना, कोई भी मुझे मेमोरी अगर रखनी होती है तो या तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ, या फिर अपने मोबाइल में कुछ ऐसा दिखा कि हाँ इसका स्क्रीनशॉट जमा कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली मेरा फ़ोन यही कहेगा कि इतने स्क्रीन सेवर से क्यों मुझे ओवरलोडेड कर रहे हो। एक्चुअली मेरे साथ भी यही है, और कई बार क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं चाहते, आप जस्ट कुछ चीज़ें चेक कर रहे हैं, और आपकी फ़ोन अगर एंड्रॉयड का है तो वो यू नो ऐसे ही होता है कि आप उसको उस पर जरा सा भी आपके कई बटन्स पे या सेंसर होता है तो अपना आप स्क्रीनशॉट लग जाता है, देन यू डू नॉट डिलीट इट। आप बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं फिर देखेंगे। एक मैसेज और ले लेता हूँ। ये मैसेज भेजा है नवाब अहमद भारती बल्ली मारन से, लिख रहे हैं कि सर मेरे फ़ोन की गैलरी मेरी फैमिली फ़ोटो से भरी रहती है और कुछ बिजनेस से जुड़ी फ़ोटोज़ भी रहती हैं, मैं फालतू फ़ोटोज़ अपने फ़ोन की गैलरी में नहीं रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है, टाइम टाइम से यू नो डिलीट भी कर देनी चाहिए जो ज़रूरत ही नहीं, तो या उनको कहीं और सेव कर दीजिए। तो फिलहाल अभी आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है फ़ोटो के बारे में। यू नो कई लोगों ने अब तक ये नहीं बताया कि वो किसी और की फोटोज़ भी रखते हैं क्या अपने फ़ोन में, जिनको वो यू नो दिल से चाहते हैं, सीक्रेटली चाहते हैं, और मे बी यू नो उनको भी नहीं पता हो। तो ये गाना खास कर आपके लिए।

ऑल राइटी, और अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। ये मैसेज भेजा है हमें जी हाँ, ये मैसेज हमें आया है यशवंत आठमुटे जी का, धारा शिव, महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि हमारे फोन में गैलरी में अक्सर ईश्वर के फोटो ही रहते हैं, तो ये एक प्योर डिवोशनल पर्सन कहेंगे हम आपको जी। और थैंक यू सो वेरी मच मैसेज भेजने के लिए। साथ ही साथ अगले मैसेज की तरफ रुक करें तो ये मैसेज हमें भेजा है। ऑलराइट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबके मैसेजेस ना मैं लाइन से पढ़ूं ताकि किसी को मिस ना करूं। ओके, ये मैसेज हमें भेजा है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशन ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। लिखते हैं कि गुड इवनिंग शो, वेलकम टू द शो, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया जी, और होप आप भी अच्छे होंगे। कहते हैं कि हमारी गैलरी में ज़्यादातर फोटोज़ हैं जो हमारी मैरिज की हैं, और अब हम कहीं मॉल घूमने जाते हैं तो कुछ वहाँ की, और बाकी तस्वीरें हमने प्रभु जी की उसमें संजो के रखी हुई है। हम हर समय ईश्वर को याद रखें। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो अगर मैं आपको कैटेगरी दूँ तो आप फैमिली पर्सन है ना, और फैमिली पर्सन के क्या होता है ना कि जैसे मैं खुद की बात करूँ, या तो आपकी, मतलब मैं अपनी मम्मी की बात करता हूँ, तो उनके फ़ोन में ना उनकी फ़ोटोज़ कम है, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स रिश्तेदारों की फ़ोटोज़ ज़्यादा है। तो अपनी फ़ोटोज़ वो लोग कम रखते हैं, तो बट इट्स अ नाइस वे कि मेमोरीज एट द एंड ऑफ द डे है ना, मेमोरीज सजो कर जो रखने वाली बात है वही है। एक मैसेज और हमें भेजा है, ये मैसेज हमें भेजा है विजेंद्र जी ने घटोल अकोला महाराष्ट्र से। लिखते हैं गुड इवनिंग, और मैसेज मसाला मिक्स एंजॉय कर रहे हैं। मेरी फ़ोन की गैलरी में मेरी खेती की फ़ोटो है और फैमिली के लोगों की फ़ोटो है। और ओके, और विजेंद्र जी थैंक यू सो वेरी मच, और वो फोटोज़ आप मेरे साथ भी शेयर कर चुके हैं, तो बहुत सुंदर खेत है और बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। थैंक यू।

वेरी मच फॉर योर मैसेज। और अनिल शर्मा जी सरिता विहार से लिख रहे हैं कि मेरे मोबाइल की गैलरी परिवार पिक्चर्स से भरी मिलेगी, काव्य लेखन ऑनलाइन प्रतियोगिता में मिले कई सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, और कई बार इन्हें देखकर दिल खुश होता है कि पिछले 6 वर्ष से लेखन की उपलब्धि इम्प्रूवमेंट हुई है, और वरिष्ठ उम्र रिटायर्ड लाइफ में काव्य का शौक व्यस्त रखता है जिससे स्वस्थ महसूस करता हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा शौक है आपका, और अपनी अचीवमेंट्स को संजोकर रखना मोबाइल में और फैमिलीज को रखना, इट गिव्स प्लेजर। सो थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज के लिए अनिल शर्मा जी, और बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़कर भी। और अगला मैसेज भी हम पढ़ लेते हैं, एक मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से मैसेज भेज रहे हैं, और लिखते हैं कि हमारे फ़ोन की गैलरी बताती है कि हम HHH हैं, ऑनेस्ट, हम्बल और हेल्पफुल। ऑल राइट जी, और फ़ोन की गैलरी में फिर आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना, इन इनसे रिलेटेड पिक्चर्स होंगी, वो मैं सोच और समझ रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और वक्त हो गया अगले गाने का, इसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको मैं पढ़ूंगा। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली जी का भी मैसेज आ गया है, और हमारे दोस्त नरेंद्र सोनी ने भी बताया है कि वो क्या करते हैं। भैरूलाल वक्तारिया का मैसेज जरूर लेंगे हम। इसके बाद मिन्नी का द्वारका से मैसेज आ चुका है, आलोक पवार और मिन्नी का देहरादून से मैसेज है, कमल अरोड़ा जी का भी मैसेज भी हमारे साथ है, पंकज का मैसेज भी आ चुका है, और धूलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मुकेश कश्यप एंड फैमिली के मैसेजेस भी हमारे पास है। तो ये सारे मैसेजेस ना मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक गाने के बाद, उसके बाद छोटा सा ब्रेक भी लेने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया कि भाई आपके मैसेजेस मेरे पास हैं। और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, और आज का टॉपिक है कि अगर आपकी फ़ोन की गैलरी आपके बारे में कुछ कह पाती तो वो आपके बारे में क्या बताती, कि आपके फ़ोन में किस टाइप की फ़ोटोज़ हैं, और क्या वो आपको फैमिली पर्सन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर्सन, स्क्रीनशॉट सेवर, क्या क्या कह कुछ कहती है आपके बारे में, वो बता दीजिए हमें 9868107070 पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मेरे साथ मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा, और प्रोग्राम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई, अगर आपकी फोन की गैलरी यानी कि आपकी फोटो गैलरी कुछ बोल पाती आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो वो क्या बताती कि आपके फ़ोन में जो फोटोज़ का कलेक्शन है वो आपको फैमिली पर्सन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर्सन या फिर स्क्रीनशॉट सेवर किस नाम से बुलाता। तो मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं बिल्कुल, और ये मैसेज अगला जो हमारे पास आया है, ये हमें भेजा है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली ने, और लिख रहे हैं कि हम खुद एक तस्वीर है, दिल के हम अमीर है, इसलिए FM रेनबो के हम फकीर है। अरे नहीं, आप हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, और आपके मैसेजेस जो आते हैं, आपकी बातें, आपका प्यार हमें यहाँ पे फील होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज के लिए। और नरेंद्र सोनी जी ने हमें दोबारा मैसेज भेजा और कहते हैं कि मैं किसान हूँ और मेरे फोन गैलरी में कुदरत समाई हुई है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पक्षी, ये सब। ऑल राइट, ओके, आप अपना समय जब खेत पर बिताते होंगे तो मतलब आपकी फ़ोन की गैलरी में मतलब एक वो होता है ना कि सीनरीज जो है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है वही होंगी। खैर, थैंक यू सो वेरी मच। और अगला मैसेज जो भेजा है हमें भैरूलाल वक्तारिया, धाकड़, उन्हेल जिला, मध्य प्रदेश से, लिखते हैं कि जिस तरह हर महीने हम अपने सर के बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह मैं अपने फ़ोन की महीने दो महीने में सफाई करता हूँ, अनावश्यक सामग्री, फ़ोटो, वीडियो, नंबर और मैसेज हटा देता हूँ। ऑल राइट, सो आप मिस्टर क्लीनर हैं और आपकी फ़ोन की गैलरी शायद आपके बारे में यही कहेंगी। थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज के लिए। और देहरादून से आलोक पवार और मिनी ने मैसेज लिखा है, लिखते हैं कि ओके, थैंक यू सो वेरी मच आपने जो मेरे बारे में लिखा है और टॉपिक के बारे में लिखा है। कहते हैं कि मेरी गैलरी में विविधताओं से भरी फ़ोटो और वीडियो है, कहीं सफ़र की तो कहीं जागरूकता कार्यक्रम की। मेरे फ़ोन तो बोलता ही होगा कि भाई इनके तो अलग रंग है, तो मतलब मल्टी कलर पर्सनैलिटी आपकी है ना। ऑल राइट, और भटिंडा से डॉक्टर कमल अरोड़ा भटिंडा पंजाब से मैसेज लिख रहे हैं, लिखते हैं कि गुड इवनिंग, आई एम अ सर्जन बाय प्रोफेशन एंड माय गैलरी इज ऑलवेज फिल्ड विद न्यू टेक्निक्स एंड एक्सरेज ऑफ द पेशेंट्स फॉर विच माय गैलरी ऑलवेज अप्रिशिएट्स मी एंड आई एम श्योर your patients also appreciate you for the surgeon you are, for the doctor you are, and thank you doctor साहब कि आपने हमारे शो में मैसेज किया एंड यू शेयर दिस विद अस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेज। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मेरे फ़ोन की गैलरी में ज़्यादातर फ़ोटो मेरे रिश्तेदार की होती है, और स्क्रीनशॉट लिए फ़ोटो शामिल करता हूँ जिनमें जिनका जन्मदिन होता है, उनको जन्मदिन के स्टेटस लगाने के लिए, जन्मदिन के मौके के लिए मैं वो स्क्रीनशॉट्स सेव करता हूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमें भेजा है दुलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी।

मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह ने, और लिखते हैं कि आप बहुत ओके, थैंक यू, और लिखते हैं कि हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और शो भी पसंद आ रहा है, थैंक यू सो वेरी मच, और जो भी आपने मेरे बारे में लिखा है, आई गिव इट टू माय सेल्फ, ऑल राइट ओके। और ये मैसेज हमें भेजा है मिनी ने द्वारका से, लिखती है कि मेरी व्हाट्सएप में मेरी फैमिली की पिक्स और वीडियोज़ भरे हुए हैं, 10 साल पुरानी पिक्स और वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। आगे लिखते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं खुद कि इतने पुराने पिक्स इनके फोन में कैसे हैं, बाकी फूड स्क्रीनशॉट्स और इधर उधर की पिक्स भी हैं थोड़ी बहुत, और हाईलाइट है कि आई एम अ फैमिली पर्सन। ऑल राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच और आपके मैसेज के लिए। एक मैसेज मैं और पढ़ रहा हूँ, और ये मैसेज है कि ये मैसेज हमें भेजा है गुड़िया ने, और लिखती है कि अगर मेरे फोन की गैलरी बोल पाती तो कहती कि बहन प्लीज मेरे पे दया करो, सारी मेमोरीज, सारी फोन की गैलरी जो है ना वो मेमोरीज से भरी हुई है, इतने वीडियोस बनाए हुए हैं मगर कभी इनको पोस्ट नहीं करती, बस बिकर अब फोन की जान लोगी क्या, आपका फोन ये बोलता आपके बारे में। एक्चुअली यू नो कई लोग होते हैं कि फोन में फोटोज रख लेते हैं, और यू नो आपको कई बार आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स भी हैं आपसे फोटोज खिंचवाएंगे, दुनिया भर की फोटोज खिंचवा लेंगे, और फिर आपको फोटोज की दिखती नहीं, बस वो आपसे कहते हैं कि मेरी फोटोज खींचो, जल्दी खींचो, मुझे बस यू नो जल्दी फोटोग्राफ सेंड भी कर दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो आप हो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कुछ लोगों की भी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कहीं पोस्ट नहीं करते। और एक्चुअली इसी बिल्कुल सेम चीज़ पर मेरे पास एक गाना है, थोड़ा सा पुराना गाना है बट आई लव दिस सॉन्ग आशा भोसले जी की आवाज़ में, हियर इट गोज, एंजॉय, सारे फोटोग्राफर्स के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए जो फोटोज खींचते हैं, जिनको जल्दी रहती है कि हमारे फोटोज खींच दीजिए।

यही जल्दी रहती है फोटोज खिंचवाने की, और बस फोन में वो फोटोज स्टोर करने की। और फिर हमारी गैलरी बोलती है भाई आप रहने ही दो, आप फोटो खिंचवाते रहोगे और कभी उनको कहीं पोस्ट नहीं करोगे। और अगला मैसेज हमें भेजा है नेहा ने गाजियाबाद से, लिखते हैं कि मेरी फोन गैलरी कहती है कि मेरी फोन गैलरी कहती होगी कि जिस दिन से सर्वज्ञा मेरी बेटी आई है और उससे हर दिन का गवा रही हूँ। एक एक पल एक एक माइलस्टोन के फोन में सेव है, लेकिन मैं तुम दोनों की कपल फोटोज मिस करती हूँ। दैट इज़ व्हाट योर फोन गैलरी सेज। और नेहा जी ये एक्चुअली होता है, जब घर में वो नन्ना मेहमान आ जाता है तो फिर फोन आपका नहीं रहता। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, चाहे वो जब उनको समझ में नहीं आती उनकी फोटोज से भरता है और फिर बाद में आपके बच्चे और बिकॉज आई एम अ फादर ऑफ अ सन जो अभी बढ़ रहा है, एंड आई नो कि वो बचपन में हम उनकी फोटोज खींचते हैं और फिर बाद में वो खुद वो फोन को अपने पास रख लेते हैं एंड देन दे से कि बस ये अब हमारा ही है, तो उसमें अपनी फोटोज खींचना कुछ देखना आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो आई कैन टोटली रिलेट और थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज के लिए। बट ठीक है, आप दोनों टाइम देते हैं अपनी बेटी को एंड योर उनको आप साथ में बड़ा कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो इट्स गुड है ना। फोन में हालांकि वो मेमोरी कैप्चर हो ना हो, बट ठीक है आपके फोन में वो मेमोरीज रहेंगी तो ऑब्वियसली वो आपको एक दिन याद आएगा कि हाँ ठीक है यार, माइलस्टोन आप कह रहे हैं तो इट विल बी अ गुड जर्नी मेमोरीज फोन की फोटोज के जरिए। ऑलराइट, अगला मैसेज लेते हैं। ये मैसेज भेजा है हमें जिला अम्बेडकर नगर UTP 45 नौशकौर, लिखते हैं कि ओके जिन्होंने बस हेलो लिखा है, अपने शो में प्रेजेंस फील करवाई है हमें, थैंक यू सो वेरी मच भाई आप शो सुन रहे हैं। और नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और रामकंड कैंट, झारखंड से निपी साहनी, मिसेस सुनीता साहनी हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और जो भी सॉन्ग्स हैं आप इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शैलजा भेज रही है नीमराणा से हमें मैसेज कि फ़ोन की गैलरी में माय पिक्स, मेरी दोनों डॉटर्स की, हस्बैंड की, सम ऑफ आर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड समथिंग आई हैव एवर मेड लाइक केक स्वीट्स एंड एनी अदर स्पेशल फूड आइटम्स, कहीं घूमने गए वहाँ की स्पेशल बर्ड्स फ्लावर्स जो भी अच्छा लगता है वो सब फ़ोन की गैलरी में हो जाते हैं। ऑलराइट, अगेन इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, सो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ शेयर करने के लिए। मोहम्मद सईद अब्बासी अपर कोट बुलंदशहर से लिखते हैं कि हमारा फ़ोन तो बस यही बताता है कि हर वक्त रेडियो सुनते रहते हैं, कोई घंटा खाली नहीं जाता, 40 साल से बस इसी काम में लगे हुए हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच, और अभी भी आप हमें सुन रहे हैं तो थैंक यू शो सुनने के लिए। और सुवीर सिंह हमें मुजफ्फरनगर से मैसेज भेजते हैं और लिखते हैं कि फ़ोन की गैलरी में फ़ोटो बहुत लाभ होता है, मैंने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको अपने बिजनेस के बारे में कोई स्कीम बताते हुए फ़ोटो खींचा था, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने बोला कि इसकी यह स्कीम मुझे नहीं मिली, तो उनको फ़ोटो ढूँढ कर तो उनको फ़ोटो को ढूंढने में मेरे को काफ़ी दिक्कत तो आई, लेकिन जब उनको फ़ोटो दिखाई तो वो मान गए। देखिए ना, 4 साल तक आपने उसको रखा है, तो कई बार ये होता है कि आप कई चीज़ें डिलीट नहीं करते हैं तो वो अचानक से काम भी आ जाती है, तो आप स्क्रीनशॉट सेवर ज़रूर कहूँगा मैं आपको, इसलिए क्योंकि देखिए ना 4 साल बाद भी वो आपको काम आया। थैंक यू सो वेरी मच इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिखते हैं कि मैं तो फूडी हूँ और समोसे और जलेबी बहुत अच्छे से बनाता हूँ, वीडियो फोटो और स्क्रीनशॉट भी खाने के ही हैं, इसलिए मेरे फ़ोन के बारे में यही सोचता होगा कि कहाँ मैं इस फूडी के पाले पड़ गया। नहीं बट खाना पीना अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है ना। और अब आई वुड से कि ये है ना, आपको टाइटल खुद मिल गया कि आपकी गैलरी आपके लिए बोलती होगी कि भाई ये तो फूडी है मेरे जो ये मेरे इस फ़ोन का ओनर है। और राइट, एक मैसेज और ले लेते हैं डॉली का, ये भेज रहे हैं मैसेज और लिखते हैं कि मेरे फ़ोन की गैलरी में ज़्यादातर स्क्रीनशॉट्स या गुड मॉर्निंग के मोटिवेशनल इमेजेस होती हैं, ये कहती हैं कि क्या यार, कभी इमोशनल करती है कभी हंसाती है, बेहद प्यारी यादें संभाल कर रखी है मेरे फ़ोन में, और कहती है गैलरी का भरोसा नहीं, सब यादें वो ड्राइव में सेव कर लेती हैं, और मेरे फ़ोन में भी मेरी पिक्स कम ही होती है ना। मैंने कहा था ना कई बार आपका फ़ोन आपका नहीं होता, वो आपके दोस्तों का आपके परिवार वालों का बन जाता है, उनकी ही फोटोज़ उसमें होती है। ऑल राइट, अब एक सॉन्ग आप लोगों के लिए प्ले करूंगा, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं उनको भी लूंगा, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमलपुरी और साथ ही साथ प्रवीण चौहान जी ने भी मध्य प्रदेश से मैसेज भेजा है हमें, भुवनेश का मैसेज भी आ गया है और शेरकोट बिजनौर से भी हमें मोहम्मद वकार फरीदे का मैसेज आ गया है, प्रोफेसर के टंडन माया इंक्लेव से भी भेज रहे हैं हमें मैसेज, और साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं, और प्रकाश शिंदे का मैसेज भी है हमारे पास, और बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो सारे मैसेजेस मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन इस प्यारे से गाने के उस पार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: वेलकम बैक, आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है। मैं सिमसाला मिक्स और इसमें मैं हूं आपके साथ, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और आपके मैसेजेस हमारे पास आ ही रहे हैं और देखते हैं अगला मैसेज किनका है। और राइट, ये मैसेज हमें भेजा है ओके गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और ये रसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेज रहे हैं और हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच जी। प्रवीण चौहान खारगोन मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि मेरे फ़ोन की गैलरी में खुद की फ़ोटो से ज़्यादा दूसरों की फ़ोटोज़ भरी पड़ी रहती है जो व्हाट्सएप से अपने स्टोर होती रहती है अपने आप। और फ़ोन की स्टोरेज की बात करें तो उसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्डर्स रोज़ रखता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको मुझे रोज़ डिलीट भी करना पड़ता है। ऑलराइट, सो मे बी ये आपके वर्क रिलेटेड हो तो इसलिए थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज के लिए। और दिल्ली से अशोक विहार में रहते हैं हमारे दोस्त भुवनेश और इनका मैसेज आया है कि हाउ आर यू ऑन टुडेज़ टॉपिक। आई वुड लाइक टू से दैट गैलरी ऑफ माई फोन वुड से टू मी दैट यू डू नॉट share anything or any photo with me because I keep everything in my memory and I do not open my gallery. I do not click any moment. I live every moment. All right, that's beautiful. But I think kuch photos to honi chahiye, hai na? But again, yeah, personal hai. If you like that way, it's that way only for you. Thank you so very much. Aapne message bheja hai Bhuvnesh. Aur Professor K. Tandon Maya Enclave se bhi message likh rahe hain. Likhte hain ki I'm an 82-year-old professor of electric engineering and mera phone bhara rehta hai activity-based experimental videos se. To gallery to ye bolti hogi, mujhe bhi koi degree dila kar rahoge kya? I'm sure sir, aapko ek degree to apne phone ke liye banani chahiye na, because silently your phone is also learning एक्टिविटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स है ना जो आप उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो एक डिग्री तो बनती है। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर टंडन, आपने हमारे साथ ये मैसेज शेयर किया। और प्रकाश शिंदे मुंबई से सुन रहे हैं हमें, लिखते हैं कि अपने मालिक की असलियत फ़ोन के अलावा और कोई बैटरी कैसे जान सकता है। और लिखते हैं कि लफ्ज़ कम पड़ गए जब मैंने पन्नों पर उतारना चाहा, गैलरी की उस एक तस्वीर ने पूरा हाल दिल बयां कर दिया। तस्वीर में तुम्हारा मुस्कुराना एक जादू सा कर जाता है, जब भी देखता हूँ इसे मेरा हर लम्हा सवर जाता है। वक्त तो ठहरता नहीं किसी के लिए भी यहाँ, पर इस

खूबसूरत तस्वीर ने एक खूबसूरत पल को कैद कर लिया। ऑल राइट, सो हम समझ गए जी आपके फ़ोन में कौन सी और किन की फ़ोटोज़ है। वेल तो सो थैंक यू आपने हमारे साथ ये शेयर किया। और अगला मैसेज पढ़ते हैं हम कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरगिरत, राहुल, गुरशब्द सिंह, राहुल हमारा शो सुन रहे हैं और कह रहे हैं कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो सॉन्ग्स तो मैं प्ले कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और ये मैसेज भेजा है हमें रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू ने। लिखते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है और मैं एक रेडियो श्रोता हूँ, सो मेरी फ़ोन की गैलरी में मेरे सारे प्यारे रेडियो श्रोता मित्र ही हैं, साथ ही में मेरे परिवार की फैमिली फ़ोटोज़ हैं, मेरी प्यारी पोती बिटिया आराध्या जो अभी 3.5 साल की है, उनकी भी बहुत सारी फ़ोटो हैं जिससे मैं बहुत सहज कर रखता हूँ सर जी। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। सो यूर अ फैमिली पर्सन, आपका फ़ोन ये कहता होगा आपके बारे में। मोहल्ला हलवाइया शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी लिखते हैं कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम, आपको भी जी। लिखते हैं टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है, काफ़ी दिन के बाद रेनबो सुन रहा हूँ। मोबाइल की गैलरी में कुछ फ़ोटो पुराने हैं और वीडियोस भी हैं जिन्हें देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और हमें भी शामिल कर लीजिए। कर लिया है बिल्कुल आपको शामिल। और प्रमोद चिंचोलकर जी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि हमारे मोबाइल की गैलरी में दोस्तों की फ़ोटो रखते हैं और हमारे सब्जी के फ़ोटो भी रखते हैं। हमारा सब्जी का बिजनेस है और मम्मी पापा के फ़ोटोज़ भी रखते हैं और दोस्तों के लिए भी फ़ोटो रखते हैं। सो अगेन मैं आपको वही टैग दूंगा, फैमिली पर्सन वाला। और सन्नी बिमला पुहाल सीनियर अम्बाला कैंट से मैसेज भेज रहे हैं हमें, लिखते हैं कहते हैं कि आपके माध्यम से सबको शुभ दिन। आज के सवाल की बात करें तो मेरा कोई भी फ़ोन कुछ बोल पाता तो बोलता मेरी स्टोरेज तुम्हारे लिए कम पड़ेगी। मेरे जितने भी आज तक के फ़ोन रहे उनकी स्टोरेज लगभग भरी रहती थी, स्क्रीनशॉट्स, फोटोज़, वीडियोज़, और अब तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी शामिल हो गया तो वो भी ऑप्शन है। 4 TB की हार्ड डिस्क भी कम पड़ने वाली थी, वो बदलनी पड़ी। क्या बात कर रहे हैं आप, इतना क्या डेटा है आपके पास है, मतलब इतनी फोटोज तो बहुत, आई नो बहुत बेशुमार चीजें आपने संजो कर रखी भी होंगी। और थैंक यू सो मच फिर से हमें मैसेज भेजा विजेंद्र जी ने कोला से, लिखते हैं कि प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, सबके मैसेज एंजॉय कर रहे हैं। और प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से हमें मैसेज लिख रहे हैं, कहते हैं कि आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूंगा कि मेरे फोन में जितनी भी ऐप है उन सब में स्वस्थ एंड तेज मेरी गैलरी ही है। जब भी मैं टच करता हूँ सेकंड के 100वें हिस्से में अपना आप ओपन हो जाती है, क्योंकि मेरी गैलरी में अधिकांश फोटो हरे भरे खेत, खलिहान, पावन नदियों, मेरे परिवार के सदस्यों की है और मेरे बहुत सारे प्रिय मित्र आरजे मित्रों की फ़ोटो भी है जो मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, मेरे घर भी आ चुके हैं। और मेरी फोटो गैलरी में मुझे हमेशा कहती है कि दोस्ती जिंदाबाद, हरियाली जिंदाबाद, पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहे। आप भी हमारे यहाँ ज़रूर आइएगा जी, बिल्कुल आएंगे, आप प्यार से बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेज के लिए। और अगला मैसेज पढ़ते हैं तो ये मैसेज हितेंद्र दास का, आसाम से भी हमारा शो सुन रहे हैं। और राजकुमार के संतानिया कोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि जो दिल से बात करते हैं, गीत संगीत बातचीत कार्यक्रम सुनकर अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि मोबाइल की गैलरी में फैमिली फ़ोटो, काफ़ी सारे फ़ोटो रहते हैं 2 या 3 साल से डिलीट हो जाते हैं, जो कि मोबाइल साफ करवाते हैं और जब हम स्टेटस में रखते हैं तो घूमकर आते हैं तो वो फ़ोटोज़ भी रखते हैं और स्क्रीनशॉट अलग से ये निकाल कर रख देते हैं। तो ऑलराइट, सो आप भी क्लीन करते रहते हैं तो अच्छी बात है। ये भी एक मैसेज और ले लेते हैं क्योंकि वक्त कम है और मैसेजेस बहुत सारे हैं। तो एक मोहम्मद इम्तियाज अवार के, हम कीर्ति नगर से लिख रहे हैं कि फ़ोन की गैलरी है, कहती है कि सब बदल गया है, कितना पहले सब मिलकर रहते थे, अब सिर्फ तेरा ही अकेला पिक्चर रहता है और तू भी बदल गया है, मुझे अच्छी जगह घुमाकर भी नहीं लेकर आता। तो घुमा के लाइएगा इम्तियाज जी अपने फ़ोन को और भर दीजिए अपने फ़ोन की गैलरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ से। और एक मैसेज और आया है हमें, ये मैसेज हमें भेजा है कन्हैया लाल, गीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से, और इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच जी, काफ़ी सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं और जो कुछ मैसेजेस अभी आए हैं उनको भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी वक्त हो गया एक प्यारे से गाने का।

हेलो नहीं जी, अब आएगा वक्त हो गया है और कुछ मैसेजेस उनको जल्दी से ले लेता हूँ। रेडियो लिसनर क्लब से संजय मक्कड़, संजय मलाकर, बाबू बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, सिरोज मिथुन, पिंटू दीवाना, और कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन की गैलरी में ज़्यादा फोटो हम दोस्तों की मिलन वाली फ़ोटो होती है, आर्चे की मिलन वाली फ़ोटो भी होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और राजेश, सीमा भल्ला, कंकड़ खेड़ा जी, आपका मैसेज में आपका मैसेज आया है कि भेज दिया था आपने। हाँ जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था और गैलरी, ये मैसेज हमें भेजा है मिंटो ने पंजाब से, लिखते हैं गैलरी बस भरी पड़ी है मोटिवेशन वाली फ़ोटोज से सेंड, और वो भी उस टाइप के जो जिसमें पत्नी की बातों पर अमल करना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैसेज हमें भेजा है पप्पू ठाकुर जी ने, बसंत कुमार ठाकुर जी ने, यार पारा भिराई से, लिखते हैं कि कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। और अगला मैसेज हम पढ़ते हैं, ये सिलचर आसाम से हमें भेजी है कि मीरा सिंह जी ने, लिखते हैं तस्वीर होती खामोश देखकर हमको, हम हो जाते मदहोश, और कहते हैं मेरी खींची हुई पिक्स और आसाम बहुत सुंदर है। जी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। और युवराज चौहान ने मैसेज भेजा है हमें लोखंडिया से, लिखते हैं कि मेरे मोबाइल में लोगों के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं। ऑल राइट, आप बट आप सेव करके रख रहे हैं उनको, है ना। और ये मैसेज हमें भेजा है ये मैसेज पे नाम नहीं है, बट थैंक यू सो वेरी मच जो भी हमारे शो सुन रहे हैं, और कहते हैं कि फोटोग्राफर सॉन्ग क्यूट लगा आशा जी के वॉइस पे, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैसेज भेजा है कि शायद मेरा मैसेज दब जाता है तभी तो नहीं पढ़ा जाता। आपका मैसेज नहीं दबता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ बबलू कश्यप जी, आपने मैसेजेस कम से कम नहीं भी नहीं तो ये 20-25 मैसेज रिपीट करके भेजें जो कि ऑब्वियसली कहीं खो जाता है। आप एक बार मैसेज पढ़ेंगे ना, मैं आराम से पढ़ लूँगा। कन्हैया लाल, गीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार दिल्ली शहर मोरी गेट से लिख रहे हैं, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैसेज हमें, ऑल राइट, सो इसी के साथ मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। बस आप लोगों से यही कहूँगा कि फ़ोन हो, गैलरी हो, कुछ भी हो, लाइफ हो, उसमें अपनी मेमोरीज सेव करके रखिए और जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। मेमोरीज भी सेव कीजिए, उस मोमेंट को भी सेव कीजिए, और हमारा शो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। अभी मैं लूंगा आपसे विदा इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, यानी कि प्रोग्राम रहेगा म्यूजिक मस्ती में और लिपिका स्टूडियो में आ चुकी है अगले प्रोग्राम के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। एशिया के खेलों का महाकुंभ सज रहा है जापान के आइची नयोगा में। लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए इस रोमांचक सफर का कर्टेन रेसर।
1: एशियन गेम्स 2026 आइची नगोया।
2: जापान के आइची नागोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है। इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आइची नागोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: हर कंपटीशन लाइक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
2: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
4: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा

0: टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
1: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
2: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अब अच्छा करेंगे।
1: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार रही। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
3: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
4: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस, एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
3: जी,
4: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स।
3: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में, सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
4: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो एक बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम।
1: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी। उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
5: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
1: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
6: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
1: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई। केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
7: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं और कंडीशंस डिफरेंट।

0: रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
1: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था पिछली बार। वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
0: सर वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है, जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर, वो मेरा सेकंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर।
1: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
0: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएंगे, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते।
1: और किरण पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
0: सर ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल, आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
1: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
2: देखिए हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
1: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
3: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
4: कितना जोश है?
3: फुल 100 of 100।
4: कितने मेडल आएंगे?
3: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
1: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
3: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
1: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
5: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
4: जो जापान कोरिया का जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
5: नहीं सर कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
1: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
6: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अब की बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
4: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
6: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
4: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
6: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
1: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
7: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
1: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है। अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5-5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
8: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पे फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
1: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोद भी मान रही हैं।
9: एशियन गेम्स में उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
1: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं। वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
10: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट एंड दैट्स That's the only thing we want to do. Like, not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
1: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
11: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में एंड अभी इस साल में, फिर बात करूँ क्यों डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे कैसे आएंगे, यू कैन नॉट मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
1: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह।
12: So I'd love to change the color of the medal. It's it'll be great to you know be able to go up a step. But of course the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
1: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
13: और भी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट्स जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
1: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया। इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम

0: की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
1: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
2: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
3: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है, उन्होंने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचीन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईची नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
4: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया ये कितनी अच्छी बात है, मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेयरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
0: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
4: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते

0: मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही

0: 110, which is like around 60-63% of the total contingent are going to the Asian Games for the first time. पहली बार वो जा रहे हैं. तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो bench strength है, जो किसी भी एक evolving sporting nation के लिए बेहद जरूरी है. तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में, हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरव घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है. हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं
1: जी. और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं, और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है. इस बारे में भी कुछ बताएं आप.
0: देखिए 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले. इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है. तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है. इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है. पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. CWG में भी किया था, जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा. एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था. अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में. टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में. वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे. रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है. शूटिंग वाले इटली में थे. तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे. और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है. बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं, और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए. एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले, फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है. कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है. फॉरेन कोचेस उनकी इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं, और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं. तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा.
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ी को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया.
0: देखिए एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस. क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे. तो एथलीट के लिए भी चीज वही है. हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे. नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे.

0: ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग रेसलिंग वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: भूमिका स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे जापान के आईची नगोया में होने वाले एशियन गेम्स का कर्टेन रेसर। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: बनके।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ, म्यूजिक मस्ती यूं ही जारी रहेगी आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपका म्यूजिक हमसफर आरजे निखिल वर्मा, और आप सुन रहे हैं हवा हवाई।

ऑलराइट, और वक्त हो गया मैं आपसे विदा लूं, लेकिन छोड़े जा रहा हूं आपको दो बैक टू बैक म्यूजिकल हिट के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, ताहिर रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।

लीजिए पेश हैं आकाशवाणी एफएम पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज से नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल में वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में समग्र सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पर पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी किवमसी जो आकेम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ताहिर आप लोगों के बीच में है और प्रोग्राम शुरू होता है आपकी याद आती रही। और इस एक घंटे में यादें बहुत ज्यादा याद करेंगे। जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम तक दिन की मसरूफियात में कुछ याद नहीं रहता। दुनिया, जिंदगी, हर चीज अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जब आप थोड़ी सी मसरूफियत से अलग हटते हैं, तो जब आराम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद आती हैं। याद आने लगी यानी कि आपकी याद आने लगी। और प्रोग्राम वही है कि आपकी याद आती रहेगी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक। ताहिर आप लोगों के साथ है, प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि इसके लिए हर वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं होती। होती है बताइए, कभी किसी का नाम सुन लेती है काफी होता है भाई, कभी किसी की जगह से गुजरते हुए अचानक कोई पुरानी बात दिल में आ जाती है और फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, आती है ना, जैसे दिल कह रहा हो हाँ ये पल अभी कहीं गया नहीं है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए एहसास दिल में अपनी जगह बने रहते हैं भाई, बने रहते हैं।

आपकी याद आती रही। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो से। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए एहसास दिल में अपनी जगह बने रहते हैं। क्या कर सकते हैं, कहीं नहीं जाते। दिल भी तो एक अजीब चीज है, किसी की आवाज में भी अजीब एक कशिश होती है। फोन पर बस दो लफ्ज सुनने के लिए मिल जाए और लगता है जैसे पूरा दिन अच्छा हो गया।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ, ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। मोहब्बत शायद इसी को कहते हैं, किसी शख्स की आदत हो जाना, फिर उसी की कमी सिर्फ कमी नहीं लगती, दिन का एक हिस्सा अधूरा सा लगने लगता है। कभी किसी पुरानी तस्वीर को देखा है आपने? देखा है, तस्वीर वही होती है, चेहरे वही होते हैं, लेकिन उसको देखने वाले इंसान शायद बदल चुका होते हैं, और वही पुराना पल आज बहुत खास लगता है।

जनाब शायद वक्त की सबसे बड़ी शरारत यही होती है जो लम्हा गुजरते वक्त हम संभाल कर रख लेते हैं, नहीं लगते बाद में वही लम्हा दिल से सबसे ज्यादा परेशान करता है। मोहब्बत में इंतजार का भी अपना ही एक मजा है। किसी एक शख्स के मैसेज का इंतजार तो फोन का हर नोटिफिकेशन देखता ही रहता है इंसान, पर दिल एक पल के लिए रुक जाता है जब वो नहीं आता। मतलब कुल मिला के आप बात को समझें कि जो याद है वो परेशान करती है, अच्छा पल महसूस कराती है, खूबसूरत होती है, रुला भी देती है, मायूस भी करती है, खुश भी कर देती है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक आपकी याद आती रहे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो से, जो आप रोज सुन सकते हैं 9:00 से 10:00 बजे तक। बहरहाल आज ताहिर आप लोगों के बीच में है और बात चल रही है मोहब्बत की, यादों की। कुछ मोहब्बतें मुलाकातों से नहीं, छोटी छोटी बातों से बनती हैं। किसी का पूछना कि खाना खा लिया, थक गए क्या, आराम कर लेना, घर पहुंचकर बता देना। सुनने में ये बातें बहुत मामूली सी लगती हैं, लेकिन जब अपना ये बातें कहना बंद कर दे तो तब समझ में आता है कि छोटे लफ्जों में कितनी बड़ी मोहब्बत छुपी थी। अपनापन शायद इसी को कहते हैं, जब फिक्र भी प्यार की एक जबान बन जाए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। कभी कभी किसी से मिलने की ख्वाहिश भी अजीब होती है। दिल कहता है बस एक बार सामने आ जाए, कुछ पूछना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस देख लेंगे। लेकिन जिंदगी में हर मुलाकात हमारी मर्जी से नहीं होती। कुछ लोग दूर होते हैं

फिर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं, और कुछ लोग सामने होते हुए भी दिल से बहुत दूर होते हैं। शायद मोहब्बत में फासले नहीं होते, बस एक अपना रिश्ता देखती है जिंदगी, है ना। और नजरें कैसी रहती हैं देखिए।

0: तो जनाब इसी के साथ आज की खूबसूरत मुलाकात को फिलहाल यहीं रोकते हैं, लेकिन फासला सिर्फ चंद घंटों का है यानी, क्योंकि रात 11 बजे फिर मुलाकात होगी रंगे महफिल में। जब तक ख्याल रखिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो, जो कि है दिल से दिल तक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

लीजिए पेश हैं आकाशवाणी एफएम पर अब इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायक ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिए हैं। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वांगले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्र में समग्र सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक संयुक्त पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी कुइस्मेसी जोआकिम डेसुजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे एफएम रेनबो पर अब इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, क्या हाल चाल। रात के इस खूबसूरत पहर में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। अब वक्त है एक ऐसी महफिल का जहां अल्फाज भी दिल से निकलते हैं और सुर भी दिल से तक पहुंचते हैं। मैं हूं ताहिर और आप सुन रहे हैं रंग महफिल। कुछ देर के लिए दुनिया की मसरूफियत को एक तरफ रख दीजिए और महफिल में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की रात कुछ खूबसूरत गजलें आपके इंतज़ार में हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी कभी ये गजल सुनते ही हमें ऐसा नहीं लगता कि अल्फाज किसी और ने नहीं बल्कि हमारे दिल ने ही खुद कहे हैं। शायद इसीलिए गजल का असर कुछ अलग ही होता है। वो सीधा किसी वक्त वाक़े की जिक्र नहीं करती, लेकिन फिर भी अपनी सी लगती है। एक शेर सुनकर और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और कभी वही शेर आंखों को थोड़ा नम कर देता है। बस इसी महफिल का नाम है रंगे महफिल। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे ये सिलसिला जारी है। और तो सुनिए और महसूस कीजिए ये अगली गजल।

दिन भर हम कितनी आवाज़ों में दरमियान रहते हैं, फ़ोन की घंटी का शोर कम है, मसरूफियत और पता नहीं कि क्या क्या बातें, लेकिन रात आते ही जब कुछ थोड़ा खामोश होता है तो दिल को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और शायद इसी वक्त गज़ल सबसे ज़्यादा अपनी लगती है, क्योंकि गज़ल शोर नहीं करती, वो बस धीरे से एहसास करा देती है, आहिस्ता आहिस्ता। वही काम आज की इस महफिल में भी हो रहा है। कुछ अल्फाज आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो गम दें या खुशी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। कभी किसी चीज की इतनी शिद्दत से जुस्तजू है आपको कि उसके बाद बाकी सब कुछ थोड़ा फीका से लगने लगे। इंसान की जिंदगी में तलाश तो बहुत सी होती हैं, कभी किसी शख्स की तलाश तो कभी सुकून की तलाश, कभी एक ऐसे पल की जो बस अपना हो। लेकिन अजीब बात है ना कि ये चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा जिसकी जस्तजू होती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें उसी वक्त मिल जाए। कभी वक्त लगता है, कभी हालात बदलते हैं और कभी हमें खुद समझ आ जाता है कि हम उस चीज़ के लायक नहीं या वो चीज़ हमारे लायक नहीं। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, तलाश भी है और उस तलाश का सफर भी।

कुछ रातें साइमन बस रातें ही होती हैं, वो अपने साथ कुछ पुराने एहसास भी ले जाती हैं। खिड़की बाहर खामोशी हो और पास में हल्की सी गजल चल रही हो तो अचानक दिल अपने आप से बातें करने लगता है ना? महसूस किया है आपने? नहीं, कुछ लोग याद आते हैं, कुछ लम्हे सामने आ जाते हैं, और अगर बातें जिन्हें हम भूल चुके समझते थे कि वो फिर दिल के पास दस्तक कभी नहीं देंगे, लेकिन देने लगते हैं। ऐसी ही एक शाम और एक ऐसी ही महफिल आपके सामने है। रंग है महफिल में, हमारे साथ बने रहिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ, ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसे हम बोलते हैं रंगे महफिल। कभी कभी दिल में कुछ बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। कुछ शिकवे होते हैं, कुछ सवाल होते हैं और कुछ ऐसी खामोशियां जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कोई फरियाद भी कुछ ऐसी ही एहसास है जो आपके अंदर समेटे हुए है, जहां लफ्जों से ज्यादा आंखें बात करती हैं और इंतजार वक्त से भी लंबा महसूस होने लगता है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनना जैसे कि किसी पुरानी खामोशी को दोबारा महसूस करना हो। तिरंगे महफिल में अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए कोई फरियाद।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। मैं हूं आपके साथ ताहिर। कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए बहुत कुछ देखना जरूरी होता है। बस गुजरते हुए लम्हों को गौर से महसूस करना है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी हकीकत सामने होती है और ख्वाब पीछे, कभी वही हकीकत एक ख्वाब जैसी लगने लगती है और जिंदगी को देखने का एक अलग ही अंदाजा मिलता है। जहां दुनिया की चमक के पीछे वक्त की रवानी और इंसान की बेबसी दोनों नजर आती हैं, इसी एहसास को अपने अंदर समेटते हुए ताहिर कहेगा आज की इस महफिल में कई अल्फाज दिल के करीब उतर गए, कुछ शेर अपने खामोशी में बहुत कुछ कह गए और कुछ नगमे शायद देर तक हमारे साथ रहेंगे। इसी खूबसूरती के साथ, इसी एहसास के साथ अब मैं लूंगा ताहिर लेकर आपसे इजाजत। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, जो कि है दिल से दिल तक।

नमस्कार, रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। एफएम रेनबो 102.6 से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम

एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में समग्र सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMC स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे, जिसके बाद इस पहल को सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोकिया डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ FM रेनबो मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं।

हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। एफएम रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में समग्र सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMC स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे, जिसके बाद इस पहल को सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में समग्र सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान आईबीएम सेमीकंडक्टर्स के महाप्रबंधक डॉ. मुकेश खरे से मुलाकात के दौरान भारत की चिप डिजाइन प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ने के अवसरों और उन्नत चिप विनिर्माण में आईबीएम की योजनाओं पर चर्चा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएमश्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे, जिसके बाद इस पहल को सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। इस वर्ष 39.86% मतदान दर्ज किया गया। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान आईबीएम सेमीकंडक्टर्स के महाप्रबंधक डॉ. मुकेश खरे से मुलाकात के दौरान भारत की चीप डिजाइन प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ने के अवसरों और उन्नत चीप विनिर्माण में आईबीएम की योजनाओं पर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूल में विरासत क्लब बनाए जाएंगे, जिसके बाद इस पहल को सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए कल मतदान संपन्न होगा।

हो गया। इस वर्ष 39.86% मतदान दर्ज किया गया। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी क्विम्जी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी

आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान आईबीएम सेमीकंडक्टर्स के महाप्रबंधक डॉ. मुकेश खरे से मुलाकात के दौरान भारत की चिप डिजाइन प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ने के अवसरों और उन्नत चिप विनिर्माण में आईबीएम की योजनाओं पर चर्चा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे, जिसके बाद इस पहल को सभी सरकारी स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। इस वर्ष 39.86% मतदान दर्ज किया गया। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय युवायु सेना को सौंपे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों के औपचारिक शुरुआत आज से जापान की आईची नगोया में हो रही है। मनु भाकर और तजेंद्र पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।